0: हरी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।

0: हमारा नमस्कार। पेट्रोल की कीमत 70.65 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 71.25 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ये फैसला कल हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जनता को आश्वासन देती है कि कल की समस्याओं के बाद आज स्थिति बेहतर करने के लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 50 नए बस ड्राइवर और कंडक्टर एनटीसी के कार्यबल में शामिल होंगे। एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर रही हैं, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा बोर्ड की बैठक के बाद जल्द ही एक फैसले की उम्मीद है। आज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों की बर्बादी और नुकसान के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हर साल दुनिया भर में बड़ी मात्रा में ऐसे खाना फेंका जाता है जो अभी भी खाने लायक होता है। खाद्य पदार्थों की इस बर्बादी को कम करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों की बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और विदेश में यमन सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच जारी घमासान युद्ध का बुरा असर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक यमन में 180,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। 6 अगस्त से शुरू हुए घमासान युद्ध में अब तक 4,481 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब मौसम संबंधी जानकारियाँ। पूर्व की ओर से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ रहा है। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी, ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 22 से 24 और साहिली इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। आज सुबह 5:53 पर सूरज निकला है और शाम 6:07 पर सूरज ढल जाएगा।
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामीन, उम्मीद करते हैं कि रब्बे कायनात और उसके प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप खैर वाफियत से होंगे। रबीउल आखिर का बाबरकत महीना अपने पूरे आबोताब से जलवागर है। आगाज़ महफिल तिलावत कुरान पाक से किया जा रहा है, अदब एहतराम से समात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

या वो जिसने आसमान और जमीन बनाए और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा तो हमने उससे बाग उगाए रौनक वाले, तुम्हारी ताकत ना थी कि उनके पेड़ उगाते। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बल्कि वो लोग राह से कतराते हैं। या वो जिसने जमीन बसने को बनाई और उसके बीच में नहरें निकाली और उसके लिए लंगर बनाए और दोनों समंदरों में आड़ रखी, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बल्कि उनमें अक्सर जाहिल हैं।

या वो जो लाचार की सुनता है जब उसे पुकारे और दूर कर देता है बुराई और तुम्हें जमीन के वारिस करता है, क्या अल्लाह के साथ और खुदा है? बहुत ही कम ध्यान करते हो। या वो जो तुम्हें राह दिखाता है खुशकी और तरी की अंधेरियों में और वो के हवाएं भेजता है अपनी रहमत के आगे खुशखबरी सुनाती, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बरतर है अल्लाह उनके शिर्क से। या वो जो खल्क की इब्तिदा फरमाता है फिर उसे दोबारा बनाएगा, और वो जो तुम्हें आसमानों और जमीन से रोजी देता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? तुम फरमाओ कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो।

तुम फरमाओ खुद गैब नहीं जानते जो कोई आसमानों और जमीन में है मगर अल्लाह, और इन्हें खबर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। क्या उनके इल्म का सिलसिला आखिरत के जानने तक पहुंच गया? कोई नहीं, वो उसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि वो उससे अंधे हैं। और काफिर बोले, जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे क्या हम फिर निकाले जाएंगे? बेशक उसका वादा दिया गया हमको और हमसे पहले हमारे बाप दादाओं को, ये तो नहीं मगर अगलों की कहानियां।

तुम फरमाओ जमीन में चल कर देखो कैसा हुआ अंजाम मुजरिमों का, और तुम उन पर गम न खाओ और उनके मकर से दिल तंग न हो। और कहते हैं कब आएगा ये वादा,

यहाँ तक कि जब सब हाजिर हो लेंगे। फरमाएगा, क्या तुमने मेरी आयतें झुटलाईं हालांकि तुम्हारा इल्म उन तक ना पहुंचता था, या क्या काम करते थे? और बात पड़ चुकी उन पर उनके जुल्म के सबब, तो वो अब कुछ नहीं बोलते। क्या उन्होंने न देखा कि हमने रात बनाई कि उसमें आराम करें, और दिन को बनाया सुझाने यानी दिखाने वाला। बेशक इसमें जरूर निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि ईमान रखते हैं।

और जिस दिन फूंका जाएगा सूर तो घबराए जाएंगे जितने आसमानों में हैं और जितने जमीन में हैं, मगर जिसे खुदा चाहे और सब उसके हुजूर हाजिर हुए आजजी करते। और तू देखेगा पहाड़ों को, ख्याल करेगा कि वो जमे हुए हैं और वो चलते होंगे बादल की चाल। ये काम है अल्लाह का जिसने हिकमत से बनाई हर चीज, बेशक उसे खबर है तुम्हारे कामों की। जो नेकी लाए उसके लिए उससे बेहतर सिला है और उनको उस दिन की घबराहट से अमान है।

और जो बदी लाए तो उनके मुंह औंधाए गए आग में। तुम्हें क्या बदला मिलेगा मगर उसी का जो करते थे। मुझे तो यही हुक्म हुआ है कि पूजू उस शहर के रब को जिसने उसे हुर्मत वाला किया है और सब कुछ उसी का है। और मुझे हुक्म हुआ है कि फरमा बरदारों में हूँ और ये कि कुरान की तिलावत करूँ। तो जिसने राह पाई उसने अपने भले को राह पाई, और जो बहके तो फरमा दो कि मैं तो यही डर सुनाने वाला हूँ। तफसीर खजानुल इरफान में है, मेरे जिम्मे पहुँचा देना था वो मैंने अंजाम दिया। इस आयत को जिहाद की आयत ने मनसूख कर दिया।

0: और फरमाओ कि सब खूबियां अल्लाह के लिए हैं, अनकरीब वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएगा तो उन्हें पहचान लोगे। और ए महबूब, तुम्हारा रब गाफिल नहीं, ए लोगो तुम्हारे आमाल से।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
0: अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला।
2: सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने अपने औलियाए कराम को बड़ी बुलंद शान से नवाजा है, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह करामात भी अता फरमाई। करामात का इजहार बीनी ताकत के जरिए होता है। अल्लाह ताला अपने वली को मुकर्रम रखने के लिए अक्ल को हैरान करने वाला वाकया अपने वली के जरिए जाहिर करता है, जो करामत कहलाती है। अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिनानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए बेशुमार करामत का इजहार किया, लिहाजा सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामत का कसरत से होने पर तमाम मुआरखीन का

0: एक दिन रमजान शरीफ में 70 आदमियों ने फर्दन फर्दन मतलब एक एक करके हजरत सैयदना गौसे पाक रदल्लाहु ताला को अपने घर में बरकत की खातिर रोजा इफ्तार करने की दावत दी। आपने हर एक की दावत कबूल फरमाई। हर दावत देने वाले को किसी दूसरे के भी मदऊ करने का कतन मतलब बिल्कुल इल्म न था। आपने एक ही वक्त में हर एक के घर उनके हमराह रोजा इफ्तार फरमाया। इसके अलावा आपने अपने आस्ताने आलिया पर भी उस रोज रोजा इफ्तार फरमाया। सुबह हर मदऊ करने वाले ने आपकी अपने घर तशरीफ आवरी और इफ्तारी की सआदत हासिल करने का तज़किरा किया तो ये खबर बगदाद शरीफ में खूब फैली। आपकी खिदमत करने वालों में से एक खादिम के दिल में ये ख्याल आया कि हजरत अपने आस्ताने आलिया से बाहर भी तशरीफ नहीं ले गए, तो ये लोग आपके बयक वक्त तशरीफ आवरी और खाना तनावुल फरमाने का तज़किरा कैसे करते हैं। तो उसने हजरत की खिदमत अकदस में हाजिर होकर वाक़िया अर्ज़ किया तो आपने फरमाया, वो लोग अपने कौल में सच्चे हैं, मैंने उनमें से हर एक की दावत कबूल की और बयक वक्त हर आदमी के घर जाकर खाना खाया।
1: कादेरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर
2: खुदा का इरफान गौसे आजम बशर पे एहसान गौसे आजम हमारी अजमत हमारी निस्बत हमारी पहचान गौसे आजम
1: कादेरा सरवरा रहनुमा
0: शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदल्लाहु तआला की ज़िंदगी मुसलमानों के लिए एक नमूना है। आपकी हर सांस में सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धड़कनें सुनाई देती थीं। आपका उठना बैठना गुफ्तार का आलम अलगरज़।

0: हर हर अमल हमारे लिए इबरत का बाइस है। गौसे आज़म रदिल्लाहु तआला पर मबनी तकरीर का दूसरा और आखिरी हिस्सा मौलाना हाफिज़ क़ारी शाकिर अली नूरी की ज़बानी समाप्त करें।
1: रसूल आज़म की हदीस है, अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी है। इसलिए बेटे अब्दुल कादिर, राहे इल्म के अंदर तुम रुकावट पैदा ना करो, तुम अपने इरादे को मत तर करो, इल्म के लिए तुम निकलो, हुसूल इल्म में अपनी जिंदगी की साआतों को गुजारो, अपने लम्हे लम्हे को तलब इल्म में गुजारो। और बेटे अब्दुल कादिर याद रखना, इल्म के सिलसिले में कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अल्लाह अकबर। गौसे पाक से पूछा गया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये बताओ आपको कुतबियत का मकाम कैसे मिला? तो गौसे पाक ने फरमाया, दरअसल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतबियत के मकाम पर फाइज फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मां से अर्ज करते, अम्मी जान नसीहत फरमाइए। लिस्ट नहीं मिलती नसीहत में, एक ही नसीहत मां ने फरमाई और वो नसीहत कौन सी थी? बेटे सच का दामन कभी मत छोड़। आपने बारहा ये वाकया सुना होगा, बारहा सरकार गौसियत मआब रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाके को सुन करके आपने अपने ईमान को ताजा किया होगा। लेकिन मां ने यही एक नसीहत क्यों की? मां कह सकती थी, बेटे नमाज की पाबंदी करना, बेटे इबादत की पाबंदी करना, रोजे की पाबंदी करना, सारी बातें दूसरी कह सकती थी, इस्लाम पर साबित कदम रहना। लेकिन मां ने यह बात सिर्फ क्यों कही कि बेटे सच का दामन न छोड़ना? एक ही नसीहत। मां की नजरों के अंदर कुरान था, मां की नजरों में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस थी, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। मां जानती थी और अच्छी तरीके से जानती थी कि सच ही वो चीज है जो हर मुसीबत का भी इलाज है और फरोग इस्लाम का सबसे बड़ा जरिया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत बाद में पेश की, लेकिन अपनी जिंदगी से गैरों के सामने जो सबसे अहम सबूत पेश किया वो क्या था, आज भी सुनहरी जालियों पर लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक्कुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादुल अमीन। सरकार ने पहले अपना सच्चा होना लोगों के सामने साबित किया, हर महाज पर हर मकाम पर सरकार ने अपने सच्चे होने की गवाही पेश की, चाहे वो कौल के सिलसिले में हो या अमल के सिलसिले में। सच्चाई को सरकार ने इंसानों के सामने पेश किया। और अच्छी तरीके से सुनो, सबसे बड़ी सच्चाई तौहीद है और सबसे बड़ा झूठ कुफ्र है। अल्लाह से बढ़कर के सच्चाई कोई चीज नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का जायजा कर लो, पूरी जिंदगी का जायजा लो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सच्चाई की अहमियत बताते हुए इरशाद फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क इन्नस सिद्क बिर्रुन इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना। रसूल आजम फरमाते हैं, सच को लाजिम पकड़ो, बेशक सच नेकी है और ये ऐसी नेकी है जो जन्नत तक ले जाती है। चूंकि मां जानती थी कि मेरा बेटा मेरे शिकम ही से वली बनकर के आया, इसके लिए ये जौहर इसके अंदर नुमाया तौर पर होना चाहिए। और वो जानती थी कि कुरान मुकद्दस में जिन लोगों की सोहबत से इस्तेफादे का हुक्म दिया गया और जिन लोगों के साथ होने का हुक्म दिया गया वो कोई और लोग नहीं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच के हवाले से इतनी ताकीद मां ने अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि मां ने कुरान का मुताला किया था, मां ने हदीस का मुताला किया था, मां दीन के असरार और रुमूज से आशना थी, इसलिए मां ने इस चीज का इंतखाब किया था। आज की मां इन चीजों का इंतखाब इसलिए नहीं कर पाती कि उसकी निगाहों में न कुरान है न साहिब कुरान है, बल्कि उसकी निगाहों में झूठ है, सीरियल है, गाने हैं, बाजे हैं, तमाशे हैं। अच्छी तरीके से याद रखो, मां बहुत अहमियत की हामिल होती है।

0: गौसे पाक ने अपनी माँ से वादा किया था, माँ सच के अलावा कुछ न बोलूंगा, मेरी जबान से कभी झूठ न निकलेगा। और सुन लो, जब कोई मुसलमान अपनी जबान से झूठ बोलता है तो फरिश्ते 40 मील उससे दूर चले जाते हैं। और सरकार ने झूठ से बचने का हुक्म दिया, इसलिए कि झूठ ऐसा गुनाह है जो जहन्नम तक ले जाता है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अच्छी तरीके से याद रखो, गौसे पाक की वालिदा ने अपने बेटे को जो नसीहत फरमाई, उस नसीहत को हृदय जा बना लो, उस नसीहत को जिंदगी के अंदर अपना लो, सच्चाई के दामन को थाम लो। खुदा की कसम, सच बोलने वाला रुसवा नहीं होता, सच बोलने वाला जलील नहीं होता। अंबिया के औसाफ को जब कुरान ने बयान किया तो सिद्दीकन नबिया कहकर के पुकारा, एक नबी नहीं, हर नबी की खूबियों के अंदर कुरान ने सिद्दीकन नबिया कहकर पुकारा। अल्लाह अकबर, परवरदिगार के जितने भी अंबिया तशरीफ लाए सब सच्चे बनकर के तशरीफ लाए, सदाकत की तालीम दी। और यही वजह है कि बादशाह नजाशी के सीने के अंदर अजमत इस्लाम कब बैठी, जब हजरत जाफर तैयार से पूछा गया कि जिस नबी की नबी पर तुमने ईमान लाए हो, तुम उस नबी की खूबियां बयान करो, वो क्या तालीम देते हैं, तो हजरत जाफर तैयार ने फरमाया था, ये नबी सच्चाई की तालीम देता है, झूठ से बचने की तालीम देते हैं, ये नबी हमें फिस्क व फुजूर से बचने की तालीम देते हैं, माँ बाप के एहतराम की तालीम देते हैं, ज़िना और बदकारियों से बचने की तालीम देते हैं। आप जानते हैं, जब इन अच्छी तालीमों के हवाले से नज्जाशी बादशाह ने सुना तो उसके दिल में रसूल आजम की अजमत पैदा हो गई। ऐ रसूल गिरामी वकार के दीवानों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई के लिए यह जरूरी है कि वो किसी और के फरमान में फायदा तलाश न करे, अगर तलाश करना है तो रसूल आजम के हुक्म पर अमल करो, नतीजा हुजूर ने जो कह दिया वही जाहिर होगा और उसका फायदा यहां भी नजर आएगा, मैशर में भी इंशाल्लाह। तो मां ने क्या नसीहत की, सच के दामन को थामने की। और गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि या गौसे सकलैन, ये बताइए कुर्ब खुदा की दौलत, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा, तज़किया क़ल्ब, इन सारी चीजों के लिए कौन सा अमल हमारे लिए बेहतर है, आप बताएं। दो चीजों की तालीम दी सैयदना गौसे पाक ने, इरशाद फरमाया अकले हलाल सिद्क़े मकाल, हलाल खाना सच बोलना, इन दो चीजों को बंदा इख्तियार कर ले तो बंदे की जिंदगी में इंकलाब पैदा हो जाएगा।
1: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
0: इसलिए कि हराम की रोजी की बुनियाद पर न सजदे कबूल होते हैं, न रोजे कबूल होते हैं, न इबादतें कबूल होती हैं। और हलाल की रोजी ये कितनी अहमियत रखती है कि एक सहाबी बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, दस्ते सवाल दराज फरमाया, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी झोली भर दी। कुछ दिन गुजरे, फिर वो तशरीफ लाए, फिर उन्होंने दस्ते सवाल दराज किया, सरकार ने फिर उनकी झोली भर दी। ये मुसलसल सिलसिला जारी रहा। एक मरतबा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब वो पहुंचे और उन्होंने दस्ते सवाल फैलाया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास कोई चीज है? उन्होंने बताया कि उनके पास प्याला है। सरकार फरमाए ले आओ। उस प्याले को सरकार ने नीलाम किया, प्याला बिक गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले की रकम उन्हें अता फरमाई और इरशाद फरमाया, जाओ इससे कुल्हाड़ी खरीदो और जाकर के जंगल के अंदर लकड़ियां काटो और उसे फरोख्त करो। वो गए, 15 रोज के बाद तशरीफ लाए बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो हाथों में छाले पड़ चुके थे। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, कैसे गुजर रही है? अर्ज करते हुजूर, पहले से बेहतर है, अब मेहनत से कमा कर खाता हूं, उससे राहत मिलती है, लेकिन मेहनत की आदत न थी, आका मेरे हाथों में छाले पड़ गए। सरकार ने वो हाथ लिया और उस हाथ

0: को अपने हाथ में लेकर हुजूर ने चूम लिया।
1: सुभान अल्लाह।
2: और इरशाद फरमाया कि हलाल कमाई के लिए इंसान जो मेहनत करता है और उस मेहनत में जो तकलीफ होती है उन तकलीफ से अल्लाह अज़्ज़ वजल उन गुनाहों को माफ फरमा देता है जो गुनाह न नमाज से माफ होते हैं न रोजे से माफ होते हैं। ये है हलाल की कमाई का सिला। लेकिन आज इजी मनी का एक शौक, जल्दी से सरमाएदार बनने का शौक, आज वो कौन सी बुराई है जो इजी मनी के लिए हमारी सोसाइटी में नहीं हो रही हो। आज देख लीजिए, चाहे ड्रग्स की सप्लाई का मामला हो, चाहे और बुराइयों के अड्डे का मामला हो, आदमी सोचता है आराम भी मिले और दौलत भी मिले। हराम के अड्डे, बुराइयों के अड्डे, बुराई के कारोबार, नाजायज धंधे। मुसलमानों सुनो, अगर गौसे पाक की सच्ची अकीदत है तो अपनी तबीयत के गुलाम मत बन जाओ। गौसे पाक ने जो तालीम दी है उस तालीम पर अमल करो, फिर जहां से भी पुकारोगे मेरे गौसे पाक मदद के लिए हाजिर हो
1: जाए।
0: सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के करीब टहल रहे थे मदीने मुनव्वरा में। भूख बड़ी शिद्दत से लगी थी, घर में खाने पीने की कोई चीज न थी, खाने की कोई चीज न थी। तो घर से बाहर निकले कि कोई साथी मिल जाए, शायद अपने घर ले जाए और उसके साथ दो चार लुक्मे में खा लूं। अभी इसी सोच में वो टहल रहे थे कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने से आते दिखाई दिए। सलाम किया सैयदना फारूक आजम ने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, एक दूसरे के हालात पूछे और उसके बाद सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछा कि अबू बकर, ये वक्त तो बाहर निकलने का नहीं है, ये चिलचिलाती हुई धूप में बाहर तुम क्या कर रहे हो? इरशाद फरमाते हो, उमर क्या बताऊं, बस कुछ भूख सा महसूस हुआ, एहसास भूख का हुआ तो मैं थोड़ा बाहर निकला हूं। लेकिन उमर ये बताओ तुम इस वक्त क्यों निकले हो? तो अर्ज करते अबू बकर, जिस चीज ने तुमको बेचैन कर दिया है उसी भूख ने मुझे भी निढाल कर दिया है, मैं भी इसी घर से बाहर निकला कि कोई साथी मिल जाए। अभी दोनों गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से आते दिखाई दिए।
1: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
0: सिद्दीक उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना चाहा, इससे पहले हुजूर ने खुद सलाम कर दिया।
1: सुभान अल्लाह।
0: और दोनों की खैरियत दरियाफ्त की और वजह दोनों को पूछी कि आप दोनों इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? तो दोनों ने अपनी भूख की शिकायत पेश कर दी। सरकार से क्या छुपाते हो, क्या छुपाते मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से? और छुपाने से भी तो कोई चीज छुप नहीं सकती, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों।
1: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
0: अब दोनों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वक्त तो हुजूर के बाहर निकलने का नहीं है, आका इस वक्त आप बाहर किस सिलसिले में तशरीफ लाए? हुक्म फरमा देते, हम हाजिर हो जाते। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो चलते हैं अबू अय्यूब अंसारी के घर, भूख ने तुम्हें परेशान कर रखा है, अबू अय्यूब अंसारी के घर चलते हैं। चले हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के दरवाजे पर हुजूर ने दस्तक दी तो उनकी अहलिया ने अंदर से पूछा, कौन? आज हम भी हमारे घर के दरवाजे पर पहुंचते और दस्तक देते, अंदर से पूछता है कोई कौन, तो मैं। ये खिलाफ सुन्नत है, अपने घर पर भी जब पहुंचो और दरवाजे पर दस्तक दो और घर वाले भी पूछे कौन, तो अपना नाम बताना, ये हुजूर की सुन्नत मुबारक है। पूछा गया कौन,

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना नाम बताया और साथ में फरमाया कि मेरे साथ सिद्दीक उमर रजी अल्लाह तआला नुमा भी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया ने दरवाजा खोला, तीनों तशरीफ लाए। बरजस्ता हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया ने अर्ज किया हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अबू अय्यूब को मालूम होता तो वो बाग में न जाते, अगर उन्हें मालूम होता कि आप तशरीफ लाने वाले हैं सरकार, मैं अभी खबर भिजवाती हूँ वो आ जाएंगे इंशाअल्लाह। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने के लिए उन्होंने कहा, अभी बैठने के लिए कहा ही था कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक थाल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की खजूरों को सजाए हुए अपने घर पर तशरीफ लाए, सरकार के सामने उन्होंने रखा। आका ने फरमाया, अबू अय्यूब तुझे कैसे पता चला कि तेरे घर में आया हूँ? अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दिल कह रहा था कि तेरे घर मदीने का चांद जलवागर हो चुके, रोटियां बनाओ। और वो एक बकरी जबा करने के लिए जाते हैं, सरकार ने उस बकरी को जबा करने से मना फरमाया, बकरी के बच्चे को उन्होंने जबा किया, गोश्त तैयार किया, रोटी तैयार हुई, गोश्त तैयार हुआ। अब तवज्जो चाहूंगा जो बात अर्ज करना चाहता हूं, गुलाब छिड़क दिया गया मतलब आप समझ गए होंगे कि टाइम पूरा हो रहा है। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जब दस्तरखान पर गोश्त और रोटी सजाई गई, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में गोश्त का प्याला लिया, एक हाथ में रोटी ली, और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अबू अय्यूब इसे मेरी बेटी फातिमा के घर पहुंचा दो, मेरी लखते जिगर ने कई महीने हो गए इस किस्म का खाना नहीं खाया। बेटी न खाई हो तो बेटी का वालिद आज कैसे इस खाने को खा सकता है, पहले बेटी के घर पहुंचा दो। यहां से ये समझ में आया कि शादी भी हो जाए तो बेटी का ख्याल रखना चाहिए, और ये नहीं कि बेटी किसी भी हाल में हो, शादी हो गई तो गई तो हमारे सर से बोझल का हो गया, नहीं। और औरतों को भी चाहिए कि ये जहन में रखे, अगर किसी बेटी की अजमत को किसी ने उजागर किया है तो ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाना शुरू करते, खाना खा लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमा लिया तो खाने के बाद हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए, सिद्दीक उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से न रहा गया। अर्ज करते हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस गिरियो जारी की वजह क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर उमर, बड़ा अच्छा खाना भी हमने खाया, अगर कयामत में रब ने पूछ लिया कि इस खाना खाने को खाने के बाद तुमने क्या किया तो इसका जवाब हम क्या देंगे, उस जवाब को याद करके मैं रो रहा हूं। पता ये चला, खाना खाने के बाद इसलिए खाना खाओ कि खाना खाने के बाद नेक अमल करना है, इसलिए खाना खाओ, इसलिए नहीं कि खाने के बाद अल्लाह हमसे कुछ नहीं पूछेगा, जो चाहो कर लो, कोई भी गिजा खाओ तो ये ख्याल रखो कि इस गिजा का जवाब भरने के बाद खुदा की बारगाह में देना। आज तो इफ्तार पार्टी भी होती है, गैर मुस्लिम भी उसमें शरीक होते हैं, पता नहीं हमने क्या क्या दुनिया बना ली है और क्या क्या हमने सिस्टम तरतीब दिया। हम मातम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरे गौसे पाक को एक डूबी कश्ती वाला पुकार ले तो वहां से गौसे पाक मदद कर दें, ठोकर मारे मुर्दा जिंदा हो जाए। अल्लाह के बंदे सैयदना गौसे पाक, अल्लाह के वली सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु डूबी कश्ती को भी निकाल दें, परेशान हालों की परेशानियों को अपने जमाने में दूर कर दें। आज क्या बात है कि हमारी जबानों में तासीर नहीं रह गई? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने गौस को तो माना, गौस की बातें नहीं मानी।

इल्मी और इरफानी बयान गौसे आज़म रदिल्लाहु ताला पर अभी आप समाप्त कर रहे थे हाफिज़ उकारी मौलाना शाकिर अली नूरी की ज़बानी।

सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत समात कीजिए। एक बार अबू हफस उमर बिन सालह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ऊँटनी हाँकते हुए हज़रत गौस सकलैन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि मैं हज बैतुल्लाह को जाना चाहता हूँ, मगर मेरी ऊँटनी काबिल सफ़र नहीं, इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरी सवारी भी नहीं। हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऊँटनी की पेशानी पर हाथ रखा और एक एड़ी लगाई तो वो ऊँटनी बैतुल्लाह शरीफ तक किसी से पीछे न रही। सैयदना अब्दुल कादिर जिनानी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम खिताब का बयान है कि एक दिन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज़ फरमा रहे थे कि यकायक आप पर एक अजीब कैफियत तारी हुई और आप वाज़ तर्क करके तमाम अहले मजलिस के सामने हवा में परवाज करने लगे। दौरान परवाज आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले कि आप इसराइली हैं और मैं मुहम्मदी, कुछ देर यहाँ तशरीफ़ रखिए और इस मुहम्मदी की चंद बातें सुन लीजिए। चंद लम्हात के बाद आप मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फिर वाज में मशगूल हो गए। मजलिस बर्खास्त हुई तो लोगों ने दौरान परवाज आपके इरशादात की वजाहत चाही। आपने फरमाया कि हुस्ने इत्तेफाक से आज हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का गुजर इस तरफ से हुआ, मैं उनसे मजलिस में तशरीफ आवरी के लिए कह रहा था, चुनांचे उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली और मजलिस में कुछ देर मेरा कलाम सुनते रहे।

0: खुदा का इरफान गौसे आजम, बशर पे एहसान गौसे आजम, हमारी अजमत हमारी निस्बत, हमारी पहचान गौसे आजम।
1: आदेरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर।
2: एक घंटे की ये नशरियात अपने अख्तिताम को पहुंच रही है। सामीन उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को आपने ज़रूर पसंद फरमाया होगा। अगली मुलाकात तक अनवर को रुखसत की इजाज़त, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आखिर में कवाली की सूरत में ये मुनक़बत समाप्त करें।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

रानी जुळ लागल, रानी जुळ लागल, बिरमाचं नवनवे खूळ लागल।

शक्ति। मंगलवार 29 सितंबर घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:45 हो रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का अभिवादन, आप सबका स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति में शक्ति लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। अभी से लेकर दिन के 11:30 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। श्रोताओं, ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है, ईश्वर के प्रति हमारी जो आराधना होती है, वह कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हमें सशक्त बनाता है। हमें जो है जीवन के हर परिस्थितियाँ का सामना करने की जो है शक्ति प्रदान करता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है और इन सब के चलते हमारा जीवन जो है और भी दिन प्रतिदिन अच्छा और सुंदर होते जाता है। तो ईश्वर के प्रति आस्था को चलिए हम बनाए रखते हैं और भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं।

तो चलिए यहाँ पर भगवान श्री गणेश के नाम से कार्यक्रम का हमने आरंभ किया। कहते हैं कि जीवन जो है अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन जीवन को हम किस तरह से व्यतीत करते हैं ये हर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अगर हम जीवन में क्या चाहते हैं ये इस पर निर्भर करता है। जीवन में हम सफलता को चाहते हैं तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। जीवन में हम शांति चाहते हैं तो हमें मतभेदों से, हमें आपसी मतभेद, हमारे विचारों के मतभेदों से दूर रहना चाहिए। जीवन में यदि हम प्रेम चाहते हैं तो हमें जो है सबके प्रति एक सम्मान की भावना होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हम जो देते हैं कहीं ना कहीं पलट कर वही हमें मिलता है। तो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही अगर हम जीवन को दे तो बदले में हमें वही मिलेगा हमारे जीवन से।

और श्रोताओं, आज तो मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का गुणगान हम कर रहे हैं, तो चलिए ऐसे में हनुमान चालीसा के साथ कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करते हैं।

0: शक्ति।
1: जी हाँ, भक्ति में शक्ति। ये भक्ति ही है जो हमें शक्ति प्रदान करती है। ये भक्ति ही है जो हमें सभी बुराइयों और श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। और कहते हैं ना कि जिस चीज़ का आरंभ होता है उसका अंत भी होता है, और अंत के बाद एक नए आरंभ के जो है हम इसमें रहते हैं। तो भगवान की कृपा से हमारे कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा आरंभ हुआ, और इसी के साथ आज मंगलवार है तो हनुमान जी का गुणगान करते हुए कार्यक्रम का समापन भी हम करते हैं। 11:30 बजे जो है आप सुन पाएंगे चाइनीज़ भाषा में कार्यक्रम जिनकी प्रस्तुति में, और हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी 12:00 बजे। तो तब तक के लिए आप दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
2: RM3 Radio.

0: बजे है। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। पहली अक्टूबर को चीन की गणराज्य की स्थापना के 77 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर कल शाम एबेन स्थित एनएससी पार्क होटल में एक औपचारिक समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सांसद, राजनयिक और राजनीतिक हस्तियां उपस्थित थे। इस मौके पर चीन की स्थापना की वर्षगांठ मनाने के साथ साथ मॉरिशस और चीन के बीच 50 साल से ज़्यादा पुराने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों का भी जश्न मनाया गया। एसटीसी राशन चावल की सप्लाई को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम तैयार कर रही हैं, साथ ही दुकानों में सीधे वितरण को भी मजबूत किया जा रहा है। अगर चावल की सप्लाई पूरी तरह रुक जाती है तो एसटीसी की हॉटलाइन 5944343434

0: उपलब्ध रहेगी। ये सेवा सप्ताह में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक चालू रहेगी। सोशल मीडिया पर कल जारी एक बयान में नाडेक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि बच्चों की कैंडीज को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं, खासकर आदसू की हालिया चेतावनी के बाद। नाडेक के अनुसार कैनाबिनॉइड्स वाली ये मिठाइयां उन कैंडीज से बिल्कुल अलग हैं जो हमारे दुकानों और सुपरमार्केटों में बेची जा रही हैं। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस हृदय रोगों, उनके कारणों और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व कार्डियोलॉजी दिवस, विश्व हृदय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हृदय दिवस के रूप में जाना जाने वाला ये वैश्विक अभियान शिक्षा, सामुदायिक कार्यक्रमों और सक्रिय अभियानों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। हृदय स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है क्योंकि हृदय रोग विश्व में मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है, जिससे हर साल 17.9 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। और विदेशी खबरों में, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से कम 62 लोग मारे गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों में भेजा गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। अविनी उल्ये काथोबोन में 56 साल के 56-year-old के श्री जवाहरलाल जगिसर, जो संजय से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी गुरुवार को दिन के 1 बजे उनके घर अविनी उल्ये काथोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन थर्सडे 8:01 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: खाना सफर।
1: मंगलवार 29 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 12:08। रेडियो मनोरंजन पर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुमी और सुहाना सफर इस प्रोग्राम के साथ यहाँ पर हम आ गए हैं। अभी से लेकर 2 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। तो चलिए, हमें यकीन है कि आप बिल्कुल अच्छे हैं और दिन बहुत अच्छे से बीत रहा है। और तैयार हो जाइए खूबसूरत गानों के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। 4028070 है नंबर हमारा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5250620 पर। थोड़ी देर में हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे, वहां पर भी आपके लाइव डेडिकेशंस लेंगे। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो,

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप सुहाना सफर। अजी हम तो यहाँ पर आते हैं आप लोगों का साथ देने के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और यहाँ पर अच्छे अच्छे गाने चलते हैं तो इसी बहाने हमारा भी मूड सेट हो जाता है। और चलिए, इतने बेसब्री से आप हमारा इंतज़ार करते हैं ये जानकर हमें भी खुशी होती है। तो चलिए, आ ही गए तो एक दूसरे का साथ हम देते हैं 2 बजे तक। राम राम सुमी जी, आशा करते हैं आप ठीक है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये गाना, ये मैसेज जो है मानिता जी की ओर से आया है, जो फ्रांस से हमारे साथ हमेशा जुड़ती है, फिर चाहे हमारा व्हाट्सएप हो या हमारा टिकटॉक हो, हमेशा हमारा साथ देती है। लिखती है कि कब से हम इंतज़ार कर रहे थे और आ गए तो आपको अच्छा लगा। चलिए, आप लोगों से मिलकर हमें भी अच्छा लगता है। और अगला जो गाना है, आपके नाम हम करते हैं सेजुलिया विलाश के, आपके पूरे परिवार जो मॉरिशस में है उनके नाम, खासकर आपकी मामा सुमंती, आपकी बहनें हैं आरती, सचिता, बबीता, रेखा, भाई है सत्यम, भाभी है उषा, दीक्षा, शिक्षा, श्लेषा, देन वी हैव अनिकेत, अक्षय, ऋषभ, ऋतिक, सभी सुनने वालों के नाम ये तराना आपकी ओर से। और ये गाना खासकर मानिता जी, आपके नाम हम करते हैं, आपके इतने प्यार भरे मैसेज के लिए धन्यवाद। वीना जी नोवेल फ्रांस से हमारा साथ दे रही है। वीना जी, धन दौलत आपने कहा, ये जो गाना है हमें नहीं मिल रहा है, आपने हमें जो रिक्वेस्ट भेजा है, अगर कोई और गाना आप सुनना चाहती है तो ऑब्वियसली अभी के लिए ये जो तराना, अभी के लिए ये जो तराना चलने वाला है, इसे हम आपके हस्बैंड देव के नाम करते हैं आपकी ओर से। टेकन फ्रॉम द मूवी माँ और ममता, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में रुत बेकरार है। यकीनन वेदर की बात करें तो बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बरसात भी हो रही है। रह रहकर आपके यहाँ मौसम कैसा है बताइएगा ज़रूर हमें।

0: नहीं भी बहुत है इन सभी गानों के शौकीन भी बहुत है और ऐसा ही कोई गाना आप भी सुनना चाहते हैं या किसी के नाम करना चाहते हैं जुड़ जाइए हमारे साथ इन योर सुहाना सफर ऑन रेडियो मनोरंजन 5250600 है नंबर हमारा आपके मैसेजेस के लिए आपके फोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऑन 4028070 इस समय सीता जी हमारा साथ दे रही है और सीता जी की ओर से गाना जाता है उनके नेफ्यू अश्वन के लिए साथ में है यहाँ पर बेबी राजेश अंजू सभी लक्ष्मण परिवार और सभी रामभुजन परिवार जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनाडे साहब की आवाज़ में ये गाना जो है इन्होंने मांगा है एक फूल दो माली फिल्म से दिया गया यहाँ पर वैंकूवर कनाडा से किरण पुरी हमारा साथ दे रहे हैं गुड आफ्टरनून आपको भी देन वी हैव जीजी लाल नरेंद्र कुमार निंदी कलाराम कारीगर हमेशा जो है कनाडा से साथ देते हैं हमारे सभी प्रोग्रामों में जुड़ते हैं तो ये गाना आप सभी के लिए भी हम करते हैं
1: You're listening to RM3 Radio

खाना सफर, खाना सफर। चलिए लंच टाइम है, लंच करते करते हमारा साथ दे रहे हैं आप सभी को बुना पीछी हमारी ओर से शुभाहार। अच्छे खाने के साथ साथ अच्छे अच्छे गाने इससे बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या भला। ऐसे बहुत से लोग खाते खाते टीवी देखना पसंद करते हैं, बहुत से लोग खाते खाते बातें करना पसंद करते हैं, बहुत से लोग अकेले खाना पसंद करते हैं चुप रह कर बिना कुछ बोले, कुछ लोग गाने सुनते सुनते खाना खाना पसंद करते हैं। चलिए जैसे भी आपकी पसंद है, अभी के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। यस, आमने सामने फिल्म का ये जो अगला तराना है रफ़ी साहब की आवाज़ में होगा, मेरे बेचैन दिल को। गाने की फरमाइश आई है पॉइंटर साहब से, शमीमा की ओर से। शमीमा जी कहती है मैं तो रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उन्हीं का कोई गाना हो जाए मेरे लिए। तो चलिए शमीमा जी, ये गाना आपके नाम, हमारी रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम के लिए, आपकी ओर से थैंक यू सो सो मच, हमारे सभी लवली लिसनर्स के लिए और रफ़ी साहब के सभी फ़ैन्स के लिए। इस समय जलंधर, इंडिया जलंधर से हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं सुशील विज जी, साथ में है संगीता विज, आप दोनों का वेलकम है। लवली वेदर इन जलंधर, ऑल राइट। चलिए और इन गानों को सुनकर मौसम और भी अच्छा हो जाए ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो चलिए आप दोनों के नाम भी ये खूबसूरत सा तराना सुशील जी और संगीता जी चल पड़ा।

0: अपना सफर।
1: और चलिए आपका भी शुक्रिया, इतने दूर दूर से आप लोग हमारा साथ देते हैं। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेडिकेशन, और अगला जो गाना है हमारे साथ बहुत से जो लिसनर्स है जो आज इंडिया से साथ दे रहे हैं, बहुत सारे आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं। एंड जलंधर से वी हैव HR कपिला जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए यहाँ पर एक मैसेज आया है, कह रहे कि कोई गाना शैलेंद्र सिंह जी का अगर हो तो क्यों नहीं जी। चलिए शैलेंद्र जी का ये जो गाना हम चलाने वाले हैं, सुहाग फिल्म का ये तराना है, शैलेंद्र सिंह, रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में ये गाना जाता है। वीना जी, आपके और आपके हस्बैंड देव के।

चले हमारी और आपकी यारी और दोस्ती भी यूं ही बनी रहे। रेडियो मनोरंजन RM3 रेडियो मनोरंजन पर जब भी मौका मिले हम तो आते ही रहते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। और इसी के साथ समय हुआ है इस अगले गाने का। अगला जो तराना है काला सोना फिल्म का गाना होगा और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 1 बजे के समाचार की ओर।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था नमस्कार
3: नमस्कार 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का आज आधी रात से पेट्रोल की कीमत बढ़कर ₹77.70 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹78.35 प्रति लीटर हो गई है दोनों की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल प्राइस कमेटी के मुताबिक प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट में 3.63 बिलियन रुपये का घाटा है बच्चों की टॉफियों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं हादसों की हालिया चेतावनी के बाद नादेक ने कर सोशल मीडिया पर जारी बयान में माता पिता को भरोसा दिलाया है नादेक के मुताबिक गांजे से जुड़े पदार्थ वाली जिन टॉफियों की बात हो रही है उनका हमारी दुकानों और सुपर मार्केट्स में बिकने वाली टॉफियों से कोई संबंध नहीं है संस्था ने स्पष्ट किया है कि यह मामला पिछले साल एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री से हुई जब्ती का है सांसद वेरोनिका गोविंद के पति गुलशन गोविंद को गांजा की खेती पर की खेती और मेथाडोन रखने के अस्थाई आरोपों के में कल रिवियनोर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत दे दी है अदालत के मुताबिक पश्चिमी तट के पास रहने और स्कीपर्स को जाने की संभावना के आधार पर उनके भागने का खतरा जताना पुलिस की केवल आशंका है हालांकि उन्हें समुद्र तट से 200 मीटर के भीतर जाने की इजाजत नहीं होगी जमानत मिलने के बावजूद गुलशन गोविंद पुलिस हिरासत में है क्योंकि उन पर रिवियनोर के करीब 155 किलो गांजा मंगवाने की साजिश का एक अलग अस्थाई आरोप है इसकी अनुमानित कीमत 23.40 करोड़ रुपए बताई जा रही है सुनवाई के बाद उन्हें फिर से पुलिस सेल में भेज दिया गया उनके वकील रुबेन मुहंगा पिले ने साजिश का ये अस्थायी आरोप हटाने की मांग की है जिस पर अदालत 6 अक्टूबर को फैसला सुनाने वाली है 1 अक्टूबर को चीनी गणराज्य की स्थापना के 77 वर्ष पूरे होंगे इस मौके पर कल शाम एबेन के हेनेसी पार्क होटल में आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया सांसदों राजनयिकों और राजनीतिक हस्तियों ने इस वर्षगांठ के साथ मॉरिशस और चीन के बीच 50 साल से अधिक पुराने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का भी जश्न मनाया विदेश स्तर पर दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के पूर्वी इलाके से 3 और महिलाओं के शव बरामद किए गए इसके साथ ही पिछले 2 महीनों में वहां मिले शवों की संख्या 12 हो गई है पुलिस के मुताबिक ताजा 3 शव शनिवार से सोमवार सुबह के बीच मिले 3 मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं और उनका दूसरी मौतों से कोई संबंध सामने नहीं आया है लेकिन पुलिस किसी सीरियल किलर की आशंका से इनकार नहीं कर रही है इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर Trois boutiques triolées, 74 साल के 74 years old के राजेश्वर जोराई की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें राजेश के नाम से अधिक जानते थे उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके बेटे नीतीश जोराई के मकान Trois boutiques triolées से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी त्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
4: on MBC Play and MBC.mu.
5: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. Suhana Safar.

0: सुहाना सफर
1: चलिए सुहाना सफर के सेकंड आवर में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। मैं हूँ सुमी और चलिए 2 बजे तक यहाँ पर ये जो सफ़र है चलने वाला है और रेडियो पर जितने हमारे सुनने वाले हमारा साथ दे रहे हैं और साथ ही इस समय वी आर लाइव ऑन आवर टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन, वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोपहर का वक्त है, लंच कर रहे हैं, आप सभी को बुना पीछे हम कहेंगे। नंदा जी पाई से हमारा साथ दे रही है, कह रही है हो सके तो संगम फिल्म का तराना हो जाए। तो चलिए संगम फिल्म का ये जो गाना है जाता है सभी पुनीता परिवार और सभी गणेश परिवार के नाम जो पाई से हमारे साथ कनेक्टेड है। देन वी हैव ललित मोहन जी एंड प्रेमा है, रोशनी है, तेज है, जया है, इंदिरा है, सुभाष जी पुराने गानों को पसंद करते हैं और हमारे इस लाइव को भी एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारे साथ रॉय राजपूत जी भी जुड़े हैं, ये गाना मैं मांगने वाला था पर चला गया। चलिए कोई बात नहीं, देखा आपके दिल की बात हम समझ जाते हैं इसलिए आपका पसंदीदा गाना आपके मांगने के पहले यहाँ पर चल पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, प्यार से साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा

जी अगला गाना आपकी ओर से राजेश उगाव के नाम देन वी हैव अ वेश्टी जस्ट जॉइंड फ्री पीरियड एट वर्क ओके तो चलिए अभी अभी जुड़े हैं तो प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए और राइट रोशनी जी जानकर अच्छा लगा कि आप ठीक है देन वी हैव ऐश हाय कैसे हैं आप शमा नमस्ते शमा जी एंड यहाँ पर इतने प्यार से आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए शुक्रिया और चलिए अभी के लिए संगम फिल्म का ये तराना ओ महबूबा मुकेश साहब की आवाज़ में आप सभी के नाम खासकर मुकेश साहब के सभी फैंस के लिए

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चले दिल के करीब तो ये सारे गाने हैं जिन्हें इतने सालों बाद भी आज हम सुनना पसंद करते हैं। फिर चाहे मुकेश साहब की आवाज़ हो, रफ़ी जी की आवाज़ हो, मनाडी जी की आवाज़ हो, या फिर लता जी या आशा जी की आवाज़। और कल लता मंगेशकर पर जो हमने प्रोग्राम किया था 4 से 6 बजे के बीच में, लोगों ने बहुत पसंद किया था। और साथ ही शाम को दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में बहुत सारे लता जी पर डेडिकेशंस थे, लोगों को वो भी अच्छा लगा था। आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। और चलिए गानों का ये जो सिलसिला है आगे हम ले जाते हैं। जया जी इस समय हमारा साथ दे रही है। वेष्टि जी की ओर से गाना जाता है उनके हस्बैंड नीलेश के नाम सभी बाबूलाल परिवार के लिए। और उस समय वो काम करते करते हमारा साथ दे रही है तो कह रही है कि फ्लाक के रामनाथ जीता बॉयज़ कॉलेज के सभी स्टाफ के लिए अगला गाना। तो बिल्कुल चलिए सभी के नाम ये अगला तराना हम करेंगे। डी है जो फोंजीसाक से हमारा साथ दे रही है। एंड आने हैं जो फ्लाक से हमारे साथ जुड़ी है, कह रही कि अगला गाना हो जाए आपके पति के लिए। और राइट बेन ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजुलिका जी भी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। और चलिए दोपहर का वक्त है और ऐसे गाने तराने सुनते सुनते टाइम भी बहुत अच्छे से बीत जाता है ना। चलिए इस समय सचिन कुमार जी हमारा साथ दे रहे हैं। हेलो नमस्ते सचिन जी, कैसे हैं आप? विशाल जी ओके और यहाँ पर रॉय, हेलो नमस्ते रॉय, कैसे हैं आप? प्रेमा जी वेलकम आपको। एंड रिमझिम गिरे सावन, और राइट मौका मिला तो इस गाने को हम ज़रूर चलाएंगे। अभी के लिए जो तराना है आनंद आश्रम फिल्म का ये गाना है, आशा जी और किशोरदा की आवाज़ों में आप सभी के लिए चल पड़ा।
2: RM3 रेडियो

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर सुहाना सफर ये प्रोग्राम, काश के सभी प्यार को, सभी खूबसूरत लम्हों को, सभी बातों को जो हमें अच्छी लगती है, जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, उन्हें संजो कर रख पाते, उन्हें बांध कर रख पाते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता है। समय के साथ सब कुछ जो है कहते हैं ना, फेड होने लगता है और बस यादें बनकर ये सारी चीज़ें रह जाती है। और यादों का ये जो सिलसिला है, इन गानों के ज़रिए यहाँ पर हम जी रहे हैं। देखते ही देखते दोपहर के 1:20 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। क्रांति फिल्म के इस अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। रॉक गंगाराम जी हमारा साथ दे रहे हैं, गाना जाता है आपके लिए। साथ में जय सिंह, करिश्मा, रवि, केशनी, जानव, धनवी एंड हेसान के लिए, सभी गंगाराम परिवार जो हमेशा हमारा साथ देता है। विमी है यहाँ पर, विश्वानी जी है, नीलिमा जी है जो बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी है, हमारी प्यारी कुसुम भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। कुसुम व्हाट्सएप के साथ साथ टिकटॉक पर भी मैसेज कर रही है, तो थैंक यू सो मच। कल्याणी हरी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और चलिए यहाँ पर इतने सारे हाय, इतने सारे हेलो के लिए शुक्रिया कुसुम। नाज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गानों को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक है। आने ओके, आने अभी अपने नाम भेजा तो गाना जाता है आपके बेटे आयुष के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में है और आप फ्लैग से हमारे साथ जुड़ी है। ऑल राइट शैनन जी, अगला गाना आपकी ओर से आपके हस्बैंड के लिए, लेकिन आपने अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताया, बताइएगा। देन वी हैव प्रिया, हेलो प्रिया, हेलो सूरज जी कैसे हैं? जितने हमारे फॉलोअर्स हमारे इस लाइव को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर यही गाना जाता है नीलिमा जी आपके लिए, थैंक यू सो मच। अगला गाना आपके हस्बैंड रमेश के लिए। देन वी हैव निशा, मानव, आपकी मामा रेनू जो थोड़ी बीमार है, चलिए हम प्रे करेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। राइट सूरज जी, थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारे सभी प्रोग्रामों में जुड़ते हैं, फिर चाहे रेडियो मनोरंजन हो या रेडियो मॉरिशस हो, आज भी आप ट्रियोले से हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू। हेलो विक, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। हेलो माधुरी,
2: यू आर लिसनिंग टू RM3,
1: कहाँ थी आप? चलिए हमने आपको बहुत याद किया और आप आ गई, तो क्रांति फिल्म का ये गाना आपके लिए भी हम करते हैं और चलिए गाना चल पड़ा। यही गाना श्रुति शिखा आपके नाम, भाभी मोक्षदा के लिए, उनका जन्मदिन है। ओके मोक्षदा जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज सभी चिंतामणि परिवार की ओर से।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: और चलिए यहाँ पर इन प्यार भरे गीतों के साथ आपके प्यार भरे मैसेजेस, आपके प्यार भरे डेडिकेशन हमें मिल रहे हैं। और यकीनन कहते हैं ना कि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर नफरत के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पर इन गानों को आगे ले जाते हैं। और अगला जो तराना है किशोरदा और लता जी की आवाज़ों में, वेष्टि आपके नाम हम करते हैं। किरण पुरी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड विनय है, विमला है, बड़े ही प्यार से हमारे साथ कनेक्टेड है। रंबा जी विलनुआ से हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है सभी पितिया फैमिली के नाम। किरण जी की ओर से गाना जाएगा रिया, कृषि और उनके हस्बैंड ऋषि के लिए। न्यूयॉर्क सिटी, आपका नाम हमें नहीं पता चला, लेकिन चलिए न्यूयॉर्क सिटी आपके नाम ये अगला तराना। वरुण जी भी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं अभी है यहाँ पर, और बहुत सारे सुनने वाले तो है ही, साथ में बहुत सारे फॉलोअर्स भी है। तो चलिए ये एवरग्रीन तराना चल पड़ा आप सभी के लिए, रिमझिम गिरे सावन।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चले कुछ गाने ऐसे होते हैं पुराने गाने मतलब कि इस तरह से हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन गए होते हैं या इस तरह से हमारे दिल में बसे हुए होते हैं। वो गाने में एक्टर कौन था एक्ट्रेस कौन थी गाने में जो पिक्चराइजेशन था उन्होंने क्या पहना था बैकग्राउंड क्या था वो सब याद होता है ना। और ऐसा ही कोई गाना अगर आपके भी मन में है आपके भी जहन में है सुनना चाहते हैं या किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं आप सभी का वेलकम है। बेशक आप अपने डेडिकेशन हम तक पहुँचा सकते हैं। अभी के लिए अगला गाना रॉकी आपके नाम हम करते है। बबीता जी हमारा साथ दे रही है वी हैव संजय जी जो बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैसेज आया है फ्लक्स से अनीता जी की ओर से ओल्ड इज गोल्ड नाइस सिलेक्शन थैंक यू सो मच अनीता जी। अगला गाना आपके नाम भी हम करते हैं इतने प्यार से आप हमारे साथ जुड़ी हुई है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभार काफ़ी सारे मैसेजेस जो हैं मिस हो जाते हैं तो चलिए ऐसे में अगले तराने की ओर हम बढ़ते हैं। और ये गाना बड़े ही प्यार से हरीश जी आपके नाम हम करते हैं एंड करुणा जी आपके लिए भी ये गाना साथ में आपके हस्बैंड के नाम एंड नीलेश जी थैंक यू आपके प्यार भरे साथ के लिए एंड आरती जी थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस सिलेक्शन। कुर्सी जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं थैंक यू वेरी मच एंड यहाँ पर कविता हिरोआ जी थैंक यू सो मच एंड सुनीता जी आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी है इसके लिए शुक्रिया। उषा जी अगला गाना आपके नाम और आपके सभी स्टाफ के लिए आपके सभी कलीग्स के लिए चलिए बहुत से लोग इस समय काम करते करते हमारे साथ जुड़ते हैं इसके लिए शुक्रिया। वो सात दिन फिल्म का ये तराना चल पड़ा आप सभी के नाम लता जी की आवाज़ में।
2: You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: यस, प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता है। और चलिए यहाँ पर अगला गाना कुसुम की ओर से हयान के नाम जाता है। एंड इस समय बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। करुणा जी, आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विद्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दोपहर का वक्त है, अगर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो लंच टाइम के बाद भी थोड़ा सा मौका मिल जाता है तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। बहुत से लोग घर से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, आराम करते करते गानों का मज़ा उठा रहे हैं। एंड देन वी हैव हंसवी, उषा, आरती, नीलेश, प्रवीण, परवीन, जानू, हरीश जी है, विद्या जी है, आरती जी है, गिनी है, बबीता है, प्रीति है, खुशबू भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। चलिए बड़े ही प्यार से गाना खुशबू और कुसुम आप दोनों के नाम हम करते हैं। और बहुत सारे लोग गानों के सिलेक्शन को एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। अभी के लिए तोहफा फिल्म का ये गाना हो जाए किशोरदा और आशा जी की आवाज़ों में।

0: चलिए तोहफा फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे किशोर दा और आशा जी की आवाजों में और ये गाने कहीं ना कहीं इतने खूबसूरत है कि क्या कहें
1: सुहाना सफर
0: यस सुहाना सफर है बड़े अच्छे लगते हैं बालिका बधू फिल्म का ये जो गाना है बस चलने ही वाला है अमरदीप जी आपके नाम और जितने भी हमारे फॉलोवर्स इस समय हमारा साथ दे रहे हैं देविका जी है एंड निशी जी गाना चाहता है आपके नाम आपकी ओर से आपके हस्बैंड विक्रम के लिए वदिश है विधान है दर्शन है सभी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हैं हेलो केशनी जी हेलो रोशन टेलर जी कैसे हैं आपको वक्त मिल गया हमारे साथ जुड़ने का एंड देन वी हैव आशना मिस्टर लव ये अगला गाना आपके लिए अनीशा थैंक यू सो मच केशनी जी गानों को पसंद कर रही है इसके लिए शुक्रिया रविंद्र जी कैसे हैं आप शैनन आप भी है आपके लिए भी चलिए गाना हम करते हैं और राइट आपका ये मैसेज हमें मिल गया था न्यूयॉर्क सिटी आशना आते ही गुस्सा करने लग गई मैंने कहा था ना ये आती है तो बस बरसने लगती है पता नहीं क्यों लेडी जागवो सुनीता रीमा आशना मिष्टी सभी के लिए अगला गाना बड़े ही प्यार से सना जी ऐसे सभी के सभी यहाँ अच्छे हैं सभी अपना काम करते हैं सभी अपना बेस्ट देते हैं लेकिन आपके इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी कैसे हैं आप हेलो ममता जी थैंक यू अंकित जी एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ उम्मीद करते हैं आप भी ठीक है हेलो रीता जी और यहाँ पर वृष्टि आपको भी हम नहीं भूले हैं हैप्पी बर्थडे To my dog Cookie on radio because he's listening. Oh, lovely. Hello, Cookie. I know हमें बताया गया कि you're listening to us. So happy birthday आपको. ऐसे कहते हैं ना कि ये जो हमारे pets होते हैं ये हमारे life को और भी खूबसूरत बनाते हैं. तो चलिए आपके Cookie को happy birthday हमारी पूरी team की ओर से. मानिता जी, thank you so much आपके इस message के लिए. और यहाँ पर आपका मैसेज हमें यहाँ पर भी मिला था एंड आनंद जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सन हेलो कैसे हैं आप हॉलैंड से आनंद जी हमारा साथ दे रहे हैं एंड नीतू जी सैंपियर से हमारे साथ जुड़ी हुई है ऐसे इस जगह का नाम हम नहीं लेंगे वरना इसकी फ्री में पब्लिसिटी हो जाएगी लेकिन चले जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेलो दिया कैसी है आप हेलो सागर कैसे हैं आप हाँ मालिनी जी हाय और चलिए इसी के साथ ये जो अगला गाना है बस यहाँ पर चलने ही वाला है आप सभी के लिए और इसी गाने के साथ हमारे सभी फॉलोअर्स का हम थैंक यू कहते हैं जो हमारे इस टिकटॉक लाइव से हमेशा जुड़ते हैं हमारा साथ देते हैं और साथ ही हमारे तमाम सुनने वालों का भी शुक्रिया जो रेडियो के ज़रिए हमारे साथ जुड़े रहते हैं आपके फ़ोन कॉल्स आपके मैसेजेस के लिए शुक्रिया

चले, हमें भी आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है और ये साथ अब ख़त्म होने को चला, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात जल्द फिर होगी रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफ़र। इस प्रोग्राम में आपने इतने प्यार से आज भी आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपके इतने सारे डेडिकेशंस, आपके इतनी सारी फरमाइश, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस और साथ ही टिकटॉक लाइव पर हमारे जितने फॉलोअर्स ने हमारा साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 2 बजे के समाचार की ओर, और 2 बजे के समाचारों के बाद जो है आप सुन पाएंगे उड़ान की कहानी इस प्रोग्राम को रत्ना की प्रस्तुति में। तो हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार आप सभी को।

0: Upcenter 95.5. North, South 95.6. East, West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे भी थी माँ नमस्कार आपको
4: नमस्कार नीतूषा सभी सुनने वालों को नमस्कार हाउस होल्ड गार्डनिंग स्कीम में नए बदलाव किए गए हैं अब इस सब्सिडी का उद्देश्य केवल घर के पीछे में मिनी ग्रीन हाउसेस लगाना है सरकार ने नई हाउस होल्ड गार्डनिंग स्कीम को वित्त पोषित करने के लिए 2 मिलियन रुपये का बजट रखा है जो अक्टूबर से उपलब्ध होगी रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 78.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है ये 10% की वृद्धि को दर्शाता है पेट्रोलियम प्राइस कमेटी के अनुसार प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट 3.63 बिलियन रुपये के घाटे में है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के 77 वर्ष पूरे हो रहे हैं जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई थी इस अवसर पर कल शाम एबेन के हेनेसी पार्क होटल में एक औपचारिक समारोह के दौरान इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया गया मॉरिशस और चीन के बीच 50 से अधिक वर्षों के राजनयिक और व्यावसायिक संबंधों का जश्न मनाने तथा इस वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए सांसद राजनयिक सदस्य और प्रमुख राजनीतिक हस्तियाँ एकत्र हुई थीं और विदेश में नेपाल में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है बारिश और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं नदियां उफान पर हैं और मनांग जिले में हिमस्खलन की चपेट में आने से 2 पर्वतारोहियों की भी दर्दनाक मौत हो गई है तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई थोड़ी देर में शोक समाचार ट्राबुचिक ट्रियोले में 74 साल के 74 years old के श्री राजेश्वर जोराय जो राजेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज सुपहर तीन बजे उनके बेटे नीतीश जोराय के घर ट्राबुचिक ट्रियोले से उठाकर तेमिनिस ट्रियोले की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं एक नई उड़ान की कहानी को लेकर। और यहां पर हम सशक्त महिला के प्रगति की बात करते हैं, किस प्रकार से आज महिलाएं समाज में अपना पाया जमा रही हैं और किस तरह से बिल्कुल समाज के विकास में, देश के विकास में उनका सहयोग मिल रहा है। और बिल्कुल जहां पर हम कह सकते हैं कि वाइट कॉलर्स यानी बड़े बड़े ब्यूरो में काम करने वाली भी ऐसी महिलाएं हैं जो इस मंच पर आ चुकी हैं, पर आज हम आपको ले चलेंगे धरती की उस गोद में जहां पर कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो खेतीबाड़ी को लेकर अपने कदम जमा रही हैं। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मी फ्लावर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, श्रीमती मीना सल्तू जी, जो हमारे स्टूडियो में पहले भी आ चुकी हैं और आज पुनः आई हैं। और आज उनके आने का मकसद कुछ अलग है, कुछ हटकर है। और वो किस तरह से हमारी समाज में जितनी भी महिलाएँ हैं, किस तरह से वे खेती में अपना बिल्कुल प्रगति कर सकती हैं, किस प्रकार से वे इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकती हैं, इस पर कुछ और ज़्यादा जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें इस वक्त सहयोग मिल रहा है। तकनीक पर हमारे साथ बने हुए हैं अवि और उरुसा, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट रत्नमाला मंगरू जी हमारे साथ बनी हुई हैं एज प्रोड्यूसर। तो आइए स्वागत करते हैं मीना जी का। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आदर रत्ना जी नमस्कार। सबसे पहले मैं तो आपकी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आप ऐसे मंच पर बैठे हैं जहाँ पर आप लेडीज़ को एम्पावर करते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो आगे बढ़ें, तो उसके लिए आपको हैट्स ऑफ। मैं सोचती हूँ कि एक प्रोग्राम आप पर भी हो जाए, मैं आपकी हॉस्ट बनूं।
1: अरे बाप रे, ये तो मतलब बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा तब तो। मतलब मुझे लगता है कि मेरी तो बात करने की आदत है, मुझे बात करना अच्छा लगता है और मैं समझती हूँ ये मंच उन लोगों के लिए है जो अपनी कहानी बता सकते हैं। उड़ान की कहानी इसका नाम इसीलिए रखा गया है और आज बिल्कुल आपने उड़ान, ऐसी उड़ान भरी है। तो बिल्कुल आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, आज एक बार फिर हम जितनी भी महिलाएं, जितने भी लोग, जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम बिल्कुल एक बार फिर परिचय करवाना चाहेंगे। मी फ्लावर्स क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, कितने सालों से आप इस फील्ड में हैं?
0: अच्छा, मी फ्लावर्स की जो स्थापना है वो ऐसे स्थापित हुआ नहीं, वो इट हैज़ बीन क्रिएटेड, वो अपने आप में बनी हुई है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि 2020 में जब कोविड आए थे तो मेरी एक शॉप थी ब्राइडल वेयर्स की, इंडियन ब्राइडल वेयर्स, तो वो रुका पड़ा हुआ था। तो मैं ठहरी, मेरी जो शॉप थे वो थे गार्डनिंग करना, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो ज़्यादातर वो सीडलिंग्स में काम करते हैं, प्लांट्स के। तो मैं क्या करती थी, मेरे फ्लावर्स वहाँ पड़े रहते थे तो लोग आते थे, पूछते थे कि ये इज इट ऑन सेल, सो मैंने कहा हाँ हाँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत थे। तो ऐसे ऐसे करके जब लगा कि लोगों को फूल पसंद आ रहे हैं, ये जो गार्डनिंग पसंद आ रहे हैं, और वो भी ना ही नौजवान लोग, सब वर्ग के लोग, जवान या फिर हमारे बुजुर्ग जो हैं,
1: और बिल्कुल मैं समझती हूँ कई सारे हैं जो अपना घर बना रहे हैं, नया घर तैयार कर रहे हैं। और आजकल देखा है मॉरिशस में मैंने कि बहुत सारे लोग अनयूजुअल फ्लावर्स यानी जो बहुत रेयर हैं ऐसे फ्लावर्स अपने आंगन में बोना पसंद करते हैं।
0: तो ऐसे ये उन लोगों के भी लगाव को देख कर ये बिजनेस बना, ये वहां से शुरू हुआ।
1: हाँ, तो जैसे धीरे धीरे करते हुए आपने डाइवर्ट किया अपने आप को इस फील्ड में, यानी फिर तब जैसे कोविड के बाद जहाँ पर टेक्सटाइल का जो, यानी जहाँ पर कपड़े बेचते थे उन लोगों का जो कारोबार है वो कुछ कम पड़ गया।
0: और वो तो जैसे कहते हैं गुड इन डिसगाइज, तो हमारे लिए तो ठीक ही हुआ क्योंकि कोविड के वक्त में ये जो एग्रीकल्चर थे वो इंटैक्ट थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जितने लोगों ने अपनी खेती बाड़ी को संभाल कर रखा, हाँ, अपने घर आंगन में वे लोग अपना जो चालू कर, मतलब हाँ, वो जो एग्रीकल्चर का जो काम था वो उन्होंने जारी रखा। बिल्कुल,
0: और वही वो समय था जब मेरे ख्याल से सब ने ये रियलाइज किया कितना इम्पोर्टेंट है हमारा एग्रीकल्चर, कितना इम्पोर्टेंट है हमारा मॉरिशस जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बने।
1: बिल्कुल,
0: तो वही से शुरू हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज इसकी महत्व, हम कह सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि सच में देखा जाए तो ये जो मिट्टी है वो सोना यूं ही नहीं कहा गया है, बस उसको आपको उसे सोने में परिवर्तित करना, ये इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, मी फ्लावर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तो नहीं कहेंगे पर एक ऐसा फर्म है जहाँ पर लोगों को इसके बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी भी खुद देती हैं मीना जी। और बिल्कुल मीना जी, जब आपने शुरुआत करी थी फूल पौधों के साथ, तो पहले तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी क्या आपने इस फील्ड में कोई पढ़ाई की है?
0: जी बिल्कुल की थी, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया था क्योंकि मेरा पैशन, मैं सीखना चाहती थी। मैं ज़्यादातर ग्रीन हाउसेज में मैंने पढ़ाई की थी, ग्रीन हाउसेज में, तो ये हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत सारे कोर्सेज देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मैंने गत बार भी बोला था अपने प्रोग्राम में, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे जो गवर्नमेंट हैं वो बहुत सारे फ्री कोर्सेज फागे में देते हैं, तब तो उसका नाम आगे था, अब फागे है।
1: बिल्कुल,
0: तो वहाँ से मैंने A to Z सीखा, लेकिन एक तरफ से वो मेरा पैशन भी था ना, तो वो सीख जो है मैंने लेट्स से 200%

0: सीखा क्योंकि मैं जो सीखती थी वो करती भी थी तो वहां से मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मैंने ऑब्टेन किया ग्रीन हाउसेस में कैसे प्लांटते हैं कैसे पानी देना होता है कैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह उनकी खाद कैसे लगाते हैं कितने दिन पर लगाते हैं ये सब हमने सीखे हैं
1: यानी तो हर पौधे का अलग होता है
0: एकदम फूल का भी मैंने सीखा है वहां तो वो तब जब मैंने सीखा वो काम नहीं आया लेकिन जब मैंने शुरू किया ये बिजनेस तब ये बहुत काम आया
1: यानी कह सकते हैं कि जो भी हम सीखते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता वो बेकार नहीं जाता कहीं ना कहीं आपको जीवन में वो जरूर कहीं ना कहीं वो काम आता ही है
0: और मैंने वो सीखा था 2013 तब सीखा था लेकिन अब भी होता है लेकिन काम आया 2020 में
1: हाँ। तो मतलब इतने सालों के बाद जब आपने इसको अप्लाई किया अपने काम में तो कोई अंतर महसूस किया कि जैसे पहले के समय में यानी हम 2014 की बात करें तो 2014 को भी मान लीजिए 10 बरस हो चुके हैं तो 10 बरस से भी ज्यादा तो 10 साल पहले की बात और अभी जो है हालांकि समय जिस तरह का चल रहा है क्या इसमें कोई चेंजेस आए हैं बिकॉज देखा जाए तो टेम्परेचर क्लाइमेट ये सारी चेंजेस आ रही हैं तो आपने कोई पर्सनली चेंज इसमें नोट किया है
0: रत्ना जी आप 10 साल की तुलना कर रहे हैं मैं तो हर साल में ये चेंज देखती हूँ हर साल चेंज होती है जो फूल फूलते थे समर में अब तो वो विंटर में ही खिल रहा है जो खिलते थे विंटर में अब समर में
1: मतलब पूरा परिवर्तन हो चुका है
0: पूरा परिवर्तन हो चुका है हम तो ये हर साल देखते हैं चेंज होता ही रहता है
1: जी।
0: अभी ही आप देखिए लास्ट वीक कितना गर्मी हो रहा था
1: ऐसा लग रहा था जैसे समर सीजन आ चुकी
0: एंड दिस वीक
1: या
0: जैसे
1: समय जैसे टेम्परेचर है अगेन थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है
0: लेकिन ये बहुत प्रभावित करते हैं पेड़ पौधों को बहुत ही मैं ये अपॉर्चुनिटी सीज करना चाहूँगी बहुत सारे लोग और उन लोगों के रीज़न भी हैं बोलते हैं ये वेजिटेबल्स बहुत बढ़ गए हैं प्राइस बहुत बढ़ गए हैं पूजा पाठ हैं इसीलिए बढ़ गए हैं प्राइसेस बढ़ गए हैं ऐसा नहीं होता है मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है हमारे जो एक बीघा ऑंगीव है एक बीघा चिली है वो सब मैंने वीडियो करके दिखाए थे और एक बीघा वैम तो मैं हर रोज जब हम हार्वेस्ट करते थे तो मैं वीडियो करती थी देखिए आप कितना सुंदर हो रहा है कितना ये फूल रहा है कितना हमें ऑंगी मिल रहा है हमें चिली मिल रहा है एक वीक के बाद जब ये एंटी साइक्लोन आया आप मानेंगे नहीं सारे जो पेड़ जो है साइक्लोन वाला ऐसा विनाश नहीं हुआ लेकिन जो भी फूल थे वो सब झर गए कितने पेड़ पौधे वो येलो हो गए तो इसीलिए बढ़ता है वो एक वीक ही दो दिन ही अगर रेनफॉल हो गया ना
1: तो वो पूरा खराब कर देता है
0: बर्बाद हो जाता है तो इसीलिए प्राइसेस बढ़ते हैं
1: और मैं समझती हूँ यहाँ पर डायरेक्टली हम डिमांड और सप्लाई की बात होती है कि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम हो चुका
0: है इसीलिए
1: उसका प्राइसेस बिल्कुल
0: और ये भी एक बात है ना बहुत कम लोग ये एग्रीकल्चर में हैं बहुत कम लोग इसीलिए प्राइस बढ़ता है अगर बहुत सारे लोग आएंगे करेंगे इसमें
1: सप्लाई बढ़ेगा
0: सप्लाई बढ़ेगा हम ही अगर खुद ही सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे आप ही सोचिए अगर आपके पास आपको लालो मिल जाता है आज के दौर में आज प्रेजेंटली लालो 250 लालीव है
1: बिल्कुल
0: लालीव या किलो मुझे मालूम नहीं लेकिन है
1: महंगा
0: चार ही पौधे अगर आपके पास हो
1: तो मतलब आपके पास एक समय की सब्जी
0: आपको बांटना पड़ेगा इतना लालो मिलता है चार ही पेड़ में
1: चार ही पौधों में
0: आपको इतना लालो मिलेगा कोई आएगा तो आप उसे दे भी देंगे क्योंकि बहुत सारे होंगे
1: बिल्कुल
0: तो मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ हर हर हर एक को होम गार्डनिंग ही आप कीजिए आप बड़े मात्रा में नहीं कर पाएंगे होम गार्डनिंग ही कीजिए कुछ ऐसे लेची डालिए ऑंगीव डालिए लालो डालिए ये पोमनामू डालिए ये बहुत अच्छा रहेगा
1: बिल्कुल जैसे कुछ ऐसे सब्जी हैं कुछ ऐसी सब्जियां हैं फल है सीजनल जो है आप अपने आंगन में अगर थोड़ी सी जगह है आप कोने में रोप देते हैं बिल्कुल और हमारे मैं समझती हूँ हर सोमवार को जो प्रोग्राम होते हैं आज की चर्चा के कार्यक्रम उसमें भी हमें बहुत सारे ऐसे अफसर आते हैं समझाते हैं किस प्रकार से देखभाल करनी है अगर कोई दुविधा होती है कोई भी मुसीबत होती है तो किस प्रकार से उनको सहयोग मिलता है और यहाँ पर मी फ्लावर्स भी यही प्रकार की

सुविधा सभी को प्रोवाइड करने के लिए तत्पर हैं। और आज बिल्कुल हम जानेंगे मीना जी से कि किस प्रकार से महिलाएं जो है वो घर बैठे ही या तो फूलों का कारोबार कर सकती हैं, सब्जियों का कारोबार कर सकती हैं, और अगर कारोबार ना भी करना चाहें तो अपने घर के लिए ही मात्र वो अपने सब्जियों को अपने आंगन में ऑर्गेनिक तरीके से उगा सकती हैं, जो पूरी तरह से हेल्दी भी रहेगा और बिल्कुल हम अपने आंगन से जो

बस इसके इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए होता है, पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक सब्जियाँ किस प्रकार से बोई जाती है, किस प्रकार से उसकी देखभाल की जाती है, इस पर आज के इस कार्यक्रम में अभी थोड़ी ही देर में हम जानकारी और आगे बढ़ाएंगे। उड़ान की कहानी आज हमारे साथ है श्रीमती मीना सलतुत जी। तो चलिए गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में।

0: की कहानी, उड़ान की कहानी। जी हाँ, उड़ान की कहानी। और आज हर एक महिला अपने आप में एक सशक्त महिला है और बिल्कुल शक्ति का रूप मानी गई है महिला। और कहते हैं ना कि आज समय कितना तेजी से परिवर्तित हो रहा है, जहां एक ओर महंगाई बढ़ती जा रही है और महिलाओं के लिए, महिलाओं के कंधों पर एक ऐसा बोझ आ जाता है कि किस प्रकार से घर को हम इकोनॉमिकली हैंडल करें, आर्थिक रूप से हम किस तरह से हैंडल करें। तो यहाँ पर मी फ्लावर्स एकेडमी ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रही हैं जो महिलाओं को सहूलियत भी देगा, उनको एजुकेट भी करेगा और उनको बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त होगी, खासकर एग्रीकल्चर में किस तरह से वे अपना पाया जमा सकती हैं। तो चलिए, आज मी फ्लावर की मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, श्रीमती मीना सल्तू जी। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, मीना जी, पहले तो हमें ये बताइए कि मी फ्लावर एकेडमी जो है, वो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया कि कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो कौन कौन से प्रकार के कोर्सेज आप प्रोवाइड कर रही हैं?
1: अपने में ये तो कोर्सेज नहीं होंगे, क्योंकि लोग आएंगे सिर्फ सर्टिफिकेट पाने के लिए।
0: बिल्कुल,
1: हम चाहते हैं कि लोग सीखें और दिल से सीखें कि कैसे ये प्रोडक्ट उनको प्लांटा जाता है, पानी कब पानी दिया जाता है। कोई लोग, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपने कैरियर में, लोग सोचते हैं मैं जितना भी पानी डालूं उतना ज़्यादा केयरिंग हो रहा है। लेट्स से मैंने कहा ये एक इंडोर प्लांट है, तो वो इतना अंदर डालते हैं घरों में, इतने शेड में डालते हैं, डार्कनेस में, कि प्लांटे मर जाते हैं। और वो लोग आकर कहते हैं कि आपने बोला है इंडोर तो हमने अंदर रख दिया, यहाँ रख दिया,
0: अंधेरा, मतलब घर में रोशनी बिल्कुल भी नहीं है,
1: बिल्कुल भी नहीं है। और रोशनी भी अगर चाहिए तो जानना चाहिए कितना चाहिए, आपको क्या करना होता है, वो बार बार वो उसका प्लेस जो है चेंज करना होता है, आपको देखना होता है कि ये कहाँ ज़्यादा अच्छी तरह से आ रहे हैं
0: जी।
1: तो उसी से वो पैदा हुआ वो मी फ्लावर्स एकेडमी, क्योंकि हमें सिखाना है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, लोग आते हैं इतने पैसे आकर वो लोग स्पेंड करते हैं आपके यहाँ, हमारी तो हो जाती है, हमें तो पैसे मिल जाते हैं ना, लेकिन अंदर ही अंदर एक सैडनेस होती है कि पता नहीं ये लोग जाकर अच्छे से देखेंगे या जानते भी है कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं दिन में, लगभग 50-75 फोन कॉल्स ऐसे आते हैं जहां लोग पूछते हैं कैसे क्या करना है, लेकिन हमने फोन में भी देना बंद कर दिया है। अब हम चाहते हैं आप आए
0: फिजिकली, आप वहां आकर
1: लीजिए, जो आपके क्वेश्चंस होंगे आप आमने सामने पूछिए, जो भी आपको जानना होता है आप हमसे पूछिए, वो कोर्स हम आपको फ्री में देंगे।
0: मतलब आप खुद एक्सपेरिमेंट करें,
1: हाँ,
0: आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस कि किस प्रकार से इंडोर प्लांट्स की देखभाल करनी है, आउटडोर प्लांट्स में किस तरह की देखभाल करनी है, ये सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे।
1: सही है।
0: हाँ। तो मतलब देखा जाए तो एक तरह से ये एक बहुत ही नोबल कार्य है और मी फ्लावर्स एकेडमी ये प्रोवाइड कर रहा है कि किस प्रकार से आप ये सारी जानकारी ना केवल किताबों में, ना केवल बुक्स में, पर यहाँ पर आपको बकायदा सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल फॉर्म में कि किस तरह से आप कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके लिए हमें पे कितना करना पड़ेगा, आइए जानते हैं मीना जी से। मीना जी, कितना पे करना पड़ेगा?
1: बहुत पे करना होगा, क्योंकि आपको अपना समय देना होगा।
0: ओके,
1: ये समय का जो मोल नहीं होता है ना, तो वो समय ही आपको देना होगा।
0: अच्छा, मतलब समय के अलावा
1: तो फ्री है, लेकिन पेमेंट में तो फ्री है, लेकिन आपको अपना समय देना होगा,
0: जो सबसे महंगा है, जो सबसे महंगा
1: सबसे प्रीशियस है, उसका तो मोल ही नहीं
0: है, यानी आपको पैसे नहीं देने हैं, पर आपको देना होगा आपका समय। बिल्कुल, जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं आप संपर्क कर सकते हैं मीना जी से, अभी थोड़ी ही देर में हम आपको और जानकारी देंगे। पर पहले तो मीना जी हमें ये बताइए, आपको ये आइडिया आया कहाँ से कि ऐसा कुछ हमें सिखाना चाहिए लोगों को?
1: ये तो आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। मी फ्लावर्स के विजिबिलिटी के लिए हम चाहते थे कि जो बच्चे लोग हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शरी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, जो आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, हम लोगों को प्रोत्साहित करते थे, इन्विटेशंस भेजते थे कि आप आएँ, अपने ग्रुप्स को

0: लाएं, अपने बच्चों को लाएं, हम सभी सुविधाएं देंगे आपको, जो भी है फूड है बेवरेजेस, और एक गिफ्ट भी देते हैं प्लांट के, गिफ्ट भी देते हैं कि उस प्लांट को आप जाकर उसका पालन पोषण कीजिए। ये करते करते हमने देखा कि बच्चों में ये जो बच्चों जो है वो बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं। कोई पेरेंट्स आकर बोलते हैं कि मेरा जो बच्चा है ना, वो जाकर वो घर गया, वो रोज दिखता है कितना पत्ता निकला, रोज जाकर पानी देता है,
1: ऑब्जर्व करता है,
0: वो चाहता है कि कब इसमें फूल आए, कब इसमें ये वेजिटेबल्स आए। तो ये वहां से पैदा हुआ वो मी फ्लावर्स अकादमी, बहुत जरूरी है रत्ना जी, बहुत ही जरूरी है। वो आप बचपन से ही सीखें, वो पैशन आप बचपन से ही वो आप में जैसे कि वो उभारे कि मुझे ये करना है। ये बहुत, इसमें बहुत पीसफुलनेस है। आप ही देखिए ना, ये जो काम के जो प्रेशर से आप घर जाएंगे, एकाएक आपको दिखता है कि जो फूल आपने प्लांटे थे
1: उसमें छोटी सी कली निकली है,
0: एक छोटी सी कली, आपको कैसा फील होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आपका क्रिएशन, मतलब आपने पौधा बोया है और आपने उसकी देखभाल की है और उसमें जब एक छोटी सी कली, मैं समझती हूँ ये एक ऐसा सिनारियो है जहाँ पर हम सारे तनाव को भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल। और उसी आप दूसरे नजरिए से देखिए, आप घर जाते हैं, आपने पका लिया, ऐसे अपने गार्डन में जाते हैं तो आपको फ्रेश कुतुमिली मिलता है, फ्रेश लाके जवायो मिल रहा है, फ्रेश जो मिंट मिल
1: जो
0: रहा
1: है, जो आपने बोया है,
0: वो पीसफुलनेस आप समझिए वो कितना आपको खुशी देता है।
1: बिल्कुल।
0: एक तरफ से आपको इतना प्राइड होता है, इतना प्राउड फील होता है, तो वो बहुत काबिली था।
1: बिल्कुल, और मैं समझती हूँ वो एक अलग ही कनेक्शन है और वो जो भाव है, और मैं समझती हूँ जो चीज़ हम खरीद कर या कहीं से हमें फ्री में मिली है या मान लीजिए उसके लिए आपने पे किया है, तो वो जो भावना होगी वो वाइब्रेशन बिल्कुल अलग होगी। और जब आप अपने खेत में से या अपने पौधे से कोई भी स्पाइसेस लेकर आप अपने किचन में उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो जो भाव होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। और जैसे हमें मीना जी बता रही है कि बिल्कुल आज जहाँ बच्चों में वो बिलोंगिंगनेस की जो भावना है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, और ये एक माध्यम है, ये एक तरीका है जहाँ पर हम अपने भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को ऐसा कुछ सिखा दें या ऐसी कुछ चीज़ के साथ उनको कनेक्ट करें जो उन्हें अपनी धरती के साथ जोड़े रखता है, जो उन्हें ग्राउंडेड रखता है, जो उन्हें एक ऐसी भावना देता है कि भाई ये मैंने बोया है और इसको मैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से संभाल कर, पाल पोस कर, बड़ा करके इसको हमेशा देखभाल करता रहूँगा। तो कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग आज समाज में कहीं ना कहीं कम होती नज़र आ रही है, और इस फीलिंग को बिल्कुल बरकरार रखने का एक अहम कदम उठाया है मी फ्लावर्स ने। चलिए लेते हैं एक और गीत का ब्रेक, बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम, हमारे साथ बने रहें। अभी थोड़ी ही देर में हम ज़रूर इस बात का भी खुलासा करेंगे कि अगर आप संपर्क करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, ये कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं मी फ्लावर्स के साथ। बने रहें हमारे साथ,

0: की कहानी उड़ान की कहानी उड़ान की कहानी और एक ऐसी कहानी जहां पर हम एक बार फिर अपने आप को किस प्रकार से हम बिल्कुल अपने पैरों पर अपने बलबूते पर खड़े रह सकते हैं, इस पर बहुत सारी ऐसी बातें। और हमारे इस मंच पर कई सारी ऐसी महिलाएं आती हैं जो समाज में आज अपना एक स्तर कायम कर चुकी हैं। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती मीना सल्तू जी, जिन्होंने एग्रीकल्चर को अपना फर्म बनाया है। और इस क्षेत्र में वो ना केवल कार्य करती हैं, ना केवल आर्थिक रूप से वे बिल्कुल अपने आप को स्थिर महसूस करती हैं, साथ ही साथ वे लोगों को एनकरेज करती हैं किस प्रकार से अगर आप एग्रीकल्चर की थोड़ी भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस क्षेत्र में भी आप अपने आप को बहुत ही सशक्त बना सकते हैं। आइए बात करते हैं मीना जी से। मीना जी, जब आपने ये आइडिया सोचा तो पहले आपने क्या सोचा कि क्या ये हमारे समाज में जितनी भी महिलाएं, ना केवल महिलाएं, पुरुष भी हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने किस तरह से ये आइडिया को एग्जीक्यूट किया?
1: आप कहना चाहते कि महिलाओं को?
0: महिलाओं को बिल्कुल, हम पहले तो मैं महिलाओं की ही बात करूंगी कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर बैठे करना चाहती हैं पर नहीं कर पा रही हैं, या कई सारी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो मी फ्लावर्स उनको कैसे हेल्प कर सकता है?
1: देखिए, आप शुरू कीजिए थोड़े थोड़े में ही, होम गार्डनिंग से शुरू कीजिए।
0: जी,
1: जो भी आपको सरप्लस है, एक तो जब आप होम गार्डनिंग करेंगे तो आप उसी में कितना बजट आप कमा लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेट्स से आप खरीदेंगे 300 का वेजिटेबल्स एक दो दिन में, तो वो आप ही खुद वो
0: प्रोड्यूस
1: कर रहे हैं, तो ये एक तरह से इनकम हो गया।
0: जी,
1: और दूसरी तरफ जो सरप्लस आता है वो आप बेचिए, आप फैमिली में ही बेचिए, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर शर्म होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपका पहला फाइट है।

0: बिल्कुल.
1: और हिंदी में एक कहावत है ना, जिनको आई शर्म उनके फूटे करम. मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं,
2: आपको बेचना है, ये आपने प्रोड्यूस किया है और लोगों को जरूरत भी है ना.
1: बिल्कुल.
2: कौन नहीं चाहेगा कि उन लोगों को फ्रेश फ्रेश ये जो लालू मिल रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: फूल मिल रहा है, या फिर ये जो टमाटर मिल रहा है, कुतुमली मिल रहा है, कौन नहीं चाहेगा.
1: बिल्कुल.
2: तो आप वही से शुरू कीजिए, आप देखिएगा ये कितना चलता है, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है ना, फूड बेसिक नीड्स है
1: जी.
2: तो ये बहुत अच्छा रहेगा. मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी बहुत ही पॉजिटिवली. मेरे ख्याल से वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो जो मिस्टर हैं वो बहुत दिखाता है कैसे गार्डनिंग करते हैं. आप जानेंगे ही देखुया. मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, कभी बात नहीं किया है मैंने उनसे, लेकिन मैं बहुत देखती हूँ. आप एक चीज़ को आप नोटिस करेंगे, वो कहाँ पर वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेतों में एक टुकड़ा भी जमीन भी नहीं है वहाँ उसके घर के सामने, बेतों में वो कर रहा है, पॉटिंग्स कर रहा है, बड़े बड़े पॉट्स में डाल रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर ये जो लामोत हो रहा है, लाकेज्वायो हो रहा है, लीची हो रहा है. तो आप सीखिए, वही कीजिए, आप होता है, आप सिर्फ शुरू कीजिए.
1: तो यानी आपके घर आंगन में ही जो स्पाइसेस है, स्पाइसेस से शुरू करें, फिर धीरे धीरे करके हो सकता है कि कोई ऐसा सीजनल वेजिटेबल है उसके लिए. मतलब आपको बस एक पहल करनी है, शुरू करें, फिर आप देखिए किस तरह से आपका जो इंटरेस्ट है वो इसमें बढ़ता चला
2: जाएगा. आपके पास ये एक पीछे जो बगास डालते हैं ना
1: जी,
2: तो बगास में ही वो वर्म डाल दीजिए, वो हो जाएगा.
1: लालियान की तरह, लालियान की तरह, क्रीपर की तरह है,
2: क्रीपर की तरह है, वो चल जाएगा उसके उसमें चर के आपको इतना इतना सुंदर वर्म मिलेगा
1: जी. मैंने देखा है कई सारे घरों में, जैसे वो जहाँ पर मेटालिक लगा होता है वहाँ पर कई सारे लोग मोगोज यानी जो करेला है, करेले के पौधे बो देते हैं, या ऐसी ऐसी चीजें बो देते हैं जहाँ पर उनको अपने ही घर के आंगन में ताजी ताजी सब्जियां मिल जाती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो जैसे मैं जरूर जानना चाहूंगी मीना जी, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी सब्जियां बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, तो क्या इसके बारे में भी आप उनको एडुकेट करती हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देती हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए?
2: देखिए, ये जो क्वेश्चन है और इसका जो जवाब भी है, ये आपके एक्सपीरियंस में डिपेंड होगा.
1: बिल्कुल.
2: लॉस तो आपको करना ही होगा. कोई भी बिजनेस आप करें, ना सिर्फ एग्रीकल्चर, आप उस लॉस में ही उतना आप सीखेंगे. आपको किसी से सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लॉस से ही आपको पता चलता है आपको क्या, कौन से लेसन मिले हैं.
1: बिल्कुल. क्या तो गलत हुआ है,
2: क्या गलत हुआ है,
1: या कहां आपकी थोड़ी केयरलेसनेस रही है. बिल्कुल बिल्कुल.
2: हाँ, तो ये जो सीजन जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ के कंडीशन चेंज कर सकते हैं. जैसे कि जब हम ज्यादा पानी डालते हैं, तो अगर रेनफॉल हो रहा है तो आप एक वीक तक आप पानी नहीं डालिए, क्योंकि पेड़ को बहुत इतना पानी मिला है तो वो पेड़
1: अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा. बिल्कुल.
2: तो उस कंडीशन को आपको सीखना होगा. और जब लेट्स से ज़्यादा रेनफॉल आ रहे हैं ना, तो आप पानी नहीं डाल रहे हैं, अब क्या होता है, अब समर का सीजन आ रहा है, तो आप सोचेंगे कि पानी आ रहा है, गत हफ्ते बहुत पानी आ रहे थे तो इस हफ्ते मुझे नहीं देना है, तो ऐसा नहीं होता. आपको देखना चाहिए, वो पौधा बोलता है,
1: बात करता है,
2: वो बोलता है. जब मुझे ज्यादा पानी मिल रहा है तो वो बोलता है, वही कनेक्शन आपको जुड़ाना चाहिए.
1: मतलब वही आपको समझना है
2: कि कब ये पानी मांग रहा है और कब ये बोल रहा है कि ये हद से ज्यादा उसको पानी मिल रहा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
2: तो ये कनेक्शन आपको बिल्ड करना है अपने आप.
1: सही बात.
2: तो फॉर्मूला जो है तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. मैं तो ए टू जेड तक फॉर्मूला मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन जब आप जाते हैं उस समय में आप देखते हैं, रियलिटी में देखते हैं, तो एक कनेक्शन आपको बिल्ड करना होता है वो उन पेड़ पौधों से, तब आपको पता चलता है.
1: तो मीना जी, मैं एक छोटा सा अपना व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगी. अब मान लीजिए मैंने ही अपने घर आंगन में वो छोटे वाले पौधे बोए थे जहां पर फूल निकल रहे थे, क्योंकि लो मेंटेनेंस वाले जो फ्लावर्स होते हैं मैं पसंद करती हूँ, जहां पर हमें बहुत ज्यादा उनको ध्यान नहीं देना पड़ता. लेकिन लो मेंटेनेंस वाले फ्लावर्स हमने जो लगाए थे, जैसे फ्लेकोगाई बोलते हैं, पर हर बार देखा जाए तो उसमें कई बार बारिश के आ जाने से बहुत सारे कूपा आ जाते हैं, बहुत सारे स्नेल्स आ जाते हैं जो उन्हें

0: तरह से नष्ट कर देते हैं। अगर ऐसा कोई होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप फिर डिस्करेज हो जाते हो कि बहुत ज्यादा, जैसे हमें फिर लगता है कि छोड़ दो हमें बोना ही नहीं है, तो अगर ऐसा कोई हो जाए तो मान लीजिए अगर स्नेल्स ही आ जाते हैं तो एक आप सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए।
1: नॉर्मली बहुत सारे लोग जो हैं जो अभी अभी गार्डनिंग शुरू किए हैं वो नहीं यूज करना चाहते हैं पॉइजनिंग,
0: बिल्कुल
1: हाँ नहीं यूज करना चाहते हैं, लेकिन हालांकि वो जरूरी है क्योंकि स्नेल्स आएंगे तो सब बर्बाद ही कर देंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अगर वो पॉइजन एक तरफ से हाँ स्नेल्स को मार देते हैं लेकिन आने भी नहीं देते, जो नए जो स्नेल्स आने वाले होते हैं वो अच्छा। वो सूंघ करके दूर से ही जब सूंघ लेते हैं
0: तो वो
1: आप स्नेल्स आने का वेट मत कीजिएगा। अगर आप स्नेल्स को पॉइजनिंग के खिलाफ हैं उस स्नेल्स को आने का आप इंतजार मत कीजिएगा,
0: पहले
1: से ही वो पॉइजन आप डालें, वो दूर से ही वो उसका जो महक जो मिलता है वो नहीं आएंगे, नहीं ही आएंगे,
0: बिल्कुल
1: तो कैसे मरेंगे,
0: बिल्कुल
1: तो इसीलिए आप पहले से ही वो डाल दें तो वो नहीं आएंगे।
0: बिल्कुल, तो मीना जी जैसे ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं यानी दवाइयाँ जो है फर्टिलाइजर्स जो है कब डालना चाहिए कितना डालना चाहिए क्या इसकी भी सारी जानकारी आप देती हैं?
1: अभी हाल ही में मैंने देखा और ज़रूरी भी है कि लोग बहुत ही थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब जैसे पॉइजन्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जो हेल्थ में वो बहुत बुरा असर करेगा।
0: सही,
1: मैं नहीं कहूँगी नहीं क्योंकि ये झूठ होगा, लेकिन उसका एक डोसेज होता है, वो उस डोसेज का आपको पालन करनी है, एक डिसिप्लिन है। अगर आपको कहा जाते बहुत नहीं डालते हैं, एक टंकी आप जानते हैं ना 20 लीटर का जो टंकी है सिर्फ एक चम्मच,
0: अच्छा
1: वो काफी होता है एक चम्मच, और हर 60 दिन में, और उससे पहले अगर आपको हार्वेस्ट करनी होती है तो ये जो पेस्टिसाइड्स के तुरंत ही बाद नहीं हार्वेस्ट करनी है। अगर आपको मालूम है कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे को आपको हार्वेस्ट करनी है तो 10 डेज पहले ही आपको ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये सब जो है आपको
0: डाल देना चाहिए।
1: नो,
0: नहीं डालना है।
1: नहीं डालना है,
0: अच्छा
1: नहीं डालना है क्योंकि अब आपको उसको हार्वेस्ट करेंगे
0: जी।
1: और एक क्वेश्चन है, मैं उसका रिप्लाई देना चाहूँगी, लोग बोलते हैं कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पेस्टिसाइड डालते हैं ये पॉइजन है। नहीं, आप ही सोचिए, अगर 7 दिन के बाद उसका जो इफ़ेक्ट है वो बरकरार रहता तो 7 दिन के बाद हमें क्यों डालना पड़ता, क्यों डालना पड़ता? क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, उस पेस्टिसाइड का जो इफ़ेक्ट है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। डे वन से आपको हर 7 डेज में वो पेस्टिसाइड लगाना होता है ताकि वो हेल्दी रहे, कोई इंसेक्ट्स जो है वो आकर उसका नष्ट ना करे,
0: नुकसान
1: ना पहुंचाए।
0: बिल्कुल,
1: तो अगर उसका जो इफ़ेक्ट होता तो क्यों डालना पड़ता हमें हर 7 दिन में? ऐसा है कि डोजेज के अनुसार उसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसीलिए फिर से डालना पड़ता है। आप ही सोचिए, जब 7 दिन के बाद अगर एक इंसेक्ट या ये जो कीटाणु आते हैं वो ही नहीं मरते हैं, इतना छोटी सी जान होते हैं वो ही नहीं मरते हैं, तो हम क्या मरेंगे उससे?
0: बिल्कुल,
1: तो इसीलिए उसका डोजेज का पालन करना होता है।
0: जी बिल्कुल, और जैसे मीना जी ने कहा कि अगर वो कीटाणु नहीं मरते तो हम क्या मरेंगे, मतलब उसका असर 7 दिन के अंदर समाप्त हो जाता है, और ये डोजेज जारी रहना चाहिए तभी जाकर ये जो फूल पत्तियां हैं फूल पौधे हैं उसकी सुरक्षा हो सकती है। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जिसके बारे में मी फ्लावर्स अकेडमी जो है वो प्रोवाइड करता है ये सारी जानकारी। मैं जरूर पूछना चाहूंगी, मी फ्लावर एकेडमी में क्या ये भी सिखाया जाता है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कैसे बनाए जाते हैं या कैसे उसको प्रोवाइड किया जाता है, कैसे हम अपनी फूलों की सब्जियों की सुरक्षा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से कर सकते हैं?
1: हाँ, हम वो भी सिखाते हैं कि आप कैसे उसका जो सेफ्टी के लिए ताकि इंसेक्ट्स ना आए वो भी हम सिखाएंगे, आपको कैसे करनी है। थोड़े से नहीं, बहुत सारे पैसे लगेंगे बायो की उत्पादन करने में, लेकिन ये इट्स वर्थ इट।
0: बिल्कुल,
1: इट्स वर्थ इट।
0: बिल्कुल, जैसे इसको भी मतलब आप अपने आंगन में ही किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसको बिल्कुल, आज देखा जाए तो एक समय था जहां पर हमारे बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा ब्लैक कलर के

डस्टबिन्स पाए जाते हैं जहाँ हाँ. पर वे लोग जो घर का जो गीला कचरा होता है, यानी जो सब्जियों के जो छिलके होते हैं या बचा हुआ हाँ. खाना होता है या कोई भी ऐसा जो गीला पदार्थ है वो उसमें डाला जाता था, जिससे कि वो खाद बन के तैयार होता है. और इसी खाद को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे जो सब्जियां हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक बने और बिल्कुल पौष्टिक रूप से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं. उसका पौष्टिक हमारे शरीर को न्यूट्रिशन पहुंचाता है. बिल्कुल, एक और गीत का ब्रेक लेते हैं और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें इस वक्त तकनीक पर सहयोग मिल रहा है अवि का, साथ ही साथ उरुसा बनी हुई है और रत्नमाला मंगरू जी भी हमारा साथ दे रही हैं इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने के लिए, और मीना सल्तू जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं. चलिए लेते हैं गीत का ब्रेक, आते हैं थोड़ी ही देर में.

0: की कहानी, उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी, सशक्त महिला की कहानी। और आज हमारे साथ एक ऐसी सशक्त महिला जुड़ी हैं, श्रीमती मीना सल्तू जी, जो मी फ्लावर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर है। और आज मी फ्लावर्स एकेडमी बिल्कुल एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ, एक क्रिएटिव आइडिया के साथ आगे बढ़ रहा है। और वे चाहता है कि समाज में ये नॉलेज न केवल उन तक सीमित रहे, बल्कि समाज में जितने कोई एग्रीकल्चर के साथ जुड़ना चाहता है, जितने कोई लोग बस घर आंगन में ही एक छोटा सा पौधा या एक छोटी सी ज़मीन में कुछ बोकर अपने आप को आर्थिक रूप से बिल्कुल सिक्योर बनाना चाहते हैं, मी फ्लावर्स उनको वो सहयोग दे रहा है। और जैसे मीना जी ने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया हमें कि आपको देना होगा अपना अमूल्य समय, क्योंकि ये कोर्सेज जो वे दे रहे हैं वे बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। और जानकारी के लिए आपको अपना अमूल्य समय देना होगा मी फ्लावर्स। वैसे तो मैं पूछना चाहूँगी मीना जी, मी फ्लावर्स एकेडमी जो है वो कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, और अगर आपके साथ कोई संपर्क रखना चाहे, फेसबुक पेज पर से या टिकटॉक पेज पर से या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक अगर पहुंचना चाहे तो वो कैसे पहुंच सकते हैं?
1: पोस्ट भी कर दिया है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हमारे जो स्टाफ से हैं आप जुड़े रहिए। हमारा नंबर है 5837-2141, आप संपर्क कीजिएगा। मेरे जो स्टाफ हैं आपसे आपका नाम लेंगे और
0: रजिस्टर कर सकते हैं। और ये कितने दिनों का कोर्स होता है, मतलब अगर मान ले?
1: इट डिपेंड्स, अभी हम शुरू कर रहे हैं
0: जी,
1: हम ही नहीं जानते हैं कि कितने समय टाइम में वो लोग सीख जाएंगे।
0: ओके,
1: तो हम ये जैसे एक पायलट वाला जो स्टेप है,
0: बिल्कुल,
1: तो एंड प्रोजेक्ट पायलट,
0: हाँ,
1: तब हम देखेंगे कि ये कितना दिन में जा रहा है, फिर हम
0: कितने लोगों का इंटरेस्ट है इसमें। yes. और आपको कितने लोग मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आप बता सकते हैं कि ये एक क्रैश कोर्स रहेगा, एक महीने का या दो महीने का या तीन महीने का। और इसमें क्या, अगर मतलब मान लीजिए अगर कोई इंसान सिर्फ शौक के तौर पर वो सीखना चाहता है, या फिर मान लीजिए अगर उसको खुद का एक बिजनेस स्थापित करना है, तो क्या ये दोनों कोर्सेज में भी अंतर होगा?
1: नो, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। आप बिजनेस करना चाहेंगे या फिर अपने शौक के लिए आप ये जो फूल ये जो प्लांटना चाहते हैं, तो वो सेम फॉर्मूला सेम रहेगा,
0: फॉर्मूला सेम रहेगा, कुछ भी कर। तो क्या मतलब जो लोग अगर बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो क्या उनको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगी जिससे कि वो किस तरह से शुरू कर सके?
1: हाँ, अगर वो लोग आकर कहें कि मुझे ये करना है वो करना है, वैसे तो हम ऐसे दे ही रहे थे कि जिन्हें जो मेरे या हमारे यहाँ मी फ्लावर्स या फिर ऋषि प्लांट्स एंड सीडलिंग्स जहाँ जो लोग आते हैं वो लोग एडवाइस पूछते हैं कि कैसे क्या करना है, मुझे ये बेचना है वो बेचना है कैसे करना है, तो हम बताते हैं कि ये करना है वो करना है। कभी कभी वो लोग जो गलत से चॉइस करते हैं तो हम बताते हैं कि नहीं,
0: उनको डायरेक्ट करते, उनको दिशा बताते हैं कि किस तरह से करना चाहिए,
1: किस तरह से करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो वो लोग आकर बता सकते हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहती हूँ, कि मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ, तो हम उसी के हिसाब से उनको सिखा देंगे।
0: बिल्कुल, तो जी हाँ, हमारा जो अंतिम सवाल हमेशा हम हर महिला से पूछते हैं,

0: मीना जी, आपको भी हम दोबारा से पूछना चाहेंगे कि एक सशक्त महिला या वुमेन एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है?
1: आप में जो भी आपका एक पैशन है वो आप उनको आप बढ़ाइए। जो भी पैशन है आप में, आप कुछ भी करना चाहती हैं, एग्रीकल्चर करना चाहती हैं या फिर टेक्सटाइल करना चाहते हैं या फिर मेकअप करना चाहते हैं, तो सब में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिर्फ आप में वो पैशन होनी चाहिए,
0: बिल्कुल कर दिखाने का जो जज्बा है,
1: हाँ, वो होनी चाहिए। हाँ।
0: और जितने भी महिलाएं, जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको आप अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: मैसेज तो मैं यही दूंगी कि आप शुरू करें, जो भी है आप शुरू करें, थोड़े में ही आप शुरू करें, आप होम गार्डनिंग शुरू कीजिए, वहीं से आप बहुत कुछ सीखेंगे।
0: बिल्कुल, तो जी हाँ, चलिए हमारे टीम की ओर से, एमबीसी टीम की ओर से, रेडियो मनोरंजन की टीम की ओर से मी फ्लावर्स को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए, अपने नए क्रिएशंस के लिए। और बिल्कुल, रास्ता काफ़ी लंबा है और अभी अभी शुरुआत की है, और हर दिन नया दिन, हर दिन नया एक्सपीरियंस, और नए एक्सपीरियंस के साथ बिल्कुल गिरेंगे बहुत, उठने के मौके भी हमें बहुत मिलेंगे, पर उठने के लिए हिम्मत अपने अंदर बिल्कुल कायम रखनी है। और इसी के साथ मीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और हमारी टेक्निकल टीम पर अवी दीपशेख, माफ कीजिएगा, रत्नमाला जी और उरुसा हमारे साथ बने रहे, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और बिल्कुल हमारे जितने भी श्रोता लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को सुना, धन्यवाद कहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।
2: उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी।

0: नमस्कार। प्रवीण जगन्नाथ आज सुबह एक बार फिर सीसीआईडी पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री से मिसे मुस्तास कहे जाने वाले टेलीफोन टैपिंग और ऑडियो लीक घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की जानी है। 17 सितंबर को समन मिलने पर प्रवीण जगन्नाथ ने जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब न देना ही बेहतर समझा था, क्योंकि उनके अनुसार पुलिस ने उनके उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था जिसमें उनके खिलाफ संदेह के आधारों को साझा करने की मांग की गई थी। प्रवीण जगन्नाथ का ये तर्क था कि पुलिस ने उन तथ्यों और परिस्थितियों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है जिनके आधार पर वे अपने संदेह को पुख्ता कर रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे माइक ब्रास पर आज सुबह 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये सजा इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन की मैजिस्ट्रेट चित्रा सुबाघा पीले द्वारा सुनाई गई। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में उनकी संपत्ति और कई ऐसे सामानों की जांच की थी जिनके अवैध गतिविधियों से आने का संदेह था, जबकि उन्हें रेनियन टापू में ड्रग्स तस्करी के लिए दोषी ठहराया जा चुका था। हाउस होल्ड गार्डनिंग स्कीम में नए बदलाव किए गए हैं। अब इस सब्सिडी का उद्देश्य केवल घर के पीछे में मिनी ग्रीन हाउसेस लगाना है। सरकार ने नई हाउस होल्ड गार्डनिंग स्कीम को वित्त पोषित करने के लिए 2 मिलियन रुपए का बजट रखा है जो अक्टूबर से उपलब्ध होगी। और विदेश में थाईलैंड में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है जिसमें अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और अकेले बैंकॉक में 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on MBC Play.
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: मंगलवार 29 सितंबर, आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस समय रेडियो मॉरिशस पर हो रहा है, साथ ही इसे आप लाइव देख पा रहे हैं एमबीसी के चैनल 3 पर। साथ ही ये भी याद दिला दें कि इस प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर। साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही सपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। और इसका जो सीधा प्रसारण है ये हमारे MBC के वेबसाइट पर भी हो रहा है, MBC प्ले ऐप पर भी हो रहा है। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करें तो ये हर वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ दिनों पहले इस दिवस को मनाया गया। और शांति की बात करें तो शांति मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में शामिल है। शांति का अर्थ केवल ये नहीं है कि युद्ध न हो या हिंसा न हो, शांति अपने आप में इससे भी बहुत बड़ा जो है पहलू रखती है हमारे जीवन में। सबसे पहले तो मन की शांति की बात करें तो उसकी आजकल सभी को बहुत आवश्यकता है। और आज के विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच आचार्य मनोज कुमार गौतम जी जुड़ चुके हैं। ऐसे तो आचार्य जी एक एस्ट्रोलॉजर है, साथ ही एनजीओ का हिस्सा रहे हैं, सामाजिक कार्यों में जो है अपना योगदान देते हैं, पत्रकारिता जो है हम कहें न्यूज़पेपर के साथ भी जो है इनका जुड़ाव रहा है, और समाज के सभी वर्गों के साथ इन्होंने कार्य किया है और बहुत ही करीब से जो है सभी समाज के पहलुओं को देखा है इन्होंने। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं आज के इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद, थैंक यू।
3: और आचार्य जी, अगर हम शांति दिवस की बात करें तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, इसको मनाने का जो है शुरुआत कैसे हुई थी?
4: देखिए, अहिंसा परमो धर्म भारत में पहले ही एक ऋग्वेद का मंत्र है और ये विश्व शांति पूरी दुनिया में शांति, अहिंसा, भाईचारे, सद्भाव और मानवता का संदेश देने के लिए मनाया जाता है।
3: बिल्कुल।
4: इसका जो मुख्य उद्देश्य दुनिया में युद्ध, हिंसा और संघर्ष को रोकना, सभी देशों और लोगों के बीच आपसी सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के लिए ये इस रूप में मनाया जाता है।
3: बिल्कुल।
4: और इसकी जो शुरुआत है वो 21 सितंबर को प्रारंभ हुई थी, जिसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी कहते हैं।
3: बिल्कुल।
4: और हिंदी में तो है ही अपना
3: अंतर्राष्ट्रीय

0: शांति दिवस,
1: अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है,
0: यानी कि पहली बार इसे 21 सितंबर 1982 को मनाया गया था। उसके बाद हर वर्ष जो है इसे मनाया जाता है और शांति दिवस को लेकर बहुत सारी गतिविधियों का जो है आयोजन किया जाता है। और विश्व शांति दिवस मनाने की बात करें तो इसके पीछे अपना एक इतिहास भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन यदि किसी दिन को मनाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरा उद्देश्य ज़रूर होता है। तो यदि हम विश्व शांति दिवस की बात करें तो ये अपने आप में सभी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूनाइटेड नेशंस ने विश्व शांति दिवस मनाने का निर्णय क्यों लिया था आचार्य जी?
1: देखिए, यूनाइटेड नेशन ने विभिन्न देशों की सरकारें हों चाहे सामूहिक संस्थाएं हों, तो शांति के लिए इसका संगठन का निर्माण किया था। और इसका जो यूनाइटेड नेशन ने विश्व शांति दिवस की स्थापना जो की थी वो 1981 में की थी
0: जी।
1: और इसकी शुरुआत के जो पीछे शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना था
0: जी,
1: इसलिए इसकी शुरुआत हुई।
0: बिल्कुल। और अभी के समय में अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो विश्व स्तर पर कितनी जगहों पर युद्ध लड़े जा रहे हैं, आपसी मतभेद है, एक देश दूसरे देश के खिलाफ है, और अभी के समय में इस शांति की आवश्यकता कुछ ज़्यादा ही है। इस पर आपके क्या विचार है?
1: देखिए, सबसे पहले विश्व शांति की अगर हम बात करें तो जापान की ओर से संयुक्त राष्ट्र को एक घंटी भेंट की गई थी, और इसमें विभिन्न अलग अलग देशों की एकता और शांति का प्रतीक बनी शांति की घंटी
0: जी।
1: और इस समय जो एक ऐतिहासिक निर्णय संयुक्त राष्ट्र ने लिया है तो ये 30 नवंबर 1981 को लिया गया था
0: जी।
1: और इसके पीछे इसको पारित करने का उद्देश्य यह था, अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति दिवस की स्थापना, कि राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन आरंभ में ही कह दिया था कि भाई ये जो विश्व शांति स्तर का है तो ये शांति के आदर्श को बढ़ावा देना था।
0: बिल्कुल।
1: तो ये इसके पीछे ये था। और पहली बार ये कब मनाया गया, तो पहली बार ये सितंबर 1982 में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया
0: जी।
1: और उस समय इसकी तारीख के तीसरे मंगलवार को रखी गई थी
0: जी।
1: तो इसलिए हम इसको मनाते हैं। और 7 सितंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित किया सर्वसम्मति से कि इसके बाद हर वर्ष 21 सितंबर को स्थायी रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही इसे 24 घंटे के वैश्विक युद्ध विराम और अहिंसा के दिन के रूप में भी घोषित किया गया। तो इस समय आवश्यकता है जो हमने सोचकर स्थापना की थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने, तो हमें एक बार पुनः इसकी पहल करनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और चलिए, जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर अगर आपके मन में कोई विचार है या आप अपना अनुभव बांटना चाहते हैं या अपने विचार देना चाहते हैं तो 402-8085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने विश्व शांति दिवस मनाने का जो निर्णय लिया था उसके पीछे तो उनका उद्देश्य यही था कि विश्व में चारों ओर शांति हो। और अभी के समय में अगर हम देखें आचार्य जी, शांति की अगर हम बात करते हैं या जिस भी बदलाव को हम अपने जीवन में चाहते हैं, कहते हैं कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हम से होती है, तो पारिवारिक रूप से शांति का क्या महत्व है और क्यों आवश्यक है?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अहिंसा को बढ़ावा देना, लोग हों या विभिन्न देशों के लोग हों, ये हिंसा के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और समझौते का को लेकर संवाद स्थापित होना चाहिए। और ऐसा ही हम अपने परिवार में भी, कि अगर कोई गलत फहमी हो रही है तो क्यों ना एक बातचीत के तरीके से उस चीज़ को हल किया जा सकता है। तो चाहे देश हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश हो, परिवार की आपने जहाँ तक बात की है तो कई बार परिवारों में भी जो झगड़े होते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं, तो हमें उसको नहीं होने देना चाहिए। तो इस पर हम प्रयास करेंगे तो शांति अहिंसा जरूर आएगी।
0: बिल्कुल। आपने कहा कि बातचीत से जो है बहुत सारी चीज़ों का हल मिलता है, लेकिन अभी के समय में बात करें और जहाँ पर शांति को हम अहमियत रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आजकल हमारे परिवारों में जो है एक दूसरे से लोगों की आपसी बातचीत ही कम हो गई है, एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया है, और कम्युनिकेशन गैप के चलते मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गई है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। जब सामने वाला अपने विचारों को रखने का प्रयास करता है तो जो है उसे उस तरह का उत्तर नहीं मिलता है तो वो बात करना ही बंद कर देता है, सवाल जवाब करना ही बंद कर देता है, और इसके चलते जो है दूरियां दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और जब परिवार में दूरियां होती है तो वही जो है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में झलकता है और

0: जब वो समाज में जाता है तो ये जो है उसके मन में बैठ जाता है कि मेरी बात को कोई नहीं सुन रहा है, तो इस मानसिकता से हम किस तरह से लड़ सकते हैं?
1: देखिए, आजकल जो हमारा रहन सहन है और खान पीन है
0: जी,
1: तो खान पीन भी बहुत मायने रखता है
0: जी।
1: तो जो खाने की मतलब आप एक हमारे यहाँ भारत में कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अब महिलाएं या पुरुष किचन में काम कर रहे हैं और मन में दौड़ रहा है उसने मेरे साथ ऐसा किया मुझे ऐसा करना है, तो वो खाना जब आप खिलाओगे या खाओगे तो आपके विचार खराब होंगे
0: जी।
1: और जहाँ विचार खराब होंगे तो झगड़ा होगा। और आज के टाइम में शांति किसी को है नहीं, पीस कोई रखना नहीं चाहता, झेलना कोई चाहता नहीं, तो ये मुख्य कारण होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने खान पान को सुधार करना चाहिए
0: जी।
1: जब आप किचन में रसोई में खाना बना रहे हो तो कोशिश करें कि उस समय गायत्री मंत्र जपें,
0: यानी कि अच्छे विचार हो मन में, शुद्ध विचार हो।
1: बिल्कुल। एक मुझे घटना याद आती है, शायद मैंने पहले भी शायद आपको इसका चर्चा की थी
0: जी।
1: कि हुआ क्या कि एक किसी का बेटा जेल में बंद था
0: जी।
1: अब उसने एक सपने में क्या देखा कि उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, मार दिया। अब वो सुबह उठ कर रोने लगा क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो उसके पिताजी मिलने के लिए आए, भाई क्या बात है, क्यों परेशान है? उसने कहा कि मैंने सपने में अपनी माँ को जो है मार दिया और मैं सोच भी नहीं सकता। तो उसके पिताजी ने जेलर से बात की कि ये बताओ इसको खाना किसने खिलाया था
0: जी।
1: तो पता लगा कि जो सजा याफ्ता था अपनी माँ के मर्डर में
0: जी,
1: उसके हाथ का बना हुआ खाना उसने खाया और उसके मन में ऐसे विचार आए। तो सबसे पहले हमें अपने खान पीन को सुधारना चाहिए,
0: यानी कि अपने विचारों को
1: सुधारना चाहिए,
0: यानी कि जिस भी कार्य को हम कर रहे हैं, फिर चाहे वो खाना बनाना हो या कोई भी क्यों ना कार्य हो, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अच्छे विचारों को लेकर जिस भी कार्य को हम करते हैं उस कार्य में एक तो हमें सफलता तो मिलती ही है, साथ ही उसके परिणाम भी अपने आप में अच्छे होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अभी के समय की बात करें तो आजकल जो है हमारे मन में काफी सारे विचार होते हैं, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है तुरंत एक चुटकी पर जो है हमें सारे न्यूज मिल जाते हैं, और ज्यादातर हम समाचारों की बात करें जो हमें सोशल मीडिया के जरिए मिलते हैं वो ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। कोई यहाँ लड़ रहा है, कोई वहाँ बुराई है, यहाँ ड्रग्स है, वो है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे मानसिकता पर सीधा प्रभाव डालती है।
1: बिल्कुल,
0: तो अपने आप को थोड़ा सा जो है अपने चित्त को शांत करना भी बहुत आवश्यक होता है,
1: जरूरी है।
0: और शांति की अपने आप में सबसे पहली शुरुआत तो यही होती है ना कि शांति अगर मेरे भीतर नहीं है तो उस शांति के बारे में मैं बात कैसे कर सकती हूँ, तो बहुत ज़रूरी होता है। चलिए ऐसा करते हैं कि एक गीत के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं, फिर आज की इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: चलिए आप सभी को याद दिला दें, आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले इस दिन को मनाया गया और शांति का हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अपना अलग स्थान होता है। हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि उसके लिए शांति का क्या महत्व है या वो शांति को किस तरह से देखता है। शांति का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि युद्ध ना हो या आपसी मतभेद ना हो, इसका संबंध व्यक्ति के मन की शांति से भी है। इस पर क्या आपके विचार है आचार्य जी?
1: देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दो तरह की शांति होती है, एक तो बाहरी और एक आंतरिक।
0: जी।
1: अगर हम इसे परिवार में भी लेकर चलें
0: जी,
1: तो हमें टाइम निकाल के जो बातचीत का गैप हो गया है उसको दूर करके हम बातचीत से हल निकालें।
0: जी।
1: ऐसे ही अलग अलग देशों को भी करना पड़ेगा कि समय निकाल के, और जो ये इनके मन में आ गया ना, जैसे कि अलग अलग कंट्री है, मैं से बड़ा हूँ, ये मुझे करना है और बिना युद्ध के शांति नहीं होगी, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो हमें जो है सबसे पहले, जो हमारे बीच में हिंसा समय चल रही है, तो हमें सुरक्षा के साथ में सम्मान कैसे मिले, और एक दूसरे से हमें गहरा संबंध बनाना पड़ेगा। एक दूसरे से गहरा संबंध होगा तो तब जाके पीसफुल शांति आएगी। और आप ये कोशिश नहीं कर सकते कि अन्यायपूर्ण तरीके से प्रेशराइज करें किसी भी कंट्री को, या परिवार में किसी भी व्यक्ति को आप प्रेशराइज कर रहे हैं। तो अगर आप प्रेशराइज करेंगे और उसकी भावना को नहीं समझेंगे, या आपके अंदर ज़्यादा लालच होगा कि भाई जैसे मुझे अपने देश की क्षेत्र को बढ़ाना है, मैं इस पर जाए युद्ध करके अटैक करके कब्जा कर लूंगा, तो ऐसे तो शांति नहीं आएगी। तो शांति का जो सबसे वास्तविक जो इसका है, स्थायी शांति के लिए हमें आंतरिक संतुलन के साथ साथ हमें जो है सामाजिक न्याय, सुरक्षा, सम्मान, अवसर और क्या बोलते हैं आपका मानवीय गरिमा भी लानी आवश्यक है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। और वहीं कहीं ना कहीं नियमों का पालन करना भी अपने आप में एक शांति का प्रतीक है। जब हम दो देशों के आपसी शांति की बात करते हैं, जैसे आपने कहा, लड़ झगड़ कर तो हम एक दूसरे पर अपना हक नहीं जता सकते, है ना। यदि कुछ ठीक नहीं है तो बातचीत करके जो है हर जो है समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। और वहीं पर नियम में रह के, अपने दायरे में रहकर हर एक कार्य को करना भी बहुत आवश्यक होता है। आपने सुरक्षा की बात की, शांति कहीं ना कहीं अपने आप में सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे आपसी सुरक्षा को महसूस करते, जैसे कि माता पिता के साथ है तो एक

0: बच्चा अपने आप में सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके माता पिता उसका ख्याल रखेंगे, उसको वो सारी चीज़ें देंगे जो उसका हक है, और वहीं पर उसको प्रेम भी देंगे। तो वहाँ पर शांति अपने आप एक रिश्ते में आ जाती है, वहीं पर सम्मान भी अपने आप में हर एक रिश्ते में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जहाँ पर सम्मान नहीं है वहाँ पर एक व्यक्ति ठहरता नहीं है। और दो देशों की बात करें तो एक दूसरे की संस्कृति को समझना, एक दूसरे की सभ्यता को समझना, एक दूसरे की कल्चर का सम्मान करना, ये भी अपने आप में शांति का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक होता है। और वहीं पर आंतरिक शांति का मतलब तो अपने आप में कुछ शब्दों में हम समझा नहीं सकते हैं। इस पर तो हमारे महर्षियों ने कितना जो है अध्ययन किया है, अपने आप को उस शांति के स्तर पर लाया है, तब जाकर वो जो है उस ज्ञान को, उस ऊर्जा को बांट पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ और जोड़ना चाहेंगे इस पर आप।
1: देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हमें जो है परिवार में या देश में प्रेम और सम्मान, और तभी हमारा एक विश्वास भी आगे बढ़ेगा। तो परिवार में क्या है कि जो कई विवाद इसलिए भी बढ़ते हैं ना, लोग या तो सुनना नहीं चाहते
0: जी।
1: या पूरी अपनी बात को बताना नहीं चाहते।
0: बिल्कुल।
1: तो यदि हम बजाय गुस्से हुए, क्रोध करें, हम पहले एक बात करना स्टार्ट करें, भाई वो चाहते क्या है, तो फिर हमारा एक शांति का रास्ता इसमें ऐसे निकल सकता है। और यही नीति देशों को अलग अलग भी अपनानी चाहिए अगर वो शांति चाहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: देखिए, शांति इसलिए भी जरूरी है कि आपको एक दूसरे के विचार और भावनाओं को समझना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझते हैं तो झगड़ा, अटैक, ये सब कुछ होगा
0: जी,
1: हिंसा होगी, चाहे वो घर में हो और चाहे दोनों कंट्रियों के बीच में हो।
0: कहते हैं ना कि जहाँ पर संवाद होता है वहाँ पर गलत फहमी के लिए कोई जगह नहीं होती
1: जी,
0: है। तो अपने आप में जिस भी प्रकार की शांति की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत संवाद से होती है, आपसी बातचीत से होती है, आपसी समझ से होती है। 4028085 है नंबर हमारा। यदि आप भी आज के इस विषय पर अपने विचार बांटना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आचार्य जी, समाज में जाति की बात करें, धर्म की बात करें, भाषाओं की बात करें, विभिन्न संस्कृति की बात करें, सभी वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, सभी संस्कृतियाँ, हम मॉरिशस की बात करें, भारत की बात करें, अन्य बड़े बड़े देशों की बात करें, तो बहुजातीय होते हैं देश, जहाँ पर अलग अलग संस्कृति का सम्मान करते हुए हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये एकता को दर्शाता है, ये प्रेम को दर्शाता है। और किस तरह से एक साथ रहना हमें शांति की ओर ले जाता है?
1: देखिए, हमारे यहाँ एक उपनिषद में आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो जब हम ये कल्पना करेंगे कि सभी सुखी हों तो तब कहीं ना कहीं जाकर शांति का हल निकलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि नहीं जी, ये तो मैं ही एकाधिकार करके वो कर रहे हैं, और प्रॉपर चैनल से आप परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो युद्ध की स्थिति बनती बनती है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे उसमें बड़े हों या अलग अलग कंट्री हो, अलग अलग देश हो, तो हम जब प्रयास करेंगे तो ही शांति आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक के अधिकारों का सम्मान भी होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं, फिर वो मनमुटाव भी होते हैं, और रीजन क्या है कि आपका गैप बढ़ जाता है, आप अपनी बात रख नहीं पा रहे या सुनना नहीं चाह रहे। दो चीजें हैं, एक आदमी अपनी बात को कहना चाह रहा लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे, और जब उसकी बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर युद्ध की स्थिति बनेगी, तो शांति कहाँ रहेगी।
0: और ये चीज परिवार में भी लागू होती है। जब अभी के समय की अगर हम बात करें, माता पिता ने जो समय अपने बचपन में देखा, और अभी के बच्चे जिस दौर से गुजर रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है, एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप। तो माता पिता के सामने जब अभी का बच्चा अपने विचारों को रखता है तो माता पिता शायद उसे समझ नहीं पाते हैं या अपने समय से तुलना करते हैं। वही बच्चा जब माता पिता की बातों को सुनता है तो वो सोचता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपसी मतभेद, विचारों का मतभेद आरंभ होता है। और वहीं पर अगर एक दूसरे के साथ बैठ कर एक दूसरे की बातों को सुना जाए, समझा जाए, तो बहुत सारे जो गलत फहमियाँ हैं अपने आप दूर होती हैं। वहीं पर आपने अधिकारों की बात की, तो ऑब्वियसली अधिकार हर एक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, जो बेसिक राइट कहे, कॉमन राइट कहे, और उनको छीनना अपने आप में जो है अशांति का एक प्रतीक होता है। और आज शांति पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि शांति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एकता के साथ हम एक जैसे लगे, अलग अलग होते हुए भी हम एकता और शांति और सम्मान से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं।
1: देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, आपको सामने वाले की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे आपने कहा जनरेशन गैप आ गया, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए
0: जी।

0: देखिए अगर मैं अपना देखूं तो मेरे देखते देखते ही काफी गैप आ गया है। पहले का जो जीवन था, जीने का तरीका अलग था
1: जी।
0: और आज परिस्थिति चेंज हो गई है, वातावरण चेंज हो गया है। तो आज की जो जनरेशन है उनके हाथ में आज लैपटॉप है, मोबाइल है, तो हमें उसी तरह से उनके साथ में मिलके इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने समय से तुलना करके और उस बच्चा का बिहेव कर रहे हो तो आप नहीं सही से चला पाओगे, तो निभा जब ही पाएंगे कि आज की जो देश काल परिस्थिति है उसके अनुसार अपने विचार सामने वाले के साथ चेंज करने पड़ेंगे, तो इसलिए जरूरी है।
1: बिल्कुल, चलिए यहाँ पर विचारों की बात करें तो आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। एक और गीत के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक

0: और आज की चर्चा इस कार्यक्रम से आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सभी के साथ के लिए धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और ये नहीं है कि सिर्फ हर वर्ष 21 सितंबर को ही हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का पालन करें। शांति तो हमारे जीवन से हर रोज़ की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। अगर मन शांत नहीं होगा तो मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे, और अच्छे विचार नहीं आएंगे तो हम अच्छे कर्म कैसे कर पाएंगे। मन शांत नहीं होगा तो हम जीवन में अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे, और अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे तो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। मन शांत नहीं होगा, हमारा आसपास का वातावरण शांत नहीं होगा तो हम जीवन में प्रगति कैसे कर पाएंगे। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले तो जी नहीं सकते हैं, हमें जीने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, परिवार की आवश्यकता पड़ती है, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, समाज में जितने भी लोग हैं उन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं शांति की बात करते हैं तो ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। आचार्य जी, हमारा अगला प्रश्न आपके लिए होगा कि एक राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए शांति और स्थिरता क्यों ज़रूरी होती है?
1: देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बड़ी बड़ी इमारतें, उद्योग, आप इसको जो शांति नहीं कह सकते जी। जब तक आप अपने देश के लिए, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा हो जी। आपको अगर आप झगड़ा करते हैं और पीसफुल नहीं रहते हैं तो आपका जो संसाधन है, बड़े संसाधन है, जैसे आपकी आर्थिक इनकम आती है, वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी
0: जी।
1: जब आर्थिक इनकम आनी स्टार्ट होगी तो क्या होगा? तो आपस में झगड़ा होगा
0: जी।
1: अगर नागरिकों में असुरक्षा की भावना आ जाए तो उसको कैसे आप पीस करेंगे
0: जी? बिल्कुल।
1: उसकी असुरक्षा के लिए जरूरी है कि आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज हों, विद्यालय हों
0: जी,
1: और सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए नुकसान की भरपाई करने के लिए आपको विकास बहुत जरूरी है। और विकास जब ही हम कर पाएंगे, अगर हम झगड़ा करेंगे तो हमारे संसाधन का जो इतना पैसा है वो सारा खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो इसमें हम ये देखें कि उस नुकसान की भरपाई हमें कैसे करनी है, चाहे वो परिवार हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो। तो मेरे समझ से जो है, हमें आपसी जो शांति लाने का जो प्रयास करना चाहिए वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसी न किसी।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा कि युद्ध और हिंसा से जनमाल का कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और रिसोर्सेस का बढ़ना जो है बंद हो जाता है, और कहीं ना कहीं रिसोर्सेस नहीं बढ़ेंगे एक देश में, एक समाज में यदि प्रगति नहीं होगी तो वहाँ के नागरिक कैसे प्रगति कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत अहम पहलू होता है, जहाँ पर हमें जो है एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, एक दूसरे के जो है डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, हमारे समाज के विकास के बारे में सोचना चाहिए। और विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास सिर्फ देश के विकास तक सीमित नहीं है, ये समाज भी इसमें जुड़ जाता है, परिवार भी जुड़ जाता है। क्योंकि जब देश प्रगति करता है, जब समाज प्रगति करता है, तो उस देश का हर नागरिक अपने आप में प्रगति करता है। और प्रगति कहीं ना कहीं शांति से जुड़ी हुई है, प्रगति कहीं ना कहीं हमारी सफलता से जुड़ी हुई है, तो ये सभी हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। और आचार्य जी, अगर हम विश्व स्तर पर बात करें शांति की, तो युद्ध है, हिंसा है, संघर्ष है, इसको कम करने के लिए शांति वार्ता और डिप्लोमेसी की क्या भूमिका है?
1: देखिए, हमें डिप्लोमेसी का अर्थ यह है कि हमें अलग अलग कंट्री के जो देश हैं, हमें जो है एक कूटनीतिक संबंधों की पहल करनी पड़ेगी
0: जी।
1: वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, अगर आप शांति चाहते हैं। और ये डिप्लोमेसी से आपका, चाहे वो बातचीत का रास्ता हो, चाहे वो कूटनीति का हो, चाहे वो शांतिपूर्ण ढंग से, जब ही निकलेगा, जब हम प्रयास करेंगे तभी इसका समाधान निकलेगा। ऐसे समाधान नहीं निकलने वाला है। आज पूरी दुनिया में जो है ना, जो देश हैं उनके बीच में सीमा विवाद, संसाधनों को लेकर मतभेद, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, और दूसरा राजनीतिक तनाव, तो ऐतिहासिक संघर्ष हो सकते हैं। अगर इन समस्याओं को

0: बल सैन्य बल से हमेशा संभव नहीं है शांत करना। और आप सोचते हो कि अब ब्लड के जरिए जो है किसी को कंट्रोल कर लोगे, नहीं, तो वहां पर भी आपको प्रयास करना पड़ेगा युद्ध विराम को लेके, तभी आप अपने नागरिकों की सुरक्षा कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शांति वार्ता अपने आप में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पहलू है हमारे जीवन में, क्योंकि बातचीत से ही जो है सभी समस्याओं का समाधान हमें मिलता है। और जब हम शांति वार्ता की बात करते थे, हर एक व्यक्ति में धैर्य होना भी बहुत आवश्यक होता है। अभी के समय में हम में धैर्य की कमी है, पेशेंस की कमी है। जिस भी चीज़ को हम चाहते हैं या हमारे मन में कोई भी इच्छा जागरूक होती है तो ऐसा लगता है कि वो कब पूरी होगी, या जो चीज़ हम चाहते हैं वो ऐसा लगता है कि वो हमें अभी के अभी मिल जाए। और जब अभी के अभी एक चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम विचलित हो जाते हैं, और उसका जो है प्रभाव हमारे निर्णय पर पड़ता है, हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं शांति वार्ता अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है सभी के लिए। और अब हम बच्चों और युवाओं की बात करें तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, हमारे आने वाले कल का भविष्य है, एक देश का भविष्य होती है हमारे युवाएं। और युवाएं जो है आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जुड़ गई है, चाहते ना चाहते हुए इंटरनेट के माध्यम से, जहाँ पर अच्छाई का सामना ना तो वो करते ही है, साथ में बुराई से भी वो बचे नहीं हैं। कभी गलत राह पर चले जाते हैं, कभी भटक जाते हैं। और बच्चों को अगर हम शांति के बारे में पढ़ाना चाहे या बताना चाहे तो कौन से जो रास्ते हैं हमें अपनाने चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले ये है, जो भी राष्ट्र के बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। आपने स्टार्टिंग से उनको किस प्रकार का अनुशासन और संस्कार
1: जी
0: कैसे आपने दिए हैं वो इस पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके शुद्ध विचार हैं तो फिर वो आपके मूल्य को भी सीखते हैं, और आगे चल के वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, तो उसको प्रभावित करते ही करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही प्रेम है, करुणा है, अहिंसा है, इन सब का महत्व बचपन से ही सिखा देना, स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर आप अपने समाज, अपने परिवार या राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। तो सबसे बड़ी जो नींव है वो हमारे बच्चे हैं
1: जी।
0: तो आपको आज ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अपने बच्चों को आप किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं। और फिर जैसे मैंने पहले बताया था कि खान पीन बहुत मायने रखता है
1: जी।
0: तो अपने बच्चों को खान पीन शुद्ध खिलाओ। आजकल आप देखते हैं कि फास्ट फूड बहुत आ रहा है, अब वो फास्ट फूड कहाँ आपके अच्छे विचारों को बनने देगा?
1: मतलब कि वो आपको वो पोषण नहीं देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल
1: हाँ।
0: तो सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है वो बच्चे हैं। हमने बच्चों क्या खान पीन, किस तरह के संस्कार, अगर वो बच्चा संस्कारपूर्ण निकलेगा तो फिर जानता है, चाहे वो देश हो चाहे दूसरा देश हो, कि आपस में संबंध कैसे बना के डेवलप करने हैं और कैसे शांति स्थापित करनी है। तो हमें अपने बच्चों को, युवाओं को समझना जरूरी है कि वो अभी क्या चाह रहा है, क्या उसके करने के मन में है। तो आपको उसको पॉजिटिव विचार देने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा घर से बाहर जा रहा है, वो किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है। देखिए, एक हम जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो एक हमारे प्रोफेसर थे, बोले अगर किसी का करेक्टर पता करना हो तो आप उसको मत देखिए, वो कैसे लोगों के बीच में उठता बैठता है तो उसका करेक्टर सामने आ जाएगा
1: जी। इसलिए तो अच्छी संगति को बहुत ही महत्व दिया जाता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कि अच्छी संगति में हमें रहना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, मतलब कि ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जहाँ पर पॉजिटिव विचारों का आदान प्रदान हो रहा हो, लोग देश के बारे में बात कर रहे हो, लोग प्रगति के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पर लोग एक दूसरे के बारे में ना बात करते हुए ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो जो हमें प्रगति की ओर ले जा रहा है, जो हमें सफलता की ओर ले जा रहा है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और वही ना, वही अगर हम अपने युवाओं की बात करते हैं, अपने बच्चों की बात करते हैं, तो शिक्षा, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। कहते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान जरूरी नहीं होता है, शिक्षा अपने आप में जो है सभी पहलुओं को दर्शाता है।
0: देखिए, हमारे यहाँ आया विद्या ददाति विनयम
1: जी,
0: पहले तो विद्या से हमें विनय मिलता है
1: जी।
0: तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, चाहे उसमें आपके परिवार या देश हो। तो जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे, विनयपूर्ण व्यवहार करेंगे, तो फिर निश्चित तौर से वो राष्ट्र या वो परिवार या वो फैमिली अवश्य तरक्की करते हैं। और यही तरक्की करने का एक माध्यम है, रास्ता है, चाहे वो आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, और आर्थिक रूप से हैं तो आपको अपने परिवार को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही बात राष्ट्र पर लागू होती है।
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शिक्षा की बात करें तो शिक्षा हमारी जो प्रणाली है उसमें शांति के महत्व पर भी थोड़ा सा विचार करना बहुत आवश्यक होता है।

0: क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो चीजें सीखते हैं उसी को तो अपने जीवन में लागू करते हैं।
1: देखिए आज हमारे यहाँ ना दो तरह की पढ़ाई होती है, विद्याएं होती है, तो जो आजकल एजुकेशन दी जा रही है ना वो उसको बोलते हैं संस्कृत में अर्थकारी विद्या, कि जिस सीधा मतलब हमने मान लो इंजीनियर बने चाहे टेक्निकल बने डॉक्टर बने तो डिग्री लेते हमें पैसा आना स्टार्ट हो गया
0: जी।
1: लेकिन कहीं हम जो संस्कार देना भूल जाते हैं, तो अब सभी लोग क्या है कि वो जा रहे हैं आर्थिक मजबूत करने के लिए, लेकिन जो हमारे यहाँ एक संस्कार होने चाहिए शांति कैसे मिलेगी वो चीज की शिक्षा हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं।
0: अभी के शिक्षा प्रणाली की बात करें तो कहीं ना कहीं इस पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। हॉलिस्टिक लर्निंग की बात करें तो बच्चों को अपने आप पर, अपने मन पर काबू रखना, अपने विचारों पर काबू रखना, अपने आपसी, जैसे कि आपने कहा कि ना कि एक बच्चे में प्रेम की भावना होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए, इस पर भी विचार किए जाते हैं और इस पर भी काफी कार्य हो रहा है। क्योंकि समय के साथ, समय की जिस तरह से मतलब कि समाज की जिस तरह से डिमांड होती है, एजुकेशन प्रणाली में भी उस तरह के जो है बदलाव आते हैं और समय के साथ काफी पॉजिटिव बदलाव हम देख भी रहे हैं। और अभी अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आज के युग में सोशल मीडिया में हमें नफरत दिखाई देती है, अफवाह दिखाई देती है, मिस इन्फॉर्मेशन दिखाई देता है और ये सब जो है कहीं ना कहीं विश्व शांति के रूप में एक बाधा के रूप में कार्य करता है। तो किस तरह से इन अफवाहों से हमें बचना चाहिए?
1: देखिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तकनीक का जो है ना दुरुपयोग कर रहे हैं। अब कहीं कोई घटना घटती है, कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक कर रहा है, वो तुरंत एकदम सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ से बाहर आता है अमेरिका अलग अलग कंट्री में, वो सेकंड नहीं लगती उसको जाने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि तकनीक को जो हमारे पास है उसमें ऐसे अवसर ना हो ताकि उसका गलत इस्तेमाल हो, अफवाहें हो या धार्मिक भावनाओं को आहत करना हो, ये सब अगर करेंगे तो इसमें सामाजिक तनाव ही पैदा होगा
0: जी।
1: तो हमें सोशल मीडिया को इस तरह से लेना चाहिए पॉजिटिव वे में, उसको नेगेटिव ना लिया जाए। ये देश पर भी लागू होता है और विदेशों में भी लागू होता है।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो चलिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक और गीत के साथ कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं और फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: अच्छा चलिए, शांति की बात करें तो हर एक प्रमुख धर्म हो या आध्यात्मिक परंपराएं हो, हर एक धर्म अपने आप में शांति का प्रचार करता है। सभी चाहते हैं कि सभी मिलजुल कर रहे, एकता से रहे, प्रेम से रहे, एक दूसरे का सम्मान करे। उसमें शांति आ जाती है, दया आ जाती है, प्रेम आ जाता है, अहिंसा आ जाता है, करुणा आ जाती है, और ये भी आता है कि किस तरह से हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे के हित के लिए कार्य करें। और हर एक धर्म अपने आप में शांति को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, फिर चाहे वो सनातन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, सिख हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, और हर एक का अपने आप में यही उद्देश्य होता है कि सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, क्योंकि समाज और देश की प्रगति कहीं ना कहीं इसी पर आधारित होती है। इस पर आपके क्या विचार है आचार्य जी?
1: देखिए, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी के विचारों को हनन करो, किसी को मारो। हर धर्म ये सिखाता है कि आप भगवान को माने और शांति से अपने जीवन यात्रा को जिए। अभी अगर हम बात करें, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, आचार्य हूँ, तो हमारे यहाँ भी कहा गया था उपनिषद में कि सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा वही तेजस्विनावधितमस्तु मा विदुषा वही। माने कि हम दोनों की रक्षा हो, हम दोनों का पोषण हो, और हम साथ मिलके परिश्रम करें, कठिन परिश्रम करें, और हम तेजस्वी हों और एक दूसरे से द्वेष ना करें, तो तब कहीं जाकर हम अपनी जीवन यात्रा को सुखद और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। और दूसरा, हमें एक दूसरे के धर्म का भी मान सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे धर्म का मान सम्मान नहीं करते तो फिर रास्ता युद्ध पे जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को भी छोड़ना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: उन परंपराओं के साथ अगर आप जिएंगे जीवन यात्रा, तो जीवन यात्रा आपकी सुखद होगी।
0: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं अपनी जड़ों को ही अगर हम छोड़ देंगे तो फिर कहाँ पर, कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे? लौटकर तो हम वहीं आते हैं जहाँ से हम अपनी शुरुआत करते हैं ना। हमारी संस्कृति की बात कर ले, हमारी सभ्यता की बात कर ले, और हर एक व्यक्ति को जो है अपने कल्चर का सम्मान करना चाहिए, वहीं पर अपने माता पिता के जो है उपदेश है उनका भी पालन करना चाहिए। जो नीतियाँ एक देश जो है ये बनाता है, उन नीतियों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि हम शांति में अगर मिलजुल कर रहना चाहते हैं, इन सभी बातों का पालन नहीं करेंगे तो शांति कहीं से नहीं आ सकती। और गांधी जी ने कहा भी है ना कि जो भी बदलाव हम अपने जीवन में या समाज में लाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है। तो यदि हम समाज में शांति चाहते हैं, देश में शांति चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे मन का शांत होना बहुत आवश्यक है, हमारे मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। आचार्य जी, कार्यक्रम का जो है लगभग समय समाप्त होने को चला, जाते जाते कोई संदेश है जो आप सबको देना चाहेंगे?
1: देखिए, जैसे समुद्र का निर्माण

0: कैसे होता है कि बहुत छोटी छोटी नदियाँ आके वो सारा पानी सारा जल समुद्र में समाहित हो जाता है, लेकिन समुद्र ने कभी अपनी सीमा नहीं लांघी, वो अपनी मर्यादा में रहता है। तो जैसे इतनी सारी नदियों का जल लेकर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, तो ऐसे ही हमें मर्यादा में रहकर समुद्र की तरह से अपनी जीवन यात्रा करनी चाहिए।
1: तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप जुड़े। कहते हैं कि शांति किसी की संपत्ति नहीं है, शांति अपने आप में सबका हक है और इस शांति को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य भी है।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए, इतने प्रेम से आज भी आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। पुनः एक अलग विषय के साथ आपके साथ हम ज़रूर जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रोडक्शन टीम और टेक्निकल टीम को। रत्नमाला जी को हम धन्यवाद देंगे, अपर्णा का तकनीक पर साथ मिला और साथ ही हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका, आपका भी धन्यवाद। सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आपको याद दिला दें, इस कार्यक्रम को आप दोबारा देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर आज ही दोपहर के 4 बजे। साथ ही आज से आप दोबारा सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
0: मेरी तरफ से भी सभी को नमस्कार।

0: आइए सुनते हैं समाचार रिधिमा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार। प्रवीण जगनाथ आज सुबह एक बार फिर से सीआईडी पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री से मिस्टर मुस्तास कहे जाने वाले टेलीफोन टैपिंग और ऑडियो लीक घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की गई। 17 सितंबर को समन मिलने पर प्रवीण जगनाथ ने जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब न देना ही बेहतर समझा था, क्योंकि उनके अनुसार पुलिस ने उनके उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था जिसमें उनके खिलाफ संदेह के आधारों को साझा करने की मांग की गई थी। प्रवीण जगनाथ का ये तर्क था कि पुलिस ने उन तथ्यों और परिस्थितियों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है जिनके आधार पर वे अपने संदेह को पुख्ता कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे माइक अब्बास पर आज 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

0: ये सजा इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन में की मजिस्ट्रेट चित्रा सुबा घापिले द्वारा सुनाई गई। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने उनकी संपत्ति और कई ऐसे सामानों की जांच की थी जिनके अवैध गतिविधियों से आने का संदेह था, जबकि उन्हें रीयन टापू में ड्रग्स तस्करी के लिए दोषी ठहराया जा चुका था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के 77 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई थी। इस अवसर पर कल शाम में बेन कहने सीपॉक होटल में एक औपचारिक समारोह के दौरान इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया गया। और विदेश में उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण कई दिनों में कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने कहा कि 3 दिनों की भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई, जिससे 46 लोग घायल हो गए और 1000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार। News on NBC Play and NBC.mu.
1: You're listening to RM3 Radio.

0: आपके सितारे।
1: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 4:07, मैं हूँ परी आपके साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। हमारा ये प्रोग्राम आपके सितारे, आज के 2 घंटों का ये सफर ऐसे कलाकार के नाम जिसके सरनेम के साथ बॉलीवुड की बहुत बड़ी विरासत जुड़ी हुई है, और उनका नाम है वन एंड ओनली रणबीर कपूर। रणबीर कपूर का जन्म कल यानी कि कल की तारीख पर हुआ था, जो है ऑन 28th of September 1982 में मुंबई में उनका जन्म हुआ, और वो ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे हैं, राज कपूर के पोते हैं। यानी कि सिनेमा उनके लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि बचपन से उनकी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है। लेकिन एक मशहूर फिल्म फैमिली में पैदा होना और खुद अपनी पहचान बनाना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। रणबीर ने अपनी पढ़ाई मुंबई में की और उसके बाद न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की। एक्टिंग में आने से पहले उनके सिनेमा का सफर बहुत पहले से शुरू हो चुका था। दूसरे पहलुओं से रिश्ता उनका पहले से बना हुआ था, और उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ ब्लैक फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। ये उनके लिए एक क्लासरूम की तरह था, कैमरा के सामने आने से पहले कैमरा के पीछे सिनेमा को समझने का मौका था। और फिर 2007 में आई उनकी डेब्यू फिल्म सावरिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन रणबीर कपूर नाम का एक सुपरस्टार हमें ज़रूर मिल गया। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ आपके सितारे प्रोग्राम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर की, जिन्होंने कल मनाया अपना जन्मदिन। और आज का हमारा ये सफ़र, 2 घंटों का ये सफ़र डेडिकेटेड है इसी सुपरस्टार के नाम।

और जी हां दोस्तों सावरिया के बाद रणबीर के करियर में एक इंटरेस्टिंग फेज शुरू हुआ 2008 में बचनाए हसीनो आई जहां उन्होंने एक यंग चार्मिंग और थोड़े इमैच्योर लड़के का कैरेक्टर निभाया और यहां ऑडियंस को रणबीर का जो अंदर के अलग इंसान का जो एक्टिंग का कीड़ा था वो नज़र आया और उनकी नेचुरल एक्टिंग लोगों को काफ़ी अच्छी लगी। इसके बाद उन्होंने एक ही तरह के कैरेक्टर्स में खुद को बांधे नहीं रखा। वेक अप सिड में सिड मेहरा का किरदार एक ऐसा लड़का जो जिंदगी में डायरेक्शन ढूंढ रहा है, अजब प्रेम की गजब कहानी में कॉमेडी का अंदाज और फिर रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर जहाँ पर एक एम्बिशियस यंग सेल्समैन की कहानी थी, साथ ही साथ तीन अलग फिल्म अलग पर्सनैलिटीज यहाँ पर उनको उनके फैंस को देखने को मिली और यहां से रणबीर के करियर की एक खास बात सामने आई कि वो सिर्फ हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर 2010 में आई राजनीति जहां पर उन्होंने एक सीरियस पॉलिटिकल ड्रामा ये जो फिल्म थी वो कुछ ऐसी ही थी जहां पर उन्होंने एक सीरियस कैरेक्टर निभाया और अपनी रेंज को सामने रखा। रणबीर के करियर के इस दौर में एक ऐसा फेज आया जहां पर लोगों ने उनका एक अलग साइड देखा, लोगों को उनकी नेचुरल एक्टिंग तो पसंद आई और साथ ही साथ उनकी जो कैलिबर है एक्टिंग का जो कैलिबर है वो लोगों को काफी पसंद आया। तो चलिए दोस्तों उन्हीं के कुछ हिट सॉन्ग्स आपके लिए हम लेकर आए हैं, कुछ प्यारे गानों के साथ आपके दिल को बहला रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपके सितारे जहाँ पर मैं हूँ परी आपके साथ और यहाँ पर विजया जी भी आई है, कहते हैं दैट हम तो ऐसे ही साथ देते रहेंगे और रेडियो को सुनते रहेंगे। RM2 हो या फिर RM3, बस ये जो RM फैमिली है उसके साथ रिश्ता बनाए रखेंगे। यहाँ पर आप अफसानों के जो बहारों के अफसाने

वो लेकर आई हैं. दैट्स रियली स्वीट जैसे आप ये लिरिकल अंदाज में मैसेजेस हम तक पहुंचाती हैं. सो थैंक यू सो मच विजया जी हमारा साथ देने के लिए. हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप. सो फॉर दिस आफ्टरनून वी हैव सम लवली सॉन्ग्स आपके लिए. आपके सितारे प्रोग्राम जहां पर आज हम बात कर रहे हैं रणबीर कपूर की, जिन्होंने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. उन्हीं की फिल्म का ये खूबसूरत गाना. एंजॉय दिस वन.

फिल्म आई रॉक स्टार इम्तियाज अली की इस फिल्म में रणबीर कपूर ने जनार्दन जाकर यानी कि जॉर्डन का किरदार निभाया। जॉर्डन एक सिंपल लड़के से एक इंटेंस म्यूजिशियन बनने की तरफ सफर तय करता है। कैरेक्टर के अंदर प्यार है, दर्द है, गुस्सा है, तन्हाई है और अपने आप को समझने की एक बेचैनी है। रणबीर ने इस रोल को एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बनाया अपनी लाइफ का जहां पर उनको हर किसी ने ये टैग दे दिया दैट ही इज अ वंडरफुल एक्टर। सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे एक्टर भी है। रणबीर ने इस रोल के लिए गिटार सीखा, कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल जर्नी पर काम किया और एआर रहमान के म्यूजिक ने फिल्म की कहानी को एक अलग ही गहराई दी। रॉकस्टार के बाद रणबीर को सिर्फ एक यंग बॉलीवुड हीरो के रूप में देखना मुश्किल था। उन्होंने दिखा दिया कि वो इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को भी कैरी कर सकते हैं। इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट अवार्ड से नवाजा गया और फिर आई उनके करियर में बर्फी। इसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले ये गाना फॉर ऑल द फैंस ऑफ रणबीर कपूर। तो चलिए यहाँ पर सरिता जी काटरबोन से हमारा साथ दे रही हैं। कहती हैं रणबीर कपूर पर ये जो प्रोग्राम है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो चलिए हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करते हैं दैट इन गानों को भी आप पसंद करेंगी। अभी के लिए नादान परिंदे, ये गाना आपके नाम, द इंटेंस लव स्टोरी ऑफ जॉर्डन फ्रॉम द फिल्म रॉकस्टार, ए आर रहमान का म्यूजिक, मोहित चौहान की आवाज़, रणबीर कपूर की एक्टिंग, आई गेस दैट वॉज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए दोस्तों अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ, आर एम थ्री रेडियो मनोरंजन लेकर आए हैं प्रोग्राम आपके सितारे। जिस सितारे को आज हम चुनकर लाए हैं उनका नाम है रणबीर कपूर। कपूर खानदान का नाम रोशन करते हुए ये सितारे। चलिए एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के लिए।

0: के सितारे।
1: और जी हाँ दोस्तों, आज बात हो रही है रणबीर कपूर की और उनकी फिल्मी जर्नी की। उनके कुछ पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। रॉकस्टार के बाद हमने कहा था कि बर्फी फिल्म की बात करेंगे। बर्फी में उन्होंने मर्फी का किरदार निभाया। रणबीर ने एक कन्वेंशनल एक्टर का किरदार नहीं निभाया था, बल्कि यहाँ पर एक ऐसा एक्टर था जिसके पास डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें काफी सारे इमोशंस एक्सप्रेस करने थे। एक एक्टर के लिए ये बहुत अलग चैलेंज था और रणबीर ने उस चैलेंज को अपने अंदाज में बाखूबी निभाया। उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें काफी सराहा गया। बिना एक डायलॉग के भी उन्होंने अपने इमोशंस को क्या खूबी से अपने फैंस तक पहुंचाया। और जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आई ये जवानी है दीवानी। कबीर थापर यानी कि बनी एक ऐसा यंग लड़का जो दुनिया देखना चाहता था, ट्रैवल करना चाहता था, अपने सपनों के पीछे जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उन्हें रिलेशनशिप्स और लाइफ की दूसरी प्रायोरिटीज समझ आती है। फिल्म रणबीर कपूर के करियर की सबसे यादगार कमर्शियल सक्सेस में से एक बनी और इस दौर में उनकी पर्सनल लाइफ भी मीडिया के लिए काफी चर्चा में रही। रणबीर कपूर के रिलेशनशिप्स बॉलीवुड के सबसे ज्यादा डिस्कस किए गए पर्सनल टॉपिक्स में से रहे हैं और उनके करियर को देखें तो उन अलग अलग दौर में उन्होंने अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को लगातार डेवलप किया और उसी के साथ साथ उनका नाम कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ भी जुड़ता गया। फिर अगर बात करें 2015 में आई उनकी फिल्म तमाशा की, तो वेद का कैरेक्टर उन्होंने निभाया। एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो अपनी असली आइडेंटिटी को सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से बचाना चाहता था और असलियत क्या है उसे समझने में उसे थोड़ा सा वक्त लगा। रणबीर और इम्तियाज अली की पेयरिंग ने एक बार फिर एक इंट्रोस्पेक्टिव कैरेक्टर को स्क्रीन पर लाया। रणबीर के करियर में बार बार एक चीज दिखती है कि उनके कैरेक्टर्स अक्सर खुद को समझाने की जर्नी पर होते हैं और शायद यही अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है। तमाशा फिल्म की बात हुई है तो उसी फिल्म का ये गाना रहा सुपर पॉपुलर। और उनके रिलेशनशिप्स की बात कही तो दीपिका पादुकोण, जी हाँ, इनके साथ उनका नाम जुड़ा और काफी सारी फिल्म

मूवी उन्होंने साथ काम किया. साथ ही यहाँ पर कुछ फिल्में ऐसी भी थी जहाँ पर ब्रेकअप के बाद वो एक बार फिर साथ आए और लोगों को उनकी जो केमिस्ट्री है वो साफ नजर आई और शायद इसीलिए ये जोड़ी लोगों के दिलों में बस गई. से यहाँ पर रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण पर पिक्चराइज्ड ये गाना फ्रॉम द फिल्म तमाशा, अलका याग्निक, अरिजीत सिंह की आवाजें. एंजॉय दिस वन.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए इसी गाने के साथ हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट आवर की ओर.

0: के सितारे।
1: तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5:03 और स्वागत करते हैं आपका इन दिस आवर। लेकर आए हैं आपके लिए आपके सितारे। मैं हूँ परी आपके साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा ये कारवां, जहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रणबीर कपूर को, जिन्होंने कल सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उनके फिल्मी करियर की बात हो रही थी। अगर हम बात करें उनके डिफरेंट रोल्स की, तो अब बात करेंगे फिल्म ए दिल है मुश्किल, जो रिलीज हुई थी इन 2016। अयान सांगा का किरदार उन्होंने निभाया। रणबीर ने एक म्यूजिशियन का रोल निभाया जो प्यार, दोस्ती और हार्ट ब्रेक के बीच से गुजरता है। फिल्म का म्यूजिक बहुत पॉपुलर हुआ और रणबीर की परफॉर्मेंस को भी ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया। 2018 में उनके करियर में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, एंड दैट वॉज संजू। राजकुमार हिरानी की फिल्म में रणबीर ने संजय दत्त का कैरेक्टर निभाया। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी के लुक कॉपी करने का रोल नहीं था, रणबीर को एक रियल पर्सन के अलग अलग फेसेस पोर्ट्रे करने थे। यूथ, सक्सेस, कॉन्ट्रोवर्सीज, पर्सनल स्ट्रगल्स एंड रिलेशनशिप। उन्होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ संजय दत्त की बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज और मैनरिज्म्स पर भी काम किया। संजू बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस बनी और रणबीर को इस परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। एक एक्टर के करियर में कुछ खास रोल्स होते हैं जो सिर्फ फिल्मोग्राफी के लिए नहीं रहते, वो उनकी एक्टिंग की जो रेंज है वो भी बताते हैं, और पता नहीं होता कि कौन सी फिल्म करियर का टर्निंग पॉइंट बन जाए। इस फिल्म के लिए उन्हें इतना सराहा गया और उनकी इतनी तारीफ की गई। इवन संजय दत्त ने कहा कि जब उन्हें जब रणबीर कपूर को उन्होंने इस लुक में देखा था, स्पेशली द 90s लुक, वो खुद इतने शॉक हो गए थे, बिकॉज वो एग्जैक्टली संजय दत्त की तरह दिख रहे थे। और जैसे उन्होंने एक्टिंग की, जैसे उन्होंने डिफरेंट फेजेस को दर्शाया ऑफ संजय दत्त, इट वॉज रिमार्केबल। और इसीलिए इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। फैंस हो या क्रिटिक्स, हर किसी ने इस फिल्म को काफी सराहा।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: तो यहाँ पर रणबीर कपूर की बात हो रही है और उनके डिफरेंट रोल्स की बात हो रही है, बीट इंटेंस रोल्स या फिर चॉकलेट बॉय रोल्स। रोमांटिक लव बॉय का किरदार निभाना हो या फिर कोई ऐसा किरदार जो आपको काफ़ी गहरी सोच में डाल दे, हर एक किरदार को बाखूबी निभाया रणबीर कपूर ने। और आज हमारा ये प्रोग्राम आपके सितारे उन्हीं पर डेडिकेटेड है। अभी के लिए उन्हीं फिल्म का ये खूबसूरत रोमांटिक गाना, एंजॉय दिस वन।

और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है रणबीर कपूर की और उनकी जो प्रोफेशनल जर्नी रही, जहाँ पर शुरुआत हुई सांवरिया के साथ इन 2007 और 2026 आते आते उन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की कि उन्होंने अपना नाम दर्ज किया एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ बॉलीवुड।

तो चलिए यहां पर ब्रह्मास्त्र और उनकी पर्सनल लाइफ और फैमिली की बात करें तो संजू के बाद रणबीर के करियर में एक रिलेटिवली क्वाइट फेज रहा। फिर 2022 में आए ब्रह्मास्त्र पार्ट वन जहां पर उन्होंने शिवा का किरदार निभाया। आयन मुखर्जी के साथ रणबीर की ये फिल्म एक बड़े स्केल की फैंटेसी एडवेंचर रही और इसी साल रणबीर की जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हुआ। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अप्रैल 2022 में शादी की। नवंबर 2022 में दोनों ने एक बेटी को वेलकम किया जिनका नाम राहा कपूर है और बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह वो भी एक सुपर पॉपुलर किड बनी हुई है। रणबीर जो खुद एक फिल्मी फैमिली में बड़े हुए हैं अब खुद अपनी फैमिली लाइफ का एक नया चैप्टर जी रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर उनका करियर कंटिन्यू होते रहा। 2023 में आई फिल्म तू झूठी मैं मक्कार और उसके बाद एनिमल, उसी फिल्म का ये गाना। संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल में रणबीर कपूर ने रणविजय सिंह बलबीर का किरदार निभाया और ये जो कैरेक्टर है लोगों को काफ़ी पसंद आया। काफ़ी वॉयलेंट कैरेक्टर था लेकिन जिस तरह से रणबीर कपूर ने इस रोल को निभाया हर किसी ने उनकी वाहवाही की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया और रणबीर के करियर की एक नई कमर्शियल हिट ये फिल्म साबित हुई और इसी फिल्म के साथ उन्हें एक नया डायरेक्शन मिला। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए उसी फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए फ्रॉम द फिल्म एनिमल, विशाल मिश्रा की आवाज एंड द सुपर रोमांटिक गाना आप सभी के नाम फॉर ऑल द फैंस ऑफ रणबीर कपूर जो साथ दे रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

0: के सितारे।
1: और चलिए दोस्तों, बात की आज हमने रणबीर कपूर की। और जैसे हमने कहा कि रणबीर कपूर सिर्फ कपूर फैमिली का नाम नहीं रहा, उनकी अपनी फिल्मोग्राफी है, अपनी ऑडियंस है और अपनी एक डिस्टिंक्ट स्क्रीन आइडेंटिटी है। और शायद किसी भी एक्टर के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यही होती है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, आगे और कैरेक्टर्स हैं और कहानियां हैं और रणबीर के करियर के नए चैप्टर्स लिखने अभी भी बाकी है। तो इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं अगले गाने की ओर। और ये वो गाना है जो उनकी अपकमिंग फिल्म का है, जो फिल्म काफ़ी चर्चाओं में रही, जहां पर वो किरदार निभाने वाले हैं भगवान श्री राम का। एंड द फिल्म इज रामायणा, जो दिवाली पर रिलीज हो रही है इन दिस ईयर। और जी हाँ, नवंबर में ये फिल्म रिलीज होगी और उसी के साथ उनका एक नया रूप देखने को मिलेगा। और जैसे हमने कहा कि काफ़ी वर्सटाइल एक्टर है, तो चलिए रणबीर कपूर का ये गाना हम डेडिकेट करेंगे उनके सभी फैंस के लिए। आज उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की बात हमने की और साथ दिया आपने ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। अभी इस वक्त गोविंद रघुनंदन वाकवा से हमारा साथ दे रहे हैं आप। तो चलिए यहाँ पर ये प्यारा सा गाना आपके नाम फ्रॉम द अपकमिंग फिल्म रामायणा, अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल की आवाज़ें, पिक्चराइज्ड ऑन रणबीर कपूर। और थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर प्रोग्राम किरण जानकी के साथ। मुलाकात होगी आपकी और मेरी एक बार फिर शाम 6:30 बजे इन नई सोच प्रोग्राम। तब तक के लिए साथ दीजिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर
4: नमस्ते। हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने अमूर्त विरासत पर चर्चा कर रब जा, जैसे कैसे हम इस कब से अपन अमूर्त विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के जिंदा रखे खातिर काम करें। ये बात सबसे जरूरी है कि अमूर्त विरासत अपन जन समुदाय खातिर अर्थपूर्ण, प्रासंगिक यानी रेलिवेंट रही और नियमित रूप से एगो पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक एके पहुंचावल जाए। जैसे गीत गवाए तब तक सार्थक और प्रासंगिक रही जब तक मॉरिशस में विवाह संस्कार यानी शादी ब्याह होते रही और इस सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चल ले आवता। ऐसा खतरा बनल रहेला कि कुछ अमूर्त विरासत सकी मर जाए या लुप्त हो जाए जे ओकर मदद नहीं करल जाए तब। लेकिन कोनो हाल में संरक्षण के मतलब इ नहीं है कि अपन अमूर्त धरोहर के फ्रीज करके रखबा और आगे

0: के पुराना रूप हूबहू वैसे ही जबरदस्ती रखबा। अमूर्त विरासत के संरक्षण के मतलब है ज्ञान कला गुण और अर्थ के दूसरा तक पहुँचावे के ओकर ट्रांसमिशन पर बल देवे के मतलब एगो पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक पहुँचावे के। और ई जोन कन्वेंशन बा अमूर्त विरासत पर इमें बोलल गल बा कि कोनो कला कोनो गीत संगीत नृत्य वाद्य या कारीगरी के हूबहू पैदा चाहे नहीं करेगे। समय के साथ सब कुछ बदलेला। ई कन्वेंशन में ई बात साफ साफ बोलल गल बा कि कोई भी संरक्षण कार्य रही कोनो भी गतिविधि घटना स्थिति के मजबूत बनावे के जहां मूर्त या अमूर्त विरासत फूली फली और आगे बढ़ी हुआ पर चाहे ई बात के पूरा ख्याल रखे के कि नवा पीढ़ी तक पहुंचावे खातिर समय के साथ ऊ विरासत के जो बदलाव हुआ था ओके आत्मसात करके आगे बढ़ा जाए। अमूर्त विरासत के संरक्षण और ओकर ट्रांसमिशन तक मतलब कि एगो पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक पहुँचाइला तक जोन उपाय बा वो मूर्त विरासत से अलग है। मूर्त विरासत के चाहे हूबहू रखे के चाहे ओकर संरक्षण जैसे ओकर मौलिकता रहल ओरिजिनालिटी रहल वैसे रखे के, लेकिन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त विरासत के एकदम ओकर उल्टा है। मतलब कि हियाँ पर आप सब परिवर्तन के स्वीकार करें। अब सवाल ई बा कि का चाहेला हमने के हर हाल में सब अमूर्त विरासत के संरक्षण करे के या ओके जिंदा रखे के, जैसे जीवित शरीर में समय के साथ परिवर्तन होवेला कुछ खत्म होवेला तो कुछ नवा चीज आवेला, वैसे ही अभिव्यक्ति के नवा रूप शुरू होवेला। और ये भी हो सकेला कि कोनो अमूर्त विरासत भले ही कितने ही मूल्यवान कहे नहीं होय उ अपन जन समुदाय खातिर कोनो मायना कोनो महत्व नहीं रखेला और समय के साथ ओके छोड़ देवल जाता। कन्वेंशन में स्पष्ट रूप से बोलल गल बा कि उही अमूर्त विरासत के संरक्षण चाहे करे के जेकर संरक्षण जन समुदाय चाहता करे के जहाँ पर उ लोग के मान्यता बा जेके उ लोग अपन धरोहर के रूप में पहचाने लन सा। और कोनो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण उ जन समुदाय के असहमति से नहीं चाहे करे के बल्कि उ लोग के सहमति से चाहे ई संरक्षण कार्य में आगे बढ़ेगे। तो ई रहा अमूर्त विरासत के संरक्षण पर थोड़ा टिप्पणी। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

सुबह के ठीक शाम के ठीक 6 बजे हैं। नमस्कार 29 सितंबर 2026 के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पहली अक्टूबर से चालकों को अपने फोन में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा। ट्रैफिक जुर्माना ऑनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज से 10% की बढ़ोतरी हुई है। एक लीटर पेट्रोल अब 77.70 रुपये और डीजल 78.35 रुपये में मिल रहा है। इस बढ़ोतरी के बीच इलाके के दूसरे देशों की कीमतों की तुलना इस बुलेटिन में। वर्ल्ड हार्ट डे पर देश में जांच और जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुए हैं। पॉम्पलोमिसिस के कार्डियक सेंटर में हर दिन करीब 150 मरीज पहुंचते हैं, जबकि दिल की सर्जरी और एंजियोग्राफी के लिए इंतजार की सूची घटी है। फोन रिकॉर्डिंग वाले उपकरणों की कथित अवैध खरीद की जांच के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ आज लाइन बैरक्स पहुंचे। 2 घंटे से अधिक समय बाद बाहर आकर उन्होंने कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने तथा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी, लेकिन परमाणु कार्यक्रम, नाकाबंदी और प्रतिबंधों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं।

पेश है अब समाचार विस्तार से। आज रात 12 बजे से सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 8 नए कदम लागू होंगे। शराब या नशे की हालत में गाड़ी चलाने और किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनने जैसे गंभीर अपराधों के दोषी पाए जाने वाले चालकों और मोटरसाइकिल चालकों को और अधिक दंडित किया जाएगा। रोड रेज के मामलों में भी सजाएं और अधिक सख्त होंगी। डिजिटल लाइसेंस भी जल्द ही एक हकीकत बनेगा और पहली जनवरी 2000

0: 27 से लागू हो जाएगा। साथ ही उन वाहनों को जब्त किया जाएगा जिनके चालक शराब और ड्रग्स के साथ पाए गए हैं। पोटली में परिवहन और आईसीटी मंत्रियों द्वारा आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज इन पर अधिक जानकारियां दी गई। आज सुबह से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 10% बढ़ गई हैं। अब एक लीटर पेट्रोल 77.70 रुपये और डीजल 78.35 रुपये में मिल रहा है। नए दामों को कल पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक में मंजूरी दी गई। ये बदलाव ऐसे समय आया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम सामानों की लागत बढ़ रही है।
1: नए मूल्य मंगलवार से सभी पेट्रोल पंपों पर लागू हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल अब 78.35 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। ये 10% की वृद्धि है जो चालकों को प्रभावित कर रहे हैं। परिवहन का साधन चाहे जो
2: भी हो।
3: Pour faire mettre ça au prix d'essence, voilà, juste de travailler, retourner, l'essence finie.
4: Vous pensez au budget pour impacter beaucoup?
3: Oui, oui, vous pensez, oui.
5: C'est comme ça aujourd'hui, là, Maurice, pénin choix.
4: Vous comprenez les raisons?
5: Non. Aujourd'hui, de la guerre partout, mais bon. Les besoins montent à un moment, les montent, que du cas, faire, c'est pour faire. Normal.
6: Par jour, là, avec diesel, pas de commenter. Je peux déjà mettre 4 000. Mais là, avec diesel in montée, nous avons besoin de mettre 4 000, 5 000, 5 000. Si bah, la Tiffen, ça fait réduire la taxe à pélo, l'essence diesel, c'est pas bien bon.
1: इस साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बदलाव। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी के अनुसार इस बार इन दोनों ईंधनों की कीमतों में 18% की वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार केवल 10% ही लागू किया गया है। ईंधन की कीमत तय करने वाली संरचना में लगभग 10 अलग अलग घटक शामिल हैं। इनमें सिर्फ मूल्य यानी उत्पाद की लागत, बीमा और माल ढुलाई, उत्पाद शुल्क, ऑडीए के लिए योगदान, रोड्रिक्स के लिए परिवहन और भंडारण की लागत, भंडारण सुविधाओं के निर्माण का खर्च तथा घरेलू गैस, आटा और राशन चावल पर दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। ईंधन पर लगाए जाने वाले करों की समीक्षा करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए व्यापार मंत्री माइकल सिक्यूएन ने कहा कि ऐसा निर्णय सब्सिडी वाले उत्पादों की कीमतों पर भी असर डाल सकता है।
7: Le 13 décembre 2024, le gouvernement Tshivini-Tshivin enlève 2 roupies par litre en ce qui concerne excise duty concernant le prix de l'essence. Mais valeur du jour, Mopédiaou, il paraît compliqué, nous faisons beaucoup de simulations et malheureusement, il fait l'effet domino de plusieurs autres produits qui nous donnent subside. Par exemple, nous avons 7 roupies 20 d'irrigation, la farine et ben, gaz ménager, LPG. Si 7 roupies 20 viennent zéro en termes de contribution, d'irrigation pour sortir 56 roupies pour un sac de 5 kg, il peut atteindre facilement 153 roupies. Au niveau gaz, il peut passer de 250 à plus que 500 roupies un bonbon de gaz. Et au niveau de la farine, il peut aussi augmenter 26 roupies pour un sac de 2,5 kg et il peut arriver au moins 65 roupies pour un sac de 2,5 kg.
1: Is sanction ke baad price stabilization account jo petrol aur diesel ki khudra qeematon ko sthir rakhne ke liye zimmedar hain mein 3 billion 630 million rupaye ka ghata darj ho gaya hai।
0: पॉम्पलमुसिस के कार्डियक सेंटर में यहाँ हर दिन करीब 150 मरीज पहुँचते हैं। रोज़ दिल की 5 खुली सर्जरी और 18 तक एंजियोग्राफी की जाती है। इलाज की रफ्तार बढ़ने से इंतज़ार की सूची भी घटी है। एंजियोग्राफी के लिए पहले 600 लोग इंतज़ार में थे, अब 100 से कम है। वहीं दिल की ओपन सर्जरी के लिए ये संख्या 180 से घटकर 60 रह गई है। इस केंद्र में हर उम्र के मरीज इलाज के लिए आते हैं। सिंचा मुत्तु करुणा लालू।
1: 14 महीने की आलिना पॉम्पलमुस के कार्डियक सेंटर के बाल हृदय रोग विभाग में अपॉइंटमेंट पर आई हैं। उसकी एक सर्जरी के बाद अब वो जल्द होने वाली दूसरी सर्जरी का इंतजार कर रही हैं। उनके पिता ने कहा, पहली सर्जरी भारत में की थी, अब दूसरी मॉरिशस में, उम्मीद है सब ठीक हो। कार्डियक सेंटर का ये विभाग 5 क्षेत्रीय अस्पतालों से

0: आने वाले बच्चों का इलाज करता है। डॉक्टर सचिन रामधनी ने कहा, साल में करीब 30 की होल सर्जरी करते हैं, ये ओपन हाउथ नहीं है, करीब 20 ओपन हाउथ भी करते हैं। हृदय रोग की उम्र की सीमा नहीं, एक दिन के शिशु की भी सर्जरी की गई है। कार्डियक सेंटर में हर दिन 15 से 18 एंजियोग्राफी की जाती है। 29 वर्षीय यश ने बन कोरोनरी धमनियों के लिए 3 स्टेंट लगाए हैं। उसने कहा, पीठ दर्द से सब शुरू हुआ, उसके बाद छाती का दर्द। डॉक्टर शिव सागर रामबर ने कहा, एंजियोग्राफी करने पर हमने देखा कि 3 धमनियां बंद थी, युवा हैं, इसलिए स्टेंट लगाया गया, धमनी ठीक की गई। 2-3 बाद अन्य धमनियां देखी गई। पहले 60 से 65 साल के मरीज हुआ करते थे, लेकिन अब हृदय रोगी की उम्र कम सीन हुई है, 50-55, अब 40 तक। सिगरेट आदि के सेवन से मामले बढ़े हैं। किसी भी सर्जरी से पहले इकोकार्डियोग्राफी बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर खलील रामजान ने कहा, पहले इको करते हैं देखने के लिए कि सब ठीक है, वाल्व की भी जांच की जाती है, कहीं कोई खराबी तो नहीं। यदि कोई वाल्व तंग हो तो स्टेंट नहीं लगाए जाते, ऑपरेशन करते हैं। कार्डियक सेंटर के 3 ऑपरेशन थिएटर पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। हर दिन लगभग 5 ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, यानी साल में 900 से अधिक ऑपरेशन। डॉक्टर सुनील गणेश ने कहा, वेटिंग लिस्ट बहुत कम हुई है। 1 से 1.5 साल पहले 190 मरीज सर्जरी की प्रतीक्षा में थे, आज संख्या घटकर 60 हो गई है। यानी 15 से 3 हफ्ते के भीतर सर्जरी कर दी जाती है। प्रतीक्षा के दौरान उनकी डायबिटीज नियंत्रित किया जाता है, वजन घटाते हैं, स्मोकिंग से मना करते हैं। एंजियोग्राफी को लेकर भी काफ़ी तरक्की हुई है। 650 से 650 मरीज थे वेटिंग लिस्ट में, आज इस संख्या 100 से कम है। प्राइमरी PCI करते हैं, यानी दिल का दौरा पड़ने पर 2 घंटे के अंदर कार्डियक सेंटर में लाकर धमनी खोलते हैं और स्टेंट लगाया जाता है। ये एक अहम तकनीक है, हृदय को और नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं।
1: Très important, très intéressant, qui évite que muscles et liens endommagés.
0: समय के साथ इस केंद्र ने नई चिकित्सा तकनीक और आधुनिक उपकरण हासिल किए हैं ताकि मरीजों की बेहतर देखभाल की जा सके।
2: आज 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दिवस के मौके पर मॉरिशस टेलीकॉम के सहयोग से जांच और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए। मॉरिशस टेलीकॉम की 3 शाखाओं में लोगों की जांच की गई और उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी गई। अक्टूबर में ऐसे कार्यक्रम दूसरी कंपनियां में भी होंगे। साथ ही ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले पिंक अक्टूबर अभियान को भी आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बीमारियों से बचाव पर जोर दिया। उन्होंने देश के अस्पतालों के लिए भारतीय स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती का भी जिक्र किया। हर धड़कन जिंदगी के सफर में एक कदम और आगे, लेकिन जब दिल कोई चेतावनी दे तो उसे सुनना भी उतना ही जरूरी है। आज विश्व हृदय दिवस पर यही संदेश दिया जा रहा है। दुनिया भर में हर साल 20 मिलियन से अधिक लोगों की मौत दिल और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी बीमारियों से होती है। ऐसे में समय पर खतरा पहचानना बेहद जरूरी है। आस्था गुबिन।
3: दिल दिन रात काम करता है, लेकिन उसकी बीमारी हमेशा अपना पता नहीं देती। कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। इसलिए आज वर्ल्ड हार्ट डे पर लोगों से अपनी सेहत पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक दिल और रक्त वाहिकाओं की बीमारियां दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है। इनमें दिल का दौरा और दिमाग की नसों से जुड़ा आघात भी शामिल है। इस साल का संदेश है, डोंट मिस अ बीट, यानी बीमारी के संकेतों को अनदेखा न करें। सीने में दर्द या दबाव, सांस लेने में तकलीफ या बांह, जबड़े और पीठ में दर्द दिल के दौरे के संकेत हो सकते हैं।

0: सकती हैं। ऐसे लक्षण अचानक सामने आए तो तुरंत इलाज की जरूरत होती है। इस महीने विशेषज्ञों ने दिल के दौरे की एक नई अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा भी जारी की है। इसका एक मकसद महिलाओं में इसकी अलग अलग वजहों को बेहतर ढंग से पहचानना है। विशेषज्ञों के अनुसार महिलाओं में कई बार बीमारी की सही पहचान देर से होती है। दिल की देखभाल के लिए बड़े बदलाव का इंतजार जरूरी नहीं। रोज थोड़ा चलना, तंबाकू से दूर रहना, खाने में नमक कम करना और समय समय पर ब्लड प्रेशर तथा खून में शक्कर की जांच कराना मदद कर सकता है। विश्व हृदय दिवस याद दिलाता है, दिल की हिफाजत किसी एक दिन का काम नहीं, उसकी देखभाल हर दिन करनी होती है।
1: फोन पर बातचीत सुनने वाले उपकरणों की कथित अवैध खरीद की जांच के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ आज लाइन बैराक्स पहुंचे। दो घंटे से अधिक समय बाद वे अपने वकीलों के साथ बाहर आए। प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे इस जांच में सहयोग नहीं करेंगे। यासिंदर महमूद, अदिति अवतार।
2: इस मंगलवार को लाइन बैराक्स में बुलाए जाने पर पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार फिर जांचकर्ताओं के सवालों का जवाब देने से इनकार किया। उनकी कानूनी टीम के अनुसार पुलिस अभी भी उन तथ्यों और हालात का खुलासा करने से इनकार कर रही है जिनके आधार पर उन्हें शक है और इसी वजह से प्रवीण जगनाथ ने उन्हें सहयोग देने से इनकार किया। ये समन प्रवीण जगनाथ को टेलीफोन रिकॉर्डिंग उपकरणों की गैरकानूनी खरीद की जाँच के सिलसिले में भेजा गया था। उनके वकील राउफ कुलबुल कहते हैं
3: La police tient de se communiquer qu'il ne donne pas d'informations pertinentes pour ça l'enquête là à Monsieur Jagnat.
4: L'IPGL ne donne pas d'informations pertinentes. La loi empêche moi pour me dire qui a une raison pertinente qu'il ne donne qu'il n'est pas donné et qui m'en exige les pour donner moi. Mais ce qu'il nous capable de dire, la police est dans cette position qu'il ne prend. Nous nous exige certains renseignements. Nous pouvons exiger et nous avons certaines réponses que nous trouvons, nous ne sommes pas capables d'amener le concours puisque ça, c'est l'enquête-là.
2: Pravin Jagnath ko, isi jaanch ke silsile mein baad mein fir se line barracks jana hoga. Pichli baar, saman milne par bhi unhone yehi rukh apnaya tha. Wahin police ka kehna tha ki unhe kathit apraad ke baare mein bata diya gaya tha.
1: चीन अगले 1 अक्टूबर को अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। इसी मौके पर कल शाम बेन के हेनेसी पार्क होटल में समारोह आयोजित किया गया। सांसद, राजनयिक और राजनीतिक हस्तियां इसमें शामिल हुई। साथ ही मॉरिशस और चीन के बीच 50 साल से भी पुराने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को याद किया गया। खिशन सिच्चा, अदिति अवतार।
2: पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 77वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित समारोह में राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और कई अन्य महानुभाव शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा हुआ। इसके बाद मॉरिशस में चीनी राजदूत डॉक्टर हुआंग शिफांग ने एक टोस्ट उठाया। अपने संदेश में चीनी राजदूत ने 1972 में राजनयिक संबंध शुरू होने के बाद से मॉरिशस और चीन के बीच बनी मजबूत मित्रता पर बल दिया।
5: Since the establishment of diplomatic relations,
2: उन्होंने कहा 54 साल पहले कूटनीतिक संबंधों की स्थापना से दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत होता गया है। चीन मॉरिशस के एक ही चीन के विजन के सिद्धांत को गहराई से सराहता है और शागोस द्वीप समूह की अखंडता तथा टेरिटोरियल संप्रभुता को लेकर चीन मॉरिशस के न्यायपूर्ण निश्चय का समर्थन भी करता है। चीन की वृहद मंडी मॉरिशस के निर्यात के लिए बड़ी संभावनाएं प्रस्तुत करती है तथा चीन अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए विजन 2050 के साथ सहयोग बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। इस साल शुरू की गई 15वीं पंचवर्षीय योजना चीन की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को उच्च स्तरीय विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर रही है। इसी संदर्भ में समारोह के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चीन का नवाचार उजागर किया गया।
1: पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद एक सवाल शायद आपके मन में भी होगा।

0: हमारे पड़ोसी देशों में लोग कितना भुगतान करते हैं, क्या वहाँ ईंधन हमसे सस्ता है या महंगा। आइए इलाके के कुछ देशों में एक लीटर पेट्रोल और डीजल की दाम की तुलना करते हैं। अंजुराम गुलाम, अदिति अवतार।
1: पड़ोसी देश रेनियन को भी ईंधन के दामों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है और उनके यहाँ भी कीमतें बढ़ रही हैं। पहली सितंबर से वहाँ एक लीटर पेट्रोल का दाम 1.83 यूरो है, यानी हमारे लगभग 99।

0: अगस्त महीने से बढ़ा है। पेट्रोल के लिए 5 सेंट और डीजल के लिए 13 सेंट ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। रेनियन अपना ज्यादातर ईंधन सिंगापुर से मंगवाता है। उधर सेशल्स में भी हालात चिंताजनक हैं। पहली सितंबर से एक लीटर पेट्रोल की कीमत 24.68 सेशल्स रुपए यानी लगभग 85 मॉरिशन रुपए हो गई है। डीजल का दाम वहां के 25.19 रुपए यानी हमारे लगभग 87 रुपए पर है। परिणाम स्वरूप सेशल्स के लोगों को भी फिलिंग स्टेशन जाते हुए संघर्ष करने जैसा अनुभव हो रहा है। याद रहे कि सेशल्स के पास उसके अपने टैंकरों की फ्लीट है। हालांकि उसने ईंधन की आपूर्ति के लिए पिछले महीने स्विट्जरलैंड की टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग एसए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उधर मायोत में लोगों की जेब पर भारी बोझ बना हुआ है और बजट बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। पहली सितम्बर तक एक लीटर पेट्रोल की कीमत 2.5 यूरो यानी लगभग 111 रुपए थी, जबकि डीजल की कीमत 2 यूरो यानी हमारे लगभग 108 रुपए थी। पिछले महीने वहां कीमतें और बढ़ी हैं। वहीं कोमोरो में 4 महीने पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब वहां पेट्रोल की कीमत 725 कोमोरियन फ्रैंक प्रति लीटर यानी लगभग 80 मॉरिशन रुपए और डीजल की कीमत 630 कोमोरियन फ्रैंक यानी लगभग 69 रुपए है। मडागास्कर की बात करें तो वहां हालात बहुत तनावपूर्ण है। ओमान से शिपमेंट में देरी के कारण 2 हफ्ते पहले वहां ईंधन लगभग खत्म ही हो गया था, जिससे इमरजेंसी योजना लागू करनी पड़ी। वहां 1 लीटर पेट्रोल 5,300 एरियरी और डीजल 4,860 एरियरी में बिकता है। ये पेट्रोल के लिए लगभग 57 मॉरिशन रुपए और डीजल के लिए 52 रुपए के बराबर हैं। ये कीमतें 5 सितंबर से लागू हैं। हालांकि इन आंकड़ों को सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए मडागास्कर में एक फुल टैंक लगभग 40 लीटर औसत सैलरी का लगभग 35% होता है, जो कि करीब 6,000 रुपए है। मॉरिशस में डीजल भरवाने का खर्च औसत वेतन का 6.84% होता है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के आंकड़ों के अनुसार ये वेतन 45,794 रुपए है। ये साफ नहीं है कि इससे जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा या नहीं, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि ईंधन भरवाते हुए सिर्फ मॉरिशन ही नहीं बल्कि सभी परेशान हो रहे हैं।
1: और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए बातचीत जारी है। चर्चा में जलमार्ग खोलने और ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी हटाने का प्रस्ताव शामिल है, लेकिन समझौते की राह में अब भी बड़ी रुकावटें हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के मुद्दे पर पहले ठोस प्रगति हो। वहीं प्रतिबंध हटाने का समय और दोनों में पहला कदम कौन उठाएगा, इस पर मतभेद बने हुए हैं। और अब चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल।
2: हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि आज रात के दौरान और कल सुबह भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और रह रह कर पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। दिन के दौरान भी मौसम सुहाना रहेगा, धूप खिले रहेगी। इस बीच कुछ समय के लिए देश के पश्चिमी हिस्से में बादल घिर आएंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22 अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। आज रात के दौरान दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। इस बीच धीरे धीरे समंदर की स्थिति में सुधार आएगा। सूर्यास्त 6:07 पर, कल सूर्योदय 5:52 पर।

0: 43 years old के जनाब मोहम्मद हनीफ एडू जो महमूद हनीफ नाम से भी जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं. उनका जनाजा आज रात 7:15 बजे उनकी बेटी रबैया करम ताली के घर ग्लेन पार्क वाकवा से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए ग्लेन पार्क की सुन्नी मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान. फ्यूनरल टुनाइट एट 7:15. शुमे माशिन पालमा का ट्रोबोन में 74 साल के 74 years old के श्री रमेश बकोरी जो रमेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके घर शुमे माशिन पालमा का ट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाए जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM. नंबर 321 एवेन्यू ओलिया का ट्रोबोन में 56 साल के 56 years old के श्री जवाहरलाल जगेसर जो संजय नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थिक गुरुवार को दिन के 1 बजे उनके घर नंबर 321 एवेन्यू एरिया का ट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 1 PM. एवेन्यू लक्ष्मण पालमा रोड का ट्रोबोन में 58 साल के 58 years old के श्री सूर्य राव नाराजी जो पुल नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थ कल सुबह 10 बजे उनके घर अविनी लक्ष्मण पालमा रोड का ट्रोबोन से उठाकर खुद गौर बेतु की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. मिशन क्रॉस रोड बोनाकोई में 73 साल की 73 years old की श्रीमती सत्यावादी मोरी पैदाइशी नाम से वातियों और जोशीला नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थ कल दिन के 12 बजे उनके बेटे गानादा आजागेन मोरी के घर मिशन क्रॉस रोड बनाकर से उठाकर बनाकर की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट नून. केटू लेन संशोधिया विलेज में 76 साल की 76 years old की श्रीमती सुभावती एमराज पैदाइशी नाम जीनारायण और जो सुभावती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थ कल दिन के 11 बजे उनके बेटे संजीव कुमार सिंह एमराज के घर केटू लेन संशोधिया विलेज से उठाकर मिज इन कॉन्डोमास की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. सचुकुलेन रोड मिशन क्रॉस रोड लालमाटी में 101 साल की 101 years old की श्रीमती पिचाय मर्दन पैदाइशी नाम कौपेन और जो आकापाक्यों नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थ कल सुपहर 3 बजे उनके भतीजे सदायन अनात्रा के घर सचुकुलेन रोड मिशन क्रॉस रोड लालमाटी से उठाकर बोबा की शमशान भूमि दी जाए जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM. पालमा जंक्शन बासन रोड का ट्रोबोन में 74 साल के 74 years old के श्री पतिदेव प्रसिद जो रमेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी गुरुवार को सुबह 10 बजे उनके घर पालमा जंक्शन बासन रोड का ट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 10 AM. डोडोलिन लातापी बोनाकर में 50 साल की 50 years old की श्रीमती आशा गंगादोस पैदाइशी नाम गुंदोरी और जो आशा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति श्री पृथ्वीराज गंगादोस के घर डोडोलिन लातापी बोनाकर से उठाकर बोनाकर की शमशान भूमि दी जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है.
1: ये है रेडियो मॉरिशस.

0: मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में शोक समाचार।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
0: ग्लेनबॉग वाकवा में 93 साल के

0: एबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। पहली अक्टूबर को सुबह यानी कि दिन के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मोताई ब्लांश में और आसपास के इलाकों में विलाज मोताई ब्लांश, शिवाला रोड, लाफोज लेन, ओल्ड रेलवे ट्रक रोड, विदेशी लेन और पिट्सिपाके रोड और रॉयल रोड मोताई ब्लांश और आसपास के इलाकों में और सेजिया मिल में भी सेजिया मिल रॉयल रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
2: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस
2: Radio Mauritius.

0: 听众朋友，这是毛利求是广播电台886频道，今天又到了华语歌曲欣赏节目时间，下面请大家一起来。
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. घड़ी मिलाते चलिए शाम के 6:30। और चलिए दोस्तों, लेकर आए हैं हमारा प्रोग्राम नई सोच, जहां पर हम कुछ अच्छी बातों के साथ आपके दिल को बहलाते हैं। कहते हैं कि जिंदगी में तो काफी कुछ होता रहता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है आपकी सोच पर। और तभी तो हम कहते हैं कि कभी कभार हम इतना नेगेटिव सोच लेते हैं कि हम लाइफ में नेगेटिविटी को वेलकम करते हैं। और तभी कहते हैं कि अगर आप अच्छा सोचते हैं तो जिंदगी में अच्छा जरूर होता है। सो कीप योर सोच पॉजिटिव, यानी कि अच्छा सोचेंगे तो लाइफ में अच्छा जरूर होगा। और जैसे हमने कहा कि इस दुनिया में अच्छा इंसान होना ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, तो बस आपकी अच्छाई को बनाए रखिएगा। और अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक आपके लिए ये खास प्रोग्राम लेकर आए हैं विद सम ब्यूटीफुल मोटिवेशनल गाने, जिन्हें सुनकर लगे कि बस जिंदगी को जीने का अपना ही एक सलीका होता है और इस वक्त आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके नाम परी का साथ RM3 रेडियो मनोरंजन पर। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250 6200 5250 6200 पर आपका इंतजार।

जैसे हम कहते हैं कि जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और कभी कभार हम कहते हैं कि जो ऊपर बैठा है उसने आपके लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। कहते हैं ना कि उसके पास वो 3D व्यू है जो शायद हमारे पास नहीं है। कभी कभार हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जहाँ पर उन्होंने हमारे लिए कुछ बड़ी चीज़ें सोच के रखी है। तो तभी हम कहते हैं कि ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस, और यूनिवर्स जो आप बोलते हैं वैसा ही होता है। तो हमेशा आप अच्छा बोले, खुद के लिए अच्छा सोचे, एंड मैनिफेस्ट ओनली गुड थिंग्स। सो ऐसे ही दोस्तों, अभी के लिए तो हम ये प्यारे गाने आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें सुनते हुए आपको भी लगेगा कि जिंदगी की जो भी मुश्किलें हैं वो इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। हर किसी की अपनी एक लाइफ है, हर किसी का अपना एक गोल होता है, और हर किसी के अपने बहुत सारे सपने होते हैं। तो जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, बस उनकी तरफ आप जल्दी से जल्दी कदम बढ़ाएं, और जो भी आपने सोचा है उससे भी बेहतर आपको जिंदगी में मिले। उसी के साथ ये गाना हम आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं। इस वक्त विशाल भैया और रीमा भाभी हमारा साथ दे रही हैं, हमारी किचन टीम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमेशा शाम के टाइम आप हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो बस आपको इसी गाने के साथ एक थैंक यू हम कहना चाहेंगे। साथ देने के लिए शुक्रिया, और इन प्यारे गानों को हमारे साथ एंजॉय करने के लिए शुक्रिया। मैं हूं परी आपके साथ, और अभी के लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम नई सोच। अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक ऐसे ही कुछ प्यारे गाने।

और जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया तो काफ़ी रंगीन है, काफ़ी हसीन है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की खुशियों को थोड़ा सा और ख़राब कर देते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जैसा हम व्यवहार दूसरों से चाहते हैं, हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका दिल ना दुखाए, तो यू मेक श्योर कि आप किसी का दिल ना दुखाए। कभी गुस्से में भी, नाराज़गी में भी ऐसे शब्द ना निकल जाए जो दूसरे के दिल को चोट पहुंचा जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि जुबान जो है वो तलवार से ज़्यादा तेज़ होती है, और जुबान की कही हुई कड़वी बातें वो दिल में चोट कर जाती है और उसे ठीक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वक्त भी बीत जाए लेकिन ये बातें जो हैं वो एक घाव की तरह चुभती रहती है। सो ऑलवेज डू गुड, बी गुड, और आपका जो आपकी जो काइंडनेस है उसे आप बनाए रखिए। जैसे हम कहते हैं, इंसान के साथ, जानवर के साथ, हर किसी के साथ वी नीड टू बी काइंड, बिकॉज हर कोई अपनी एक बैटल लड़ रहा होता है। यू नेवर नो, जैसे आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव है, शायद दूसरे के जीवन में भी उतने ही उतार चढ़ाव चढ़ रहे हो, और आपकी एक कड़वी बात उनका दिल तोड़ सकती है, आपकी एक अच्छी बात उनका दिन बना सकती है। सो व्हाट यू चूज, ऑफकोर्स आपको अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, और फिर आप देखिए कि कैसे आपके जीवन में भी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो वक्त हो चला है कि अगले गीत के साथ हम बढ़े हमारे अगले प्रोग्राम की ओर, जिसका नाम है दिलों की आवाज़। मैं हूँ परी आपके साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। प्यारी बातों के साथ साथ यहाँ पर रोमांटिक बातें भी होने वाली है, यानी कि आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल का हाल, अपनों के नाम, स्वीट डेडिकेशंस, 5250620005250620 पर। अभी के लिए जो अगला गाना है, काफ़ी मोटिवेशनल गाना फ्रॉम द फिल्म संजू, इसे हम आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जीवन में जो भी मैदान है उसे आप ऐसे ही फतेह करते रहे और ज़िंदगी में अच्छे जज्बात, अच्छी बातों को बनाए रखें।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: टाइम चेक, शाम के ठीक 7 बजे हैं। और चलिए दोस्तों, शाम के 7 बजते ही हमारा ये प्रोग्राम दिलों की आवाज आपके लिए बिल्कुल तैयार है, जहां पर कुछ रोमांटिक गाने कर रहे हैं आपका इंतजार। दिन भर की थकान को दूर करने के लिए इससे बेटर शो और क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं परी आपके साथ, रात के 9 बजे तक आपकी इस शाम को सजाए रखेंगे इन्हीं प्यारे गीतों के साथ। कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें। From the film खूबसूरत, we have this खूबसूरत गाना हमारे खूबसूरत listeners के नाम, जिन्होंने चुना है RN3 Radio मनोरंजन को। So let's make it special. Enjoy this one.

लबों को लबों से सजा लो भूल भुलैया फिल्म का ये गाना केके की आवाज और अब सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में एक और ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना आपके नाम सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप ऑन RM2 RM3 रेडियो मनोरंजन और बस यहाँ पर कोशिश है कि इन गीतों के साथ आपके दिल को हम बहलाते रहे वाकवाजे सुदेवी जी आई हैं अपनी शाम एंजॉय कर रही हैं और याद कर रही हैं ट्रियोले की दीदी ललिता और खुशहाल परिवार को दीदी सुनीता देवीना मालिंगा के कृष्ण केशनी परनीता सभी रामरतन परिवार के लिए और ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आप भी सुनना चाहती हैं तो धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया रेडियो मनोरंजन को सुनने के लिए शुक्रिया और ये गाना आप सभी के नाम

बिल्कुल जी, अभी तो अलविदा नहीं कहेंगे, because एक और घंटा आपका साथ हम निभाएंगे इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ, आपके दिल को बहलाए रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, साथ देने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके नाम दिलों की आवाज प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 9 बजे तक मैं हूं परी आपके साथ, अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा की आवाजें। We have this beautiful गेरुआ गाना आप सभी के लिए जिस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे अपारू परिवार आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, enjoying the songs। ये गाना आपके लिए, साथ देने के लिए शुक्रिया हमारे सभी listeners, thank you so much। खूबसूरत गानों का कारवां आपके लिए on RM3 रेडियो मनोरंजन।

और चलिए यहां पर खूबसूरत गाने आपके लिए चल रहे हैं और यहां पर हमारे साथ जुड़ी हुई है रिहाना जी फ्रॉम फिनिक्स. सो ऐसे ही खूबसूरत गाने आपके नाम भी हम करते चलेंगे और कहते हैं कैसी हैं आप परी. मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और यहां पर गाना डेडिकेट कर रहे हैं आप फॉर बहन शोभा अनुराधा लक्ष्मी और अनीता जी फ्लिकॉन फ्लैग से हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप. तो चलिए आपकी स्वीट बहनों के नाम आपके परिवार के नाम एंड फॉर ऑल योर लव्ड वंस वी हैव ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. अभी के लिए तो जावेद बशीर की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एंजॉय द सॉन्ग्स एंड एंजॉय द टाइम ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन.

और यहाँ पर यसीर देसाई की आवाज़ गोल्ड फिल्म का ये गाना इसे हम लेकर आए हैं हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म जिसमें नजर आए अक्षय कुमार मोनी रॉय ने भी उनका साथ दिया और ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम दिलों की आवाज़ प्रोग्राम मैं हूँ परी आपके साथ रात के 9 बजे तक

that was in the beautiful voice of Shreya Ghoshal. जलेबी फिल्म का ये गाना था आप सभी के लिए. बिल्कुल, फिल्म का नाम जितना मीठा है गाना उससे भी मीठा. सो ऐसे ही साथ निभाते रहिए, ऐसे ही प्यारे गाने आपके लिए चलते रहेंगे रात के 9 बजे तक. दिलों की आवाज़, मैं हूँ परी आपके साथ ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन. हमारे जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिस वन गोज आउट फॉर यू ऑल.

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: I love you.
2: Yeah!

और चलिए दोस्तों रात के 8:56 और इसी गाने के साथ समय हो चला है कि मैं परी लूं आपसे इजाजत। इतने प्यार से आपने हमारा साथ निभाया ऑन रेडियो मनोरंजन, इसके लिए धन्यवाद। मुलाकात होती रहेगी और आपका रात का ये कारवां सुपर रोमांटिक सुपर स्वीट रहे। और इसी विशेष के साथ परी साइनिंग ऑफ, मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड। RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ।

0: Continuous music.
1: RM3. On the hour, every hour.
2: Radio Marches.
3: और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
4: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमज जलसा हंगामा

सब संगत के आओ जय प्रताप सिंह का से प्यार भरा नमस्ते सलाम यह तो मन पसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन सबको के लिए स्वागत करते हैं जा और बेशक यह रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस रात के 9:01 होता है और इसी लगे रात के 11 तो लोग के पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरी तड़का आज मंगलवार की रात 29 सितंबर साल 2026 तो सकबा हमने के टिकटॉक पेज पर देखे रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमने के देखे अपन एसएमएस भी जाकर या पसंदीदा भोजपुरी गीत सुनिया और सकबा जा टेलीफोन करें 4 0 0 5 पर चलो शुरू कर दिया जाए धमाकेदार प्रोग्राम के को जबरदस्त गीत के साथ किरिंग करांग अरे किरिंग करांग हमने बोला था किशोर कुमार रमेश सर किरिंग करांग चलो सुनो जा किरिंग करांग याद रखिए मन करता कोनो भोजपुरी गीत सुनने के तम के टिकटॉक पेज पर मिसाज विदा करिए टिकटॉक रेडियो मॉरिशस या फिर टेलीफोन करिए 4 0 0 5 पर

0: सब घर में किरिंग कारांग कारांग कुरुंग होते रहेला घर घर की यही कहानी बा और संगतियारों की दुनिया में के अपना बा के पराया बा पता ही नहीं चले रहा बहुत मुश्किल हो चला कभी कभी जाने की सच्चाई में वास्तविकता में के तोहर अपन बा के तोहर पराया कभी कभी तोहर अपन पराया हो जा पराया लोग तोहर अपन हो जा रहा होला है इसे जिंदगी में होला और अभी एक संगतिया बा लाइन पे हमने के संगे चलाकर से मिला जा भाई विजय बेनी प्रसाद हेलो लाइन में जब बात करिए भैया हेलो
1: हेलो नमस्ते भाई जी
0: नमस्ते भाई विजय कैसी समाचार
1: समाचार ठीक बा आप तू कैसे हो
0: हम बिल्कुल गमट कर रहे थे लोग के संगे संगे
1: हाँ तो अभी जाने रहे जब जब 9 बजे ला तो कौन सी चाहना कर देते ना
0: हाँ तू जाने रहा ना
1: अरे वो देखो हम जिलो शिवदत्त के गीत मांगा जाए ये थी बाप दादा की बोली हाँ
0: बाप दादा लोग के बोली ना
1: आप दादा लोग के बोली हाँ
0: तू सच्चाई
1: बोला
0: माफ
1: कर
0: दिया नहीं नहीं
1: नहीं वो ये गीतवा सब बेनी प्रसाद परिवार के नाम जो दिया हमारे गुजोर बा गणेश जगनारायण सामने रहेला अभी अभी तो हर वाजे शास्त्री बोनो माली
0: हाई देखा तो हर जिगरी दोस्त शास्त्री भाई
1: जिगरी दोस्त ओके नहीं भूल वाजे रहेला ना
0: हाँ हाँ गाँव में रहेला
1: हाँ हमारा बोले ना

0: का नाम नहीं भूला जो भाई जी।
1: हाँ सासी बने माली।
0: सुना तू सब कोविड बना
1: सब चला था धीरे धीरे, कब गर्म कब ठंडा, आज तक बड़ी ठंडा कर लग।
0: हाँ तो अभी हजा बड़ी तनी गर्म कर रहा था तनी ठंडा।
1: तू कहाँ कौन कोटी, तू कौन कोटी रह रहा, कौन कोटी रह रहा तू?
0: तामुनी।
1: होने आम आम उम फरा था कि नहीं?
0: हाँ फरा था, अभी बीती बीती होल बा
1: रखिया मका चित्र सुना में औचार डालो।
0: हाँ ताजा नहीं करम विदा करम हमारे दोस्त शास्त्री से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीत चला दियो अब सर, ये
0: भाई जी डाल दिया गीत हुआ
1: आली डाल अब से गीत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हिट गीत चली थानी खातिर फिर अविनाश वैष्णवी नीमा यीशु फिजा और उनके संग चालू करने की दिखाता हूँ टिकटॉक पर। जय श्री देवी सिंह वारदा माधवी मोहन शिक्षा बोईरू वासिम एंजल वी लोल आकाश चेतन शुभ नमस्कार इंदिरा लखन रवि बंगारू कैसे उनके संग रवि रवि बंगारू तो परिवार के नाम पमिला गीता श्री दीप शिवदयाल माला दीप दीपिका दीप्स माला फिर उदयम सुनार उषा आशीष लोचन रॉय कुशवाहा जी हेलो साई फिर लक्षम सिगोबिन जी गीत थोरो नाम इंदिरा नंकू उदयम सुनार लवना जी हाँ कर प्यार होलों के नाम वो बकत केन्या में काम करत हुन फिर उषा मिदुन सुषमा कबीर है चली डैनियल नीमा सुभावती सुभावती हीरा सभी कात्री प्रताप पुन शालिनी शालिनी हीरू हवन अल्लाह फ्लोगा से करपति विशाल और सब हीरू परिवार के नाम। तो चले एक साथ सुने बाप दादा लोग के बोली, चले एक साथ सुनेंगी तो

अच्छा, कहानी के शीर्षक है तितली और चिड़ै की कहानी। तो बहुत पुराना बात है, एगो होशियार बहुत पुराना बात है, एगो हरा भरा जंगल रहल। जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधा, रंग बिरंगे फूल और मीठी आवाज के चहके वाला चिड़ै सब रहत हल। वही जंगल में एगो नन्ही सी प्यारी सी तितली रहता है, एगो प्यारा सन चिड़ै रहता है। तितली के पंख बड़े सुंदर रहल, ओकर पंख में लाल, पियर, नीला और बैगनी रंग के छटा देख के सब भी ओकर तारीफ करत हल। तितली दिन भर फूल से फूल पर उड़त हल, फूल के रस पियत हल और खुशी खुशी गुनगुनात हल। चिड़ै के आवाज बहुत मीठा रहल, उ सवेरे सवेरे पेड़ के डाल पर बैठ के चहचहात हल और पूरा जंगल के अपन मीठा आवाज में गीत सुनावत हल। चिड़ै मेहनती रहल, उ तिनका तिनका जोर के अपन घोंसला बनावत हल। एक दिन तितली फूल पर बैठल, ओ घड़ी चिड़ै उड़त उड़त वहाँ पर आल। चिड़ै तितली से बोलक, तितली बहिन तू तो बड़ी सुंदर हवा, तोहरा तोहर पंख और फूल तोहर पंख इतना जोरी बार तू इतना सुंदर लगेला। तितली मुस्कुरा के बोलक, धन्यवाद चिड़ै बहिन, बाकी तोहर मीठा आवाज के तोहर मीठा आवाज से हमने सब कोई जंगल में जागीरा सा। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गल। तितली चिड़ै के फूलन के बारे में बतावत आ चिड़ैया तितली के जंगल के अलग अलग जगह दिखावत हल। एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज आंधी आ गल, आसमान में कारी बादल छागल, जोर जोर से हवा चले लगल, पेड़न के दार हिले लगल और पत्ता सब चारों ओर उड़े लगल। तितली घबरा गल, ओकर पंख बहुत नाजुक रहल, तेज हवा में उ ठीक से उड़ न पात हल। उ एगो झाड़ी के पत्ता के नीचे छिप के कोशिश कर लग। उही समय चिड़ै अपन घोंसला में सुरक्षित बैठा रहल। बाकी जब उ तितली के परेशानी में देखलक तो तुरंत बाहर निकल के बोलक। चिड़ै बोलक, तितली बहिन डर नहीं, हम तोहरा सुरक्षित जगह में ले जाब। चिड़ै अपन पंख से तितली के तेज हवा से बचाए खातिर ओके पोतेजी करलक, मोटा पेड़ के खोखला में ले गल। तितली ओहिजा सुरक्षित में गल। कुछ देर बाद आंधी रुक गए, तितली चिड़ै के धन्यवाद दिलक, चिड़ै बहिन तो आज तू हमार जान बचाई ला, हम ई एहसान के कबो ना भुला। चिड़ै हंस के बोलक, दोस्ती में एहसान नहीं बोल जला, आज तोहर जरूरत रहल तो हम मदद कर ली, कल अगर हमारा जरूरत पड़ी तो तू हमार मदद करिया। और कुछ दिन बाद जंगल में बरखा ना पड़ल, तालाब सूख गल लागल और पेड़ पौधा मुरझा गल। चिड़ै पानी खोजत खोजत बहुत दूर निकल गए, बल्कि कहीं पानी ना मिलल। तितली रोज फूलन के बीच उड़त रहल। एक दिन उ जंगल के एगो कोना में गल, जहाँ एगो पुराना चट्टान के नीचे छोटा सन पानी के गड्ढा रहल। तितली के ओहिजा पानी मिल गल, उ तुरंत चिड़ै के खोज निकलक। कुछ देर बाद चिड़ै थक के एगो डार पर बैठल, तितली ओकर लगे पहुँच के बोलक, चिड़ै बहिन हमरा एगो जगह पानी मिलल बा, चल हम तोरा बताब जा। चिड़ै तितली के पीछे पीछे उड़ल गल और पानी से अपन प्यास बुझैलन जा। तितली मुस्कुरा के बोलक, दोस्ती में एक दूसरे के साथ देल सबसे जरूरी होला। समय बीतल गल, तितली और चिड़ै की दोस्ती गहरी मजबूत होल। जंगल के बाकी जानवर भी दोनों के दोस्ती के उदाहरण देवे लगल। एक दिन एगो बूढ़ा खरगोश बचपन से कल रहल, बछवा लोग तितली के सुंदरता और चिड़ै की मीठी आवाज त सब देखलक सुनलक, बाकी असली खूबसूरती त दिल में होला जे दूसरे के मुश्किल में काम आवेला। तितली आ चिड़ै एक दूसर के देख के मुस्कुरा देलक। उ दिन से जंगल के सब जीव भी ई बात याद रखलक कि सच्ची दोस्ती रूप आकार या ताकत में नहीं रहेला, सच्ची दोस्ती जरूरत के समय में काम आवेला। कहानी की सीख ये है संगतियालो कि सच्चा दोस्त वो होला जे सुख में साथ देवेला और दुख में खड़ा रहेला। दूसर की मदद करे से दोस्ती मजबूत होला और समाज में प्रेम बढ़ेला। तो तू भी दोस्ती कर बता चिड़ै और तितली की दोस्ती करिया, जैसे लोग की दोस्ती गहरा रहल तू भी ऐसा दोस्ती करिया। और ऐसे में सुनब जो अगला गाना कुणाल बाबूलाल की आवाज़ में,
और है गीतवा चली मिदुन के नाम राजेश शालिनी हिरू करपति विशाल दुगो बेटी और सब हिरू परिवार

यादना फरजीन, फिर हेगी चरी रानी जयसूरी, फिर माला मोहन, रवि बंगारू है गे तुहर खातिर, तुहर पत्नी करुणा, तुहर बेटा रयान, और हाँ रानी जयसूरी भोजपुरी कार्यक्रम है का हो कई बजे से बोलते भोजपुरी तरका तो नहीं सुनते वो बिपिन भी है गीत तुहर खातिर, साथ में अनिता लाल जी है गीत तुहर खातिर, सब लाल जी परिवार और हितू परिवार के नाम मोदालबे से, बीर भाई नमस्ते, भूषण हेलो, कुणाल हिरीलाल नमस्ते, बहुत बहुत बधाई। हाँ और कुणाल हिरीलाल की बात करती से जलसा के रात रहल औसिनाल में लिवेंसिस सेप्टाम के सामने के, और तो लोग शो एकदम जबरदस्त सर, बधाई हो, बधाई, कंग्रेचुलेशंस कुणाल हिरीलाल एंड द होल टीम फॉर जलसा के रात बा द फर्स्ट लाइव ग्रैंड कंसर्ट इन भोजपुरी। से कुणाल हिरीलाल को बहुत बहुत धन्यवाद देवते जा कि भोजपुरी भाषा के आज भी जीवित रख रहे हैं, वन जय हो प्रभु। फिर चलावते इस मदी हा नूरा खातिर, और ओके नूरा और राइट नमस्ते भाई, ओके विकी है गीत और दोस्त साजन और मिसेस शिमला के नाम देवीना राम बिरेच है गीत और नाम किशोर मंतु जेना हेलो है गीत पवन सिंह के नाम और उषा कौर संगीत विद्यालय हम के साथ जुड़ल हवन, थैंक यू जी उषा जी, उषा कौर जी गीत और नाम मोटर विद्यालय के सब स्टूडेंट्स के नाम, विनु रुचाल है गीत और नाम, देव्या है गीत और नाम चलावते इस गीतवा के शिक्षक है निशा निशा निशा निशा निशा लगेला है गीत चली साइलेंट के ओर मारी ता कर मौसी रेणुका खातिर, और विशाल विशेषर ओकर पत्नी ओकर बेटा और सब विशेषर परिवार के लिए जो लाफलोगा रहे हैं सर, साथ में है गीत चली देवे नदी वाला जो वैंकूवर कनाडा में बा हमने के प्यार से सुना था वन, और जितना कोई समय हमने सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर, और साथ में जे को हमने के देखा था रेडियो एमबीसी रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर, तय गीत तो लोग नाम निशा निशा निशा निशा लगेला अब नहीं पिया अब गे मामा कब नहीं पिया, चले एक साथ सुने

0: हाँ अब नहीं पिया गे मामा कबो नहीं पिया इतने सब कोई बोले रहा पर के अमल में बात आने रहा ये सोच रहा बात अभी कुछ संगतियाँ बारायन पे हेलो
1: हेलो नमस्ते प्रताप सिंह जी
0: के हवा जा
1: आशा जानू करते
0: जी हाँ थोड़ा स्वागत बा और भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में थोड़ा स्वागत बा
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: और आज तू हमने के कौन सी बोलबा
1: सबसे पहला जितना हमी के बड़ा दिन हवन जो उन सब के सादर प्रणाम और आप सब अभी भोजपुरी तड़का सुना था वजह तो आप सब के भी सादर सादर नमस्ते तो चकाचक बढ़िया भोजपुरी गीत सुनते सुनते प्रताप जी हमारे दिल में ख्याल दिला
0: आज बोला
1: तो ख्याल ये बा कि जैसे आप सभी जाने लगे अभी गोविंदन चलता वेंकटेश्वर चलता अभी तो छोरा
0: गोविंदन पूजा वेंकटेश्वर फिर पितृपक्ष और दुर्गा पूजा भी हुई
1: अभी तो थोड़ा दिन में दुर्गा पूजा शुरू हो जाए तो सोचा तो नहीं एगो रेसिपी चलो संगीत शेयर करो
0: हाँ जरूर बोला व्यंजन खाना खजाना
1: खाना खजाना तो आज के जो रेसिपी आप सबसे शेयर करब वो है बेसन के लड्डू
0: बेसन के लड्डू ये प्रसाद के रूप में गोविंदन वेंकटेश्वर बजाय दुर्गा माँ के जो पूजा हुई था सकब से चढ़ाई न
1: सकब जब भोग लगाए दे
0: आरे बोला बोला कैसे पकाए
1: वैसे हाय बेसन के लड्डू जो बोले जाते हैं आप सब
0: कितना व्यक्ति के है कितना व्यक्ति
1: ये जब ओकर एगो फुल पैकेट के तैयार करबा तो 50 को लड्डू सकी बने उमे
0: 50 को लड्डू के
1: 50 को लड्डू आप ये त्योहार पर निर्भर बाजे खोजा तो छोरे पका के तो आधावे पैकेट के पकेबा तो एगो 20-25 को ले लड्डू तोहरा मिल जाए तो सबसे पहले तो आप सबसे ये बोला जैसे है बेसन के लड्डू आ ये तो ढेर कोई जाने लग जा सब कोई अपन अपन तरीका से बनावे लग जा तो हम मेन आगे हमारे माता जी जिन तरीका से बनावे लन हर तरीका वा आप सब से शेयर करब कहे के जे कोई बड़े लन जो लोग के लड्डू तले गीला हो जाला
0: हाँ कब कब वो गीला हो जाला लड्डू सच्चे बोले तो
1: और आमियर हो जाला गीला हो जाला तो हमें जो छोटा छोटा तरह टिप्स बोलब न मैं वो तो हर लड्डू ना गीला हो न आमियर लगी
0: बोला
1: तो सबसे पहले आवा सामग्री के में तो सामग्री में लिया बेसन और दूध चीनी
0: दूध कितना एगो कप दूध
1: नहीं नहीं दूध खाली दो चम्मच एक चम्मच से दो चम्मच तो बेसन दूध चीनी कोको काफे पिसल हुआ इलायची पिसल हुआ बादाम और लवण और तेल क्षमा करियो तो सबसे पहले आपका कर सबसे पहला तो अपन चाशनी तैयार कर लिया जा जैसे एक देख से मैं चाशन दो कप पानी
0: चाशनी मतलब सिरो ना
1: सिरो तो दो कप पानी ले बजा एक कप चीनी डाल दिया जा उसमें तो ओके खूब दबके दिया जा तो हमारे माता जी क्या करे लन और पहला स्टेप है ये है सिवा जब पानी कर पकवा तो वो मैं तेल से पिसल हुआ इलायची और लावानी डाल दिया तो मैं हाउ जब सिवा दुधवा मैं डाल के बन बजा अपन लड्डू कर बजा तो एक जोली बढ़िया खुशबू आई तब जब तोहर चाशनी तैयार हो जाए तब अपन घास बुटा के ओके छोड़ दिया ठंडा हो के पकवा के तब एगो कढ़ाई लिया तो जाने जा कुछ मेरा ना ढेर कोई बेसन के घुए नहीं करे रंजा तो हमें लाके हमें

0: αντάκουγε γιου δάλκε, πιθανά και γκριέκα λιράτα. Καρέ και ουσέ γκουμπέρια κουσβουάβιλα. Αλ είσαι ο καρτζόν εγώ καρβά τενι αμέρελα ουνέρε λιράτα. Ή κάτι πιθανά και αμή τενι μπούντι λιράτα. Τα καρχάι με αντάκουγε μπισαν δάλκε, ο κελίμαν σε μπούντα, παριάντα κιά, μπούντε σε με λεγατά τελεγιά. Καρέ και ο καρχάι με σατήρα.
1: Αν τεμι κολλήνε η
0: Δεν είναι κολλή, το και λέγατε τα λέγια. Τα πτωλέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα λέτα, τα Τι με τα τσάχνει τα γιάρκα λεβα ο με τα σινή μπάτε Παρ δε κοντά μητά τα ο με δούκου γέρε σε κοινή δάλια τζα Αρ δε δέρ μητά νε κοντά τα μπέσανό με σινή νέ δάλια τζα Αρου κοκο γαπέ χαϊσαπ δάλκε τα σουν λαβάνι δάλκε Αρ χαλκά πιλάραν δάλκε ο και κουπ λιμέν σε σανιά τζα πάνι δάλκε Κοπλήμα σε σαν δε μπαδε πατλά γουλιαν μπανά δε μπα, ο λαπατουά δε, δε μπαν και λαπατά και γο γουλ μπανά δε μπα. Τα φτάχαια απαν καρχάι. Καρχάι με τελ γραμ καρχιά. Δε μπα τέλε σενζολί σε τελά γραμ χόγκαρ. Τα ο και τιμά καρδιά απαν γάς και τιμά καρκέ. Τα απαν γιον μπισαν μπατόρα τρά καρκέ, ο και μπουνδιά τσανιά δε. तब छान के तदे को क्या करे रंजा जब बुंदिया छाना जाला तब जैसे सिखवा में डाल देवे रंजा तब ही ऐसे नहीं करी राजा जैसे जैसे तो हर बुंदिया छाना था ओके गो दूसरा देखो सेनी में गो बटर में निकल लीजिए जब तो हर सब बुंदिया छाना बिसन के बुंदिया छाना जाए तैयार हो जाए तब ओके गो बटर में सेनी में निकाल देना तनी कुने को ठंडा हो जाए तो के हाथ पे से ओके खूब तनी खांसी करते बा हाथ पे से
1: हाथ पे से
0: अभी हाँ अभी सी होने डल गया ओके हाथ पे से खूब खांसी कर लिया जाओ खूब लिमन से खांसी कर दे बा जब खूब पिचली ऐसा हो जाए खांसी कर दे बा जब तब ऊपर से ऑफ़ सी हुआ डाल के ओके ऐसी कर लिया जाओ ओके लड्डू के गोल गोल
1: गोल गोल आकार के
0: गोल गोल आकार के तजिक बस सुखल बात है तजिम दस्ती डाल दे बस वो आज बार तनी अच्छा बा तई तो हर जब जैसे जैसे अपन लड्डू बने बा तो थोड़ा भुजाए तो अपन शिवो डाल ले जाए लड्डू आप बने ले जाए जब सब लड्डू बन जाए तो डेकोरेशन खातिर सब ऊपर से तनी सुने गोपे लिमन से चिरिक दे और तो हर इच्छा अनुसार चाहबा जाता हर एगो लड्डू में एक एगो किशमिश रिजर्विंग डाल दे बजा
1: देखो ये लड्डू बना के फ्रिज में रख दे वेन से इन ये तो ले जे तो ओ काहे
0: नहीं हमें फ्रिज में नहीं डाली
1: ला जरूरी नहीं है डाली की
0: नहीं जरूरी नहीं है डाली के पर हां ये बात सही बात जब पर तो लड्डू तैयार हो गया तो अब एक दिन में तरह सब सब लड्डू खा ले ना तब तक बाद में
1: हम तक दिन सब सब लड्डू खा ले
0: बाद में डाल दे के अपन भोग लगा के देवी माँ के अपन भगवान के भोग लगा के प्रसाद बांट देने के बाद सगो बॉन्ड दे बजा तो फिर बाकी जो बॉन्ड फ्रिजर में डाल दे
1: तो कितना दिन रहेगा जो बेसन के लड्डू फ्रिजर में रख बनी चाहिए मैं लेकिन जान लेगी मैं रखा ला तो कितना दिन रहेगा
0: तो बाकी वो भुंजाल बना घी में तो गाते नहीं हुई वो लगभग एगो एगो एक समय रही
1: हम बोली तो बोला एक बार इसलिए नहीं
0: लड्डू
1: ऐसा और देवी माँ के चढ़ेरा गोविंदन में कृष्ण भगवान के वेंकटेश्वर भगवान के भी चढ़ेरा भोग ना बहुत बहुत धन्यवाद आशा जानू और कौन गीत तुरा मन करता सुने की बोला था
0: मीरा मोहन के चतनिया
1: मीरा मोहन क्या गीतो के खातिर मांगते
0: हुआ गीतो हम मांगब अपन माता जी कुमारी खातिर और हमारे भांजा लोग हवन ऋषभ और

0: Chupam, हमारे दीदी हवन आस्ते बुनई हवन राज और सभी जानू परिवार के समा परिवार और आप सभी श्रोतालों के एक दुगो हमारे दोस्त हवन जय धीरज नंदिनी जेनिता और जितना भी दोस्त अभी
1: अरे बहुत बहुत है आशा जी। तो इतना के जोड़ी से रसद दिला और अभी जैसे पूजा हुआ था गोविंदन पूजा वेंकटेश्वरा अभी पितृ पक्ष और दुर्गा पूजा हुई था आशा करते सब भक्त लोग है बेसन के लड्डू भगवान के चरण जाए। बहुत धन्यवाद आशा जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: प्रताप जी और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि चलेगी तो सुनब जा आशा जानू के पसंद पर मीरा मोहन के गावल गीत चटनिया और रहेगी चली सब श्रोता लोग के नाम जो उनकी सुनता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। है गीत चली रुंची के नाम सुबी जियाज हुसैन उमा हीरा और है गीत अजय सिंह दौलत तरन क्वीनी और यश के नाम चले एक साथ सुना गीत और गीत इंदिरा के नाम भी।

चचन्या मीरा मोहन की गावल गीत और हमने की मॉरिशन की फेवरेट डिश के सब कोई कुछ चटनी खाए के पीमा के चटनी पोलामन के चटनी कोतमीरी के और कुछ के कोको के चटनी पोलामन के चटनी लामो के चटनी हरी धनिया के चटनी पीपंगाई के लापो के चटनी बैगन के चटनी चटनी नहीं रही था कैसे आपसे बोला था रात के पौने दस बजे तक तू सुन तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर अजय प्रताप सिंह के साथ प्रोग्राम हो चुकी थी कैसे इनके साथ देती रही और संग जाए लोग वास्तव में दिग्वत लिंदी से लेके दिमास ले हमने जुन हर विभिन्न देवतालों के व्रत खिला सा हमने के हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार लिंदी के जुन हर सोमवार के शिव भगवान के व्रत रखल जा रहा और मंगलवार के हनुमान जी के बुधवार के गणेश भगवान के गुरुवार के विष्णु भगवान के सुख के माता लक्ष्मी के सामदी के शनि देव भगवान के और रविवार के सूर्य देव भगवान के पूजा करी जा व्रत भी रखी जा और ढेर कोई सातों दिन व्रत रखेलन सा अलग अलग भगवान के तलेंदी के शिव के पूजा कर व्रत रखबत सुख शांति और मनोकामना सिद्ध होला मंगलवार के हनुमान के व्रत धारण कर साहस और शक्ति मिलेला बुधवार के गणेश के पूजा कर बुद्धि सिद्धि और विद्या प्राप्त कर गुरुवार के विष्णु भगवान के व्रत रखब सुख समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हो सब काम मंगलमय हो सुख के दिन अगर माँ लक्ष्मी के व्रत रखब तो घर में धन संपत्ति आवेला खुशहाली रहेला शनिवार के हनुमान और शनि की पूजा होला इकर से हमने के जितना ग्रह सब दूर होला और दिमास के सूर्य देव की पूजा करी जा सकर व्रत रखी जा सकर से स्वास्थ्य तेज और समृद्धि प्राप्त करी जा सक बस जो है ना पूजा पाठ करके पूजा पाठ कर पा तो जितना ग्रह पा सब दूर होला चल अगला गीत समझा मुकेश श्री की आवाज में मुनि एल्बम से लिया गीत है गीत चरावती से खासम खास नतराज रामकोरण के नाम अपने विल्फों से हवन उकर माता जी पिताजी उकर बहन उकर भाई और सब रामकोरण परिवार के नाम शोभा हवन पॉम्पले मुझसे हेलो शोभा जी कैसी समाचार सब ठीक ठाक है गीत चली विकास नारायण चिबुग लोंग राजा स्टीव राजमन्ना होरीलाल दिनू प्रवीण भैरव श्याम मंगल नानो सुदेश जसवा और उकर माता जी राजकुमारी के नाम और है गीत चली सुबी के नाम जियाज हुसैन खुशी सुदेवी हमके साथ देवत हवन प्रीतमान हेलो नमस्ते है गीत और नाम तारावंती राजा राम सुष्मिता श्रेष्ठा मीला रामा और तारावंती करुणा और कुलदीप कारवेर उनके साथ देवत हवन टिकटॉक पर हमने की लिखा हवन और सुनत हवन जाओ रेडियो पर जितना कोई हमने की रात की वक़्त सुनता जितना कोई नाइट शिफ्ट में लगल हवन सा है गीत तो लोग के नाम भी है गीत चली रवि बंगारू का सब परिवार के नाम सागाती रिव्य जी पर से हवन रिसोल भी हवन वैसे टीना दीना प्रतिमा बानु आपाया वीरापेन और रोसाई के नाम और है गीत चली MGI कॉलेज मुगा के एक्स टीचर्स के नाम मिसेस बंधन मिसेस रघुनंदन मिसेस रघुबर मिसेस ओकल मिसेस झमन गुरुजी कितारत और गुरुजी रामफल के नाम तो चला इस सब लोगन के नाम अकरा गीत चलाओ अब जा मुकेश चेरी की आवाज़ में और एक गीत करुणा की ओर से करपति सत्यन का तीर चली बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना कोई अभी उनके टिकटॉक पर फॉलो कराता है और रेडियो MBC पर हमने की सुना था वंजा है गीत तो लोग के नाम

0: अभी तो सुनता हुआ भोजपुर का प्रोग्राम जो चले हैं रोज के लेंदी से के दिमास ले दिमास के रात ले रोज रात के 9 बजे से 11 बजे ले लेंदी से के दिमास से रेडियो मॉर्चस रेडियो मनोरंजन पर रात के 9 बजे से 11 बजे ले अगला गीत अजब तोरे लीला बहुत ही प्यारासन गाना जो चली सब रॉपर एसएसएस के स्टूडेंट्स और टीचर के नाम साथ में है गीत चली मिसेस नॉक को किया उसे सेंटो बैंस एस एस के सब टीचर स्टूडेंट्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम भी नीता हमने के साथ हुआ तो सिबन परिवार है गीत तो हो नाम और है गीत चली मनोज महातो खातिर गौरंगा हे कैसे हो प्रभु सब ठीक ठाक जय हो प्रभु राधे राधे अगला गीत और खातिर और करीम बोकस भाई कैसे बा भाई आबू हवन बाकुआ से भाई आबू गीत और खातिर तोहर घरोली तोहर लड़का और सब आबू परिवार के नाम और बेशक यहाँ पर हैं सब नहीं तो लोग के साथ देवते ही सा और रात के 11 बजे रे तो लोग संगे संगे गमट कर अब सर गमट करे के चेहरा ना हाँ तभी गमट हुआ था एमबीसी रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर तो चला सुने अगला गीत ज्वाला बिजादन की आवाज़ में अजब तोहर लीला भगवान की लीला परम्पार जो भगवान चाहेला उही होला
1: अजब

0: संगत्यारो घर मिला लाई बकत रात के ठीक 10 बजे बाद तू सुनते हो एमबीसी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक
2: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस
3: और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
4: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा
0: रात के 10:02 होता तू सुनते हो एमबीसी रेडियो मॉरिशस और एमबीसी रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस 790 किलोहर्ट्ज़ पर एएम मोड पर और रेडियो मनोरंजन एफएम मोड पर चलता 94.6 और 98.2 FM पर और सब भाई के इंटरनेट के जरिए सुने टाइप करिए लिसन एमबीसी रेडियो मॉरिशस या एमबीसी रेडियो मनोरंजन लाइव रात के 10:03 हम जाइना सा ढेर कोई हमने के साथ देवत होना भी टिकटॉक पर भी हमने के देखा था वो और बेशक हमने के सुना था वो और अगला गीत हेलो हेलो राजकमल चिंतामणि गीत आ गई ले वो और संग त्यागा लाइन पे कॉल से मिल अब जा हेलो
5: हेलो
0: नमस्ते
5: नमस्ते
0: प्रेमिला जी कैसे समाचार
5: हाँ समाचार अच्छा
0: ला सब अच्छा ना
5: थोड़ा ला
0: हाँ बोला आज के दिन कैसे बीता
5: अच्छे से बीता आज के दिन
0: आली अगला गीत के का खातिर
5: गीत है वो दलिया शिवजी मानेला
0: कौन गीत था
5: शिवजी न मानेला
0: के गई लग बजाने ला
5: पूर्णिमा
0: फोकिरा एगो भोजपुरी गीत है
5: और शायद आर कोई गई ले मुझे नहीं याद
0: मामला शिव जी न मानेला
5: नहीं नहीं बरसता ना हाँ
0: हाँ हाँ तो शिव जी के गीत बा कुनार ही लाल के आवाज में चला दियो अब सगर नहीं मिलते देखा तो मऊ वाकवा के रिजर्वा कैसे सुखल जाता ना बाप रे बाप 20% खाली रह गए बाप काट जी पानी बरसे कि नहीं पर प्रार्थना के जैसे पानी बरसे के चेहरा ढेर पूजा पाठ आज जहाँ कलयुग में चला नहीं सर दिग्ब सब चीज ग्रम बग्रम तो पूजा पाठ जब करे सब ग्रह गठित हो भगवान हमकी देश में पानी बरसा है हाँ देख रहा है बोली देताई में ना लेन दे के शिव अभिषेक होला हाँ ढेर कोई रहे जो नदमीता लोग भर सप्ताह कायम रहे अच्छा भी है डॉक्टर भी बोले ला जितना सब्जी फल खेब तो लासौते अच्छा सब मरादी से दूर रह

0: हमने तो हाँ हम हो गए चार चार पांच महीना अभी तो विशिष्ट आये हुए इनसे पूजा पाठ हुआ था
1: अभी तो समय में कहाँ सब
0: नहीं नहीं देखा हम कोई की मना नहीं करी रहा जिके रुचि ला उखा ला तो हमने के पर ढेर कोई खुशी से हला लेगी खाए की तो अच्छा हला सोते खाते पूजा पाठ कर बत और सुनते ये सब शाकाहारी भोजन सब ना तो दस्ती थी रहेला हाँ कि नहीं हाँ रोज के चेला एगो फल खाए की डॉक्टर बोले रोज के एगो फल चेला खाए की तो अगला गीत तोहर खातिर और तोहर सब संगत परिवार वो भजन से भजन से पहले गीत क्लास से होगल बा राजकुमार चिंतामणि के गीतवा के बाद चला दे सर ठीक बा
1: भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जब
0: वर्षा होई तब सभी कोई की जल मिली प्रेमिला जी तो हम के गुबार बताओ तो हर जमाना में दादी नानी लोग हर पर हर परवरी गावत हल अब बा हर परवरी कोई गावेला
1: नहीं नहीं जाना था लेकिन यहां आईली ना तो पंडित जी रलन गुजर गेलन तो उ ले जातलन है नदी गवाई की
0: हमके याद बा जब हम छोटा रही तो दादी नानी चाची लोग सब कोई ढोलक झाड़ करता लेके भर सीमा भगवान के नाम लेते हुए इंद्र भगवान वरुण भगवान के पूजा करते रही सर ताकि पानी बरसे और सच्चे के जब पूजा हो जाता है तो पूजा के एक दो दिन बाद मोटा पानी बरसता है
1: पानी बरसे हमने भी शायद दक्षिण में
0: हम मांग कर अगर माता जी लोग हमने के बुजुर्ग गंजन हवन जा चाची नानी दादी लोग तो जाना तो वो हर परवरी करे तो हर गांव में हर शहर में पूजा करिए जा हर परवरी ताकि पानी बरसे प्रेमिला जी बहुत बहुत धन्यवाद और से बात करके बहुत अच्छा लगा ऐसे में के साथ देती रही शुभ रात्रि हाँ तो जैसे हम बोला था भी आजकल पानी बरसा था थोड़ा बहुत पर जहाँ बरसे के जहाँ गजैबा बा वहाँ नहीं बरसा था माओ बाकवा देखा जैसे दिन ब दिन सुखले जाता है बीस नाल बाकी वह पूछो खाली पानी बहता कैसे हुई तब प्रार्थना करब सर शिव भगवान से गंगा माता से इंद्र वरुण भगवान से कि हे प्रभु हमने के देश हरियाली हरियाली रही पानी बरसी जलाशय में पानी रही तब मैं सकब सर सब लिगी मुगिम लौते पानी नहीं रही तो कैसे हुई बोला था तभी चला सुना जब बाग टू बाग दू गाना अभी गीत क्लास से गुरल राजकमल चिंतामणि के हेलो हेलो और बाद शिव जी के एगो भजन चलाओ अब सर प्रेमिला बहिन जो रवि मंगलक और है गीतन चलाओ अब सर सब संगत आलू के नाम आप हवन जा देविका देविका गीत तोहर खातिर सुनांशी टंकी गीत तोहरों खातिर उदय दनी राम और सब परिवार और जितना को ये भी रात के हमने के सुनता बहुत बहुत प्यार से और विशाल भाई सुनते वन SSU के कर सब टीम विशाल रीना और वीना खातिर भी बैक टू बैक दू गाना हेलो हेलो राजकमल चिंतामणि के और दूसरे का गीत रही एगो शिव भजन कुणाल हेरीलाल की आवाज़ में

संगतारों के हिंदी में कहावत बात दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाली का नाम। तो भगवान जाने ला है कि कर प्ला में कि कर थाली में कितना खा के देखे। और जब भोजन की बात कहे से तो एक दिन में तीन प्रकार के रहेला, एगो है ब्रेकफास्ट, एगो है लंच, एगो है डिनर। और जिन फजीर के ब्रेकफास्ट है ओके बोल जला यू हैव टू ईट लाइक ए किंग। फजीर के वक्त चेहला ज़्यादा मात्रा में खा के और लंच में थोड़ा सुन और रात के थोड़ा सुन। तो हमने क्या कहे ऐसा हमने सब लिखोते करी जैसा। तो हमेशा याद रखे फजीर के जो ब्रेकफास्ट है जो फजीर के जो नाश्ता करी जैसा वो चेहरा बिया गानी थोर प्ला चेहरा बिया रोपली और में रोटी जिब्बे लाजली चाह दूध है सब और एगो फल भी चेहरा और एक बैलेंस डाइट चेहला। और दिन के दौरान जो लंच है जो 12 बजे खाएला सो चाह था सुन लाइट रात के वक्त चाहे और लाइट कह के रात के यानी कि लिखो खिबूजे करेगा तो कहती रात के ढेर खा के नहीं खा के जिस खैया जमी तूफे नहीं हो बा। और बेशक ऐसे में चल सुनो जाए अगला गीत रत्ना पदारत जी हमने के सहयोगी हमने के औजे हवन एम बी सी के रत्ना पदारत साथ में कर संग गए वन मोहम्मद खालिद बंधु आँख मारे रहा। अब के कर से आँख मारा था एक साथ सुनब जा गी चली मिशन क्रॉस रोड लाल माची के रविराज सिन्हा भी चुके और से कर पत्नी स्वयं प्रभा कर बेटा प्रत्यक्ष और ये सब संगत आलोक जो हमने के दिखा था वन सभी टिकटॉक पेज और रेडियो मॉरिशस पर करुणा गीत तोहर खातिर जनिता सबीना इनाया पूजा वर्षा लकी वुमन रमेश करके सुकन निरोमिया माया बाउरी स्नेहा शमीरा जफूर और लिजबेथ शांतल और पूनम भी हम के साथ दे होते हुए ना जितना कोई अभी हमने के टिकटॉक पेज पर देखा था और रेडियो पर सुना था वन सा इन आया है गीत दोनों नाम निकोला पिया भी हमने के साथ था वन स्वीट विशेषर और राइट तो चले एक साथ सुने है प्यारा संगीत आँख मारेरा। अब तू कोई के देख के आँख नहीं मर जाए गीत तो आप बोला था आँख मारे के गीत है मनोरंजन करे खातिर तो कोई के देख के आँख नहीं मर जा वरना जाने ना का हो ना।

0: देख के आंख मारेला अब टिकटॉक पर हुआ तो आंख नहीं मरिया है बहुत ही हंसी मजाक से भरपूर गाना रत्ना पधारा है और कर संगतिया संगे भी गैलंजा बंधु मोहम्मद खालिद हमरा देख देख के आंख मारेला हमरा देख देख के सिटी बजावेला इस गिच्छन के थोरापन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिन याद चला लुई ना ऐसे तो हो देख देख के आंख मारा था नहीं हो बाजने करता है जवानी दीवानी रहे ना और बोले सके है जो हमने के नर तन पहले ही सही बहुत भाग से हमने के है ह्यूमन बॉडी में नलबा है शरीर जो है एगो मंदिर है और हमने की आत्मा जो है और भगवान हमने के तई शरीर के चेला शुद्ध और पवित्र रखे के और बेशक जब हमने के शरीर के हमने के मन के शुद्ध और पवित्र रखब सा तो मन में अच्छा विचार आवेला हो कि नहीं तो है शरीर पाए खातिर कितना जन्म पड़ल बा हमने के लिए के ये प्रोमेफा नहीं है कि तुहर जन्म और भाई धरती पर है कितना बार तू जन्म ले लिया हुआ कबो जानवर के रूप में कबो इंसेक्ट के रूप में तो इस जन्म में तू नर तन पहले हुआ मनुष्य के रूप में आला हुआ तो अच्छा काम करिया ताकि अंत में हमने के मोक्ष मिली मुक्ति मिली तो मोक्ष और मुक्ति कैसे मिलेगा जब कर्म ज्ञान और भक्ति ये तीनों जब हमने के साथ रहा तो हमने के मुक्ति मिलेगा अभी को संगत या बलाइन बेकर से मिला जा हेलो
1: हेलो प्रताप जी नमस्ते
0: नमस्ते के हवा जा
1: हाँ मनु हाई रोजबे से
0: हाँ मनु थोड़ा स्वागत बा बोला
1: सब ठीक ठाक बा
0: एकदम चकाचक हाँ
1: नौ बजे से सुना था
0: हाँ
1: तनी बोली हम कहे ना हम तनी एगो गीत मांग लेला
0: हाँ बोला बोला कौन गीत
1: सुन बा गीत आप के मन से बात है सुने के कलकत्ता से खुलल जहाज ये आज नहीं सक बहुत अकार
0: काम नहीं नहीं नहीं बाकी गीत अच्छा लगा
1: था कलकत्ता से खुलल जहाज हमारे पांच गो बहन के हमने चार गो बहन हुई पांच गो बहन है सा चार गो बहन तो बाबा बसंती देवी और माला माला कापू जी हमारे तीन गो भाई बा राजन राजेश राकेश तीन गो भाई भौजी हवन अब सब फैमिली हमने गंगा फैमिली मगन फैमिली सबको यहाँ सा गीतवा हमके कया से मंगल रात सुने के जानी नहीं सुना था ना हम बोली जानी मांग ले रहे
0: कलकत्ता से छूटल दहाज पूर्णिमा फकीरा
1: हाँ
0: चला देव अब सर

0: फिक्र ना
1: करिए। नहीं सुनने हाय अरे शुभ रात्रि।
0: अरे शुभ रात्रि
1: तो प्रताप जी बहुत धन्यवाद और आई अच्छी धन्यवाद बोला था जानू के।
0: हाँ देखा कैसे जोड़ी कैसे
1: दिला जोड़ी से इसके कर लाख से माहम हम लिख नहीं भुंजी लासन ना नहीं जाना सा कि भुंजे के चैला।
0: हाँ चैला भुंजे के नहीं नहीं कंचारे तो पेट दुखाए।
1: हाँ तब भुंजाल का सुंधा लगी।
0: अब सबको अपन अपन फासों में अपन तरीका से बनावे
1: में पकावेला। हाँ नहीं से मजा बोलन भुंजे के तो सोचा था भुंजाल का जब पकाइबा तो सुंधा लगी जैसे।
0: हाँ हाँ हाँ हम तो सुनी लड्डू के बाद मुँह में पानी
1: सारा से ये करे
0: अन्य मखाते लड्डू बेसन के लड्डू अन्य
1: बहुत धन्यवाद आपको लड़का लोग के सब कोई के
0: आली बहुत धन्यवाद
1: पक में है सब भगवान की चो से सब निमन से हो जाए।
0: ओके
1: हम इसे पूर्वज लोग के सब कोई के।
0: हाँ अभी पिजर पक में भूले नहीं पानी छेना गिरा के।
1: हाँ तो हर एक बात बोला
0: बोला बोला
1: हाय जब पहले पिजर पक रहे बड़ी डर लगी बुझाई सब कोई बोले नहीं बोले तो चिराग नहीं बारे के है है नहीं करे के हम हाँ मुझे आज ही सोचा था आज ही सोचा था ए पिटर पग बना को मुझे नहीं बुझाता पहले को मुझे हमने के जब मामा लोग के जमाना रहा हमने के शादी नहीं तो मुझे ऐसे डर ये देखे सब पिटर पग बने सब पिटर
0: नहीं हो सब अपन चिराग वो पूजा करे।
1: हाँ तो हम भी जान ला अपन सब नॉर्मल कर जा सब बुझे भी नहीं करे ला
0: देखा भी गोविंदन के पूजा होता।
1: हाँ गोविंदन
0: अभी वेंकटेश्वरा होता तो पूजा नहीं करते। हाँ
1: हाँ तो हम भी बुझे ला चुहल गर लगे ला प्रताप जी ऐसे भी हला पिटर पग में है सब माजे को दूसरे करते अच्छी बात को माजे नहीं
0: हाँ तो हमने के पिटर लोग के जन चल गए
1: ना पिटर लोग हमने के सहायता
0: अलग क्या पुलों का मिकी प्रोटेजियम की रक्षा करेंगे सर। हाँ हाँ
1: हमरे मामा हवन पापा हवन
0: अभी कोई पिंड दे कोई पिंड दे वेला ना पिंड करेंगे सर पूजा होला
1: पिंडा हाँ पिंडा
0: हाँ तो साक्षी ना पन अपन फास्ट में करेंगे पूजा
1: हमारे पति वो हवन ता सब सब कोई के सब परिवार मौसी को हवन ता उनका लड़का नहीं रहा उखरो के सब कोई पानी उझिल दे रहा सा लोगों के जहाँ रहे हैं सा
0: ओके आत्मा शांति रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम इससे बात कर लो
1: बहुत सब परिवार लोग
0: बहुत धन्यवाद चाचे के। हाँ तो पिता पक में भी चिराग भारी रास अपन सौंदर उदर बार के पूजा कर रहा पर अपन बड़ा आदमी के थोड़ा सा पानी जब स्नान कर दे व पूजा करते तो पानी गिरा दिया हमने के पूर्वज लोग के नाम पे। कलकत्ता से छूटल दहाज हाँ तभी बैक टू बैक दो गाना चलिए गो नर्तन पाके मुकेश रामेश्वर के गीत और दूसरा रही फुकीरा पूर्णिमा के कलकत्ता से छूटल दहाज चल एक साथ सुना बैक टू बैक दो गाना

खैर के शादी महिला से ये को पर्सनल चॉइस है कोई पर जबरदस्ती नहीं सकता करे कोई की ओब्लिजे नहीं सकता करे शादी करेंगे अगर एक व्यक्ति खुशी रह रहा सेरी बातें रहे के खुशी रह रहा अकेले रहे कि तो ओब्लिजे नहीं करिया पर तू देखा तो अच्छी लड़का बड़ा हो गलबा शादी की उम्र हो गलबा और वो चाहता शादी करे के चाहे तो और बेटा हो या बेटी हो तो ओकर पसंद के छोकरा या छोकरी से शादी कराई बात अच्छा रही आगे के ज़माना में लिखा नहीं कि जो माँ बाप डिसीडे करी लड़का ओकर से आगे रोहा होता हमने बोलते नहीं नहीं बोला था आगे के ज़माना में माँ बाप लोग जो छोकरा खाती छोकरी देखे या छोकरी खाती छोकरा देखे तकसिप्ते होता लंसर तो सब आगे के ज़माना रहा आज के ज़माना बदला था आजकल पुरुष अस्ते दिनों इजके होन सर तो लोग के दुआ बा लोग के हक बा अपन श्वास से एक पार्टनर चुने के देखकर मैं जोर जबरदस्ती नहीं बाए अब जो आदमी नहीं खोजता शादी करे के लोग कहते फो बा तो ओब्लिजे नहीं करिया जब कोई के ओब्लिजे कर बस शादी करे के और बाद में शादी टूट जाए तलाक हो जाए तो आदमी दिन रात हो रहा गाड़ी दे यही बात स्वाभाविक है ये खातिर कोई के ओब्लिजे नहीं करे के है पर अगर देखा तो कि लड़का खोजा था कोई की खुशी होगा कि यूनिवर्सिटी जाता कि काम करता अब तो

ता कोन छोकरी खुशी वा कोन तो बेटी को के खुशी गलबा ता जरूर परिवार के चेहरा मिले के और जब सब ठीक ठाक चली ता सगबा पर निकाह के शादी करे और एगो माँ बाप के जो सबसे बड़ा त्राका है कि ओकर बाद ओकर लड़का के की देखी ये माँ बाप के सबसे बड़ा त्राका है। माँ बाप चाहे लगे लोग जिंदा में अपन लड़का के शादी कर दिलन सा कन्यादान कर दिलन सा तो जान तो उनसे कि काल लोग नहीं भी रहे हंसा औंक मुन दिए हंसा तो कोई बा वो लोग के लड़का के देखे के पर लड़का लोग ये बात के नहीं समझेला वो लोग सोचे लन सा माँ बाप वो लोग के फोर्स से करा था शादी करे के तो हम बोलते एगो पर्सनल चॉइस है ये सब कोई के चेहरा अपन पासों में देखेगा। तू देखा तो सगबा कोई संगे रहे जीवन भर शादी जो है दू जना के जो है एक साथ रहे के पूरा जीवन भर सुख दुख में चेहरा साथ दे के अब देखा तो वह सकत वह सुख दुख में साथ दे तो शादी करिए अब जो नहीं सकत वह सुख दुख में साथ दे तभी तो सीरी बातें रही है इत लोग के पसीन है। तो जरा भी सुनब जाए शादी पर होगी दुल्हन के दादी शोभा रामचंद फकीर गीतवा गई हवन बहुत बहुत प्यार से गीत चलाते विशाल मंडप खातिर और पत्नी और बेटी आप रहेलन इटली रंभा हवन स्विट्जरलैंड में पर तीन गो बेटी कर घरोला और चंदन और कर पत्नी प्रिया चिंताराम माता जी इंदिरा चिंताराम सलोनी अजय पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया में बाल गोपाल है गीत और खातिर अंजल प्रमिला शर्मी है गीत तोरो नाम चाहिए बहुत बहुत प्यार के साथ शेरा खामेन और विद्यानी सिचन हमने के साथ देवत हवन विद्या नाइक को भी और तो चलो जितना कोई हमने के टिकटॉक पेज पर दिखा था और जितना कोई रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर हमने की सुना था गीत और खातिर श्रीमान और श्रीमती दुखू जी है गीत और खातिर और है गीत छावत ऐसा वीना के अवसर कर घरोला और कर तीन को बेटा और एगो वीना हमने भी टिकटॉक पर गीत और नाम वीना जी दुल्हन की दादी चल अभी तो हर नाचब सा गावब सा कमरवा डुलावब सा अली संगे संगे नाचब सा है अली चला

एकदम ही बढ़िया गीत रहा सब कोई नाचा था गावा था झूमा था जी हाँ रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन टिकटॉक पेज पर सुमाया जी हाँ पल्लवी इंग्लैंड से सुना था वन ब्रतन प्रोग्राम एकदम जोड़ी बात है पल्लवी गीत और खातिर रजनी है गीत और बड़का मामा तोहर सब परिवार के नाम सुनी थी होला से है गीत तोहरो नाम शेरा रामेन मिंता भी बहुत नचन गीतों पर रजनी गीत और खाते तोहर भाई जुन रहला मिल रोज तोहर बड़का मामा और सब कर पतोलो खातिर और है गीत चलाओ अब सा अगला गीत शार खातिर हेलो शार नमस्ते और भूल जा सके जीवन में कबू कबू चमत्कार होला मेघाक होला है? हम डिजा देख रहे हैं कि बहुत से ऐसा केस बा जहाँ पर जोन कपल लोग बा लोग कोशिश करते करते थक गए से कि लड़का नहीं होता डॉक्टर भी कबू बोल देवेला कि अब लड़का नहीं हो पर अचानक दिख बा एक कुछ हो महिला माँ बनकर और एगो लड़का हो गए कबू कबू देख बा कि कोनो व्यक्ति ढेर बीमार रहेला डॉक्टर बोल देवेला कि अभी व्यक्ति नहीं जी पर वो व्यक्ति जी जाला त चमत्कार होला अगर तुहर मन में भक्ति बा श्रद्धा बा तू विश्वास करत हो भगवान पर माने ला तेगो परम शक्ति है भगवान कौन सी एगो शक्ति एगो लालिमय है एगो रोशनी है जो हमेशा हमने के साथ देवेला और जीवन में चमत्कार होवेला है चेहला माने के मन बत तब जन्ब है तो चमत्कार जिन होला भगवान की कृपा से चमत्कार होला कभी कभी जब सब दरवाज़ा बंद हो जाला तो वो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा भगवान थोड़ा अकेले नहीं छोड़ेगा दुख मिलेगा सबके ज़िंदगी में पर उस दुख के सामना करके भगवान ने की शक्ति भी देवेला तो है गीत अगला गीत में यही बोला जाता है कि थोड़ा जी ले बंधु मोहम्मद भाई की तो गेले वन बहुत बहुत प्यार के साथ गीत चली किमी शर्मिला और शार खातिर वुतन के सब मोलू परिवार के नाम फिर कविता तंडाल के साथ देवा था वन और विदेश में भी ढेर कोई हमने के फॉलो करा था इंटरनेट के जरिए टिकटॉक पेज पर देखा था वह रेडियो पर सुना था वह यूजर सेकंड सी स्कैन सुनका तो गीत तोरों खातिर तो हर सब परिवार के नाम और किमी भी हमने के साथ देवा था वन और जितना कोई नींद नहीं लगा था हमने के साथ देवा था वह रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर तो चला थोड़ा सुन कमरवा डोला हुआ नाच थोड़ा झीली

आ हमके जल्दी से दे दे चुम्मा ये हम नहीं बोला था नहीं ये अविनाश रामदायन के गावल गीत है जल्दी से दे दे चुम्मा इस गीत के संग भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था रात के 9 बजे से अभी भी हमके साथ दिला टिकटॉक पर हमने के देख ला मेरे साथ विदा कर ला कद जगह विद जगह विद चैंक पर टेलीफोन नहीं कर ला और अपन पसंदीदा गीत मांग ला जा बहुत बहुत धन्यवाद तो लोग फोन कॉल्स और SMS खातिर कुछ ही मिनट में रात की 11 बज जाए 11 बजे सुन बच्चा अगले प्रोग्राम सुनहरे पल और बेशक सुनहरे पल प्रोग्राम से नीतू शाह के साथ और 11 से 12 बजे के बीच और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्मी तराने हमने के तलों की मुलाकात हुई अब कल बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे ले यही समय रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और लाइव टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस पर तो कल तक हमने के इजाजत दे और जय प्रताप सिंह की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय बाय लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। प्रणाम श्रोताओ, आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्वागत है आप सभी का रेडियो मॉरिशस की लहरों पर एक बार फिर। यही तो है कार्यक्रम आपका मनपसंद सुनहरे पल। आज वापस आपको ले चले हैं 60s एंड 70s की दुनिया में, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे अनगिनत हजारों गाने हैं। तो एक बार फिर उन्हीं यादों में हम वापस चले हैं, उन्हीं गलियों में वापस आपको भी ले चले हैं। तो हिंदी सिनेमा के इतिहास में 1960s और 70s का दौर एक ऐसा सुन

सुनहरा दौर था, जिसे हम बड़े प्यार से बॉलीवुड का गोल्डन एरा कहते हैं, है ना? ये वो जमाना था जब फिल्मों के गीत सिर्फ कहानी का एक हिस्सा नहीं होते थे, बल्कि कहानी के रूह बन जाते थे। हर गीत में एक एहसास था, एक कहानी थी, एक जज्बा था, और सबसे बढ़कर दिल को छू लेने वाली एक सच्चाई।

60s और 70s के गानों को याद करते ही हमारे जहन में लता जी की मधुर आवाज, आशा भोसले की शरारत भरी गायकी, रफी साहब की रूहानी मिठास, किशोर कुमार की दिलकश आवाज, मुकेश की दर्द भरी सादगी या फिर मन्ना डे की शास्त्रीय गायकी गूंज उठती है। इन आवाजों ने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि कई नस्लों के जज्बात को आवाज दी। 1960s का सिनेमा वैसे अपनी मेलोडी, रोमांस और लिरिकल ब्यूटी के लिए मशहूर था। इस दौर में गाने अक्सर प्रकृति यानी कि नेचर, मोहब्बत, जुदाई, दोस्ती और जिंदगी के खूबसूरत रंगों को बयां करते थे। अजीब दास्तां है ये, प्यार किया तो डरना क्या। अभी

सोचिए, शाम का हल्का सा अंधेरा, हवा में ठंडी सी खुशबू और रेडियो पर लता जी की आवाज, किशोर कुमार की आवाज, मुकेश की आवाज, महेंद्र कपूर की आवाज। सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स ही नहीं, बल्कि मोहब्बत के उस पल की तस्वीर है जहां वक्त को रोक लेने की तमन्ना महसूस होती है। ये सब जो गाने होते हैं हमें बताते हैं कि असली रोमांस हमेशा शोर शराबे में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों, नजरों और खामोश एहसासों में भी होता है। और फिर आती है रफी साहब की आवाज, चौदवी का चांद, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे बहारों फूल बरसाओ, वगैरह वगैरह। इन गीतों में रफी साहब की आवाज कभी महबूब की तारीफ करती है, कभी जुदाई का दर्द बयां करती है,

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: जलाए।
1: ले चलते हैं आपको 70s की दुनिया में। जी हाँ, किशोर कुमार की आवाज ने 70s को एक नई एनर्जी दी। उनकी गायकी में मस्ती भी थी, रोमांस भी, दर्द भी और जिंदगी को खुलकर जीने का जज्बा भी। मेरे सामने वाली खिड़की में ओ मेरे दिल के चैन, ये जो मुहब्बत है, या फिर मुसाफिर हूँ यारो, जिंदगी एक सफर है सुहाना जैसे गीत आज भी सुनते ही चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। वैसे 70s के गानों की एक खास बात थी, उनमें मेलोडी के साथ पर्सनालिटी भी होती थी। हीरो का अंदाज, हीरोइन की अदा, कहानी का मूड और सिचुएशन सब कुछ गीत में समा जाता था। कभी राजेश खन्ना के रोमांटिक अंदाज के साथ किशोर कुमार की आवाज दिल जीत लेती थी, तो कभी अमिताभ बच्चन के इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस के साथ पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक और गीत कहानी को एक अलग ही रंग दे देते थे।

के गीतों की खूबसूरती का एक और बड़ा राज था शब्द, मानी कि वर्ड्स। शैलेंद्र साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी गुलजार और कई महान गीतकारों ने ऐसे अल्फाज लिखे जो सीधे दिल तक पहुंचते थे। जिंदगी कैसी है ये पहेली जैसे गीत जिंदगी के गहरे सवालों को बहुत ही सरल अंदाज में सामने रख देते थे। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, इसमें शाम, तन्हाई और यादों का एक पूरा संसार बस जाता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, इसमें मोहब्बत और जुदाई की गहराई महसूस होती है और आने वाला पल जाने वाला है, हमें वक्त की कीमत समझाता है।

श्रोताओं, गोल्डन एरा के गानों में म्यूजिक डायरेक्टर्स का योगदान भी बहुत ही लाजवाब था। शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रोशन, कल्याण जी आनंद जी, ओपी नैयर, खयाम, नौशाद जैसे संगीतकारों ने हिंदी फिल्म म्यूजिक को अनेक रंग दिए। कभी तबला और सितार की मधुर झनकार, कभी फ्लूट की मीठी धुन, कभी गिटार और पियानो का वेस्टर्न टच और कभी क्लासिकल रंग की गहराई। 60s और 70s का म्यूजिक जैसे एक म्यूजिकल यूनिवर्स था जहां हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी कहानी थी। आर डी बर्मन ने तो 70s के म्यूजिक में एक नई फ्रेशनेस भर दी। उन्होंने इंडियन मेलोडी को वेस्टर्न रिदम्स और नए साउंड्स के साथ जोड़ा, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन के बावजूद मेलोडी कभी खोई नहीं। इसी वजह से उनके कई गीत आज भी मॉडर्न लगते हैं। और फिर वो एवरग्रीन ड्यूएट्स जब रफी साहब लता जी की आवाज से साथ मिलती थी, या किशोर कुमार लता जी की एक रोमांटिक गीत को आवाज देते थे, तो जैसे स्क्रीन पर मोहब्बत जिंदा हो जाती थी।

0: amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: 60s और 70s के गानों में दोस्ती भी थी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे सिर्फ एक फिल्म सॉन्ग नहीं रहा, ये दोस्ती का एंथम बन गया। इसमें फ्रेंडशिप दोस्ती का वो जज्बा था जो आज भी हर जेनरेशन को कनेक्ट करता है। श्रोताओ, इन गानों में जिंदगी का फिलोसॉफी भी था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, मुसाफिर हूँ यारो, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला। यानी कि गोल्डन एरा की सबसे बड़ी खूबसूरती थी, गाने वक्त के साथ पुराने नहीं बल्कि यादों के साथ और गहरे होते गए। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, म्यूजिक प्रोडक्शन बदल गया है, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स बदल गई है, लेकिन जब रेडियो पर 60s या 70s का कोई गीत बजता है तो हम अचानक अपने अतीत के किसी खूबसूरत कोने में पहुंच जाते हैं। किसी को अपनी पहली मोहब्बत याद आती है, किसी को कॉलेज के दिन, किसी को पुराने दोस्त, किसी को अपने माँ बाप के साथ गुजारी शामें, और किसी को वो पुराना रेडियो जहां से घर के माहौल में गीतों की आवाज गूंजा करती थी। शायद इसीलिए गोल्डन एरा के गानों को एवरग्रीन कहा जाता है।
1: एक

0: दीवाना।
1: उनके मेलोडीज में सुकून है, लिरिक्स में गहराई, सिंगर्स की आवाजों में रूह है और कंपोजिशंस में वो जादू है जो समय की सीमाओं को पार कर देता है। 60s और 70s के गीत हमें सिर्फ म्यूजिक नहीं देते, वो हमें यादें देते हैं, एहसास देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं और कभी कभी आंखों में नमी भी दे जाते हैं। और जब रात खामोश हो, हवा धीरे धीरे चल रही हो और कहीं दूर से रफी साहब, लता जी, किशोर कुमार, आशा जी, मुकेश और बाकी सब कलाकारों की आवाजें सुनाई दे, तो दिल बस इतना ही कहता है, वाह क्या खूबसूरत था वो दौर और क्या खूबसूरत थे वो गीत। गोल्डन एरा के गानों की खूबसूरती यही है कि उन्हें सुनने के लिए किसी खास वक्त की जरूरत नहीं। सुबह हो, शाम हो, रोमांटिक नाइट हो या तन्हा रात, इनकी धुनें हर पल को खास बना ही देती हैं। ये गीत कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं और आने वाली नस्लें भी इन्हें सुनकर मोहब्बत, दोस्ती, दर्द, खुशी और जिंदगी के नए रंग महसूस करती रहेंगी, क्योंकि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता। और गोल्डन एरा के गीत तो दिल की वो आवाजें हैं जो हर दौर में नई लगती है। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Came to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandariki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: तो फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
9: राइट.
8: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
9: नदी जमेश
5: नदी जमेश.

MBC Radio 24 hours a day. You're listening RM Free Radio.

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो।